107 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, शक संवत 1948।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर आपका चहेता कार्यक्रम पुष्पांजलि। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आपके समक्ष उपस्थित हूं इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर। और इस आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश करते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की चरणों की वंदना के साथ।

श्रोताओं, प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। आज की इस भोर में चलिए अपने विचारों की मैल को भक्ति के इस निर्मल जल से धो डालें और खुद को उस परम सत्य के लिए तैयार करें, एक और सुंदर भजन की प्रस्तुति के साथ।

श्रोताओं, मंदिर के द्वार तो बंद हो सकते हैं, पर ईश्वर के द्वार कभी नहीं बंद होते। विश्वास की डोर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पुकार यहां से निकले और गूंज ब्रह्मांड के उस छोर तक सुनाई दे। आइए संगीत की इन्हीं लहरों पर सवार होकर अपने विश्वास को एक नई उड़ान दें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। अक्सर हम पत्थर की मूरत में उस निराकार को ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे भीतर की करुणा में मुस्कुरा रहा होता है। आज जब ये भजन आपके कानों में घुलेंगे तो बाहर नहीं अपने भीतर जाकिएगा, शायद वही कहीं उसका वास मिल जाए, है ना। तो आइए एक और मधुर भजन

श्रोता, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन एक छोटा सा दिया उसे चुनौती देने के लिए काफी है। हमारे जीवन का अंधकार भी केवल ज्ञान और भक्ति की एक किरण से मिट सकता है। ये पुष्पांजलि जो कार्यक्रम है, उसमें हम सिर्फ मधुर भजन ही नहीं सुनते, बल्कि उनमें खोकर प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति के पुष्प अर्पित करते हैं। और जैसा कि आज मंगलवार है, ज्येष्ठ माह के मंगलवार की महिमा ही अलग है, तो आज पुष्पांजलि की यात्रा इस मधुर भजन के साथ पूरी करते हैं।

बिनमोल सर्स, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कानपुर की हो चुकी है शुरुआत और एक खूबसूरत दिन की भी शुरुआत हो चुकी है हमारे इस मॉर्निंग शो के साथ। तो नेचर क्लॉक के साथ रहती है नेचर राइट टाइम, कलियां भोर के समय खिल जाती हैं, चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती हैं, बहती है खूबसूरत सुबह की तरोताजा हवा, प्राकृतिक लय के साथ लयबद्ध होने से लाइफ भी रहती है राइट टाइम। वेल, ये तो हुई नेचर रिदम की बात, और अब आज के प्रोग्राम की बात करते हैं जिनसे आपका दिन बनता है खुशनुमा। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स एंजॉय करने वाले हैं आप 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के साथ, लीजिए सुनिए सुरों की पुरानी महफिल। सुनिएगा ये प्रोग्राम सुबह 8:30 पर, रसबहार सुबह 9 से सुनिएगा। रसबहार में मानसून टेंपल नौतपा और जेठ की गर्मी की बात होगी विद कूल कूल अंदाज। विविधा में लेकर आएंगे प्रोग्राम होगा राग रंग सुबह 9:45 पर। दिन में 11 रोज ही की तरह हमनवा लेकर हाजिर होंगे हम, और आज हमनवा में आप सुनेंगे शिप्रा चंद्रा के साथ ऋतु निगम की आवाज। दिन में 3 म्यूजिक आर प्रोग्राम होगा दोस्ती के नाम, प्रोग्राम में आपके साथ होंगी ऋतु निगम। शाम 4 प्रोग्राम होगा आपकी पसंद, और अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत तो कीजिए हमें ईमेल, फिल्म का नाम, गाने के बोल, अपना नाम और जगह का नाम। हमारी ईमेल आईडी है aarkansometia@gmail.com। तो कनेक्ट है आप 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के साथ। गुड मॉर्निंग कानपुर, शिप्रा चंद्रा है आपके साथ।

डियर रेनबो लिसनर्स, हर नई सुबह एक अवसर लेकर आती है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए खुद को साबित करने की। मॉर्निंग मंत्रा है आपके लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विचार है कि हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर है। तो जरूरी है दृढ़ विश्वास के साथ सही दिशा में काम करने की, खुद को साबित करने की, और खुली आंखों से देखे भविष्य के सपनों पर भरोसा करना है। तो दिल से कीजिए जनाब।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। तो डियर रेनबो लिसनर्स, मॉर्निंग टाइम है और टाइम है व्यायाम का, एक्सरसाइज का। तो हेल्दी रहने के लिए लाइफ में बड़े बदलावों की नहीं, छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों की जरूरत होती है, जिसमें शामिल है सही खान पान, मॉर्निंग वॉक और रोज कम से कम 30 मिनट्स की वॉक हो तो अति उत्तम है, और एक्सरसाइज और योग तो जरूरी है ही। डेली लाइफ में शामिल करना ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ये जान लीजिए आप। याद रखने की है बात कि फिटनेस कोई रेस नहीं है, ये हर दिन खुद को बेहतर बनाने का सफ़र है। सूरज के तेवर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहे हैं, टाइम है चाय की चुस्कियों का और सुबह की सुर्खियों का। तो चलिए डालते हैं देश और दुनिया पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर से ये पहली खबर है। मौसम का पहला चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन द्वारा कल जम्मू से रवाना किया गया। लगभग 966 बॉक्सेस में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया, और ये पार्सल वाहन जम्मू से बांद्रा टर्मिनस की दूरी सिर्फ 33 घंटे के रिकॉर्ड समय में तय कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून 2026 को होने वाली NEET नीट UG पुनः परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और सफल आयोजन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी राज्यों के सहयोग से पारदर्शी और व्यवस्थित परीक्षा कराने पर विश्वास जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान हरमनप्रीत और भुल्लर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार 2026 उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने बिना किसी पहचान या प्रसिद्धि की चाह

कि समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया, किसी ने लोक कला बचाई तो किसी ने चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के जरिए मानवता की मिसाल पेश की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार के दौरान एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब भारतीय सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज सुपरस्टार दिवंगत धर्मेंद्र को मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह प्रतिष्ठित सम्मान उनकी पत्नी और जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी को सौंपा। साथ ही भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में शानदार योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थी देश और दुनिया पर एक नजर। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर। गुड मॉर्निंग कानपुर।

26 मई साल 2026 दिन मंगलवार। हर दिन खास होता है और हर दिन की अपनी बात होती है, तो क्या दर्ज है 26 मई इस तारीख में इतिहास के पन्नों में, ये है अतीत के आईने में आज का दिन। 26 मई साल 1928 भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ये स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नाम रहा और ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1908 के लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। 1928 के एम्स्टर्डम में स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने लिया। 6 लगातार ओलंपिक जीतकर रिकॉर्ड का किया पहला मेडल। और इस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह और मशहूर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भी इस टीम का हिस्सा थे। जीत के साथ ही भारत का हॉकी पर वर्चस्व स्थापित हो गया। 26 मई साल 1912 को राजस्थान के जोधपुर में छगन लाल चौपासनी का जन्म हुआ। वो राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 26 जनवरी 1932 को छगन लाल चौपासनी ने जोधपुर के जूनी धान मंडी में पहली बार तिरंगा फहराया। उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा। 26 मई साल 1999 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 3 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर इतिहास रचा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C2 ने इन 3 उपग्रहों को लॉन्च किया और PSLV-C2 ने अपनी उड़ान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी। इसरो ने भारत के साथ कोरिया और जर्मनी के सैटेलाइट को भी लॉन्च किया सफलतापूर्वक। और इसके बाद इसरो ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसी ये जो घटना हुई है ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। तो ये था अतीत के आईने में आज का दिन। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
5: कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट के साथ कनेक्ट हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। हो चुकी है गर्म सुबह की शुरुआत, धूप ने अपने आगोश में सारी कायनात को ले लिया और धूप का चमकने का यह सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। भीषण गर्मी के दौर जारी है और जारी है ब्यूटीफुल कूल ट्रैक का सिलसिला भी गुड मॉर्निंग कानपुर शो से। कॉम्बो पैक है आपके लिए जिसमें होता है लेटेस्ट अपडेट, जानकारियां, हिस्ट्री, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट। वेल, क्या है आज के मौसम की लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो CSE और भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो ये है कि हीट वेव का प्रकोप 28 मई तक जारी रहने के आसार हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 29 और 30 मई को आंधी और बारिश के भी आसार हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो गर्मी से हाल है बेहाल और मन बावरा वाली सिचुएशन हो रही है कि क्या करें क्या ना करें, कौन कौन से तरीके आजमाएं और कैसे इस मौसम में रखें खुद को कूल फिट एंड फाइन। बेचारा दिल क्या करे क्या ना करे।

वेडियर रेनबो लिसनर्स, लू भरी तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां और कड़क धूप दे रही है सलामी जेठ के सूरज को इन दिनों। लेकिन जिंदगी खूबसूरत है, हर हाल में हर प्रॉब्लम से निजात पाने के तरीके ढूंढ ही लेती है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM यूपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि एक छोटी सी गलती बढ़ सकती है भारी। धूप से लौटकर तुरंत ठंडा पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो बाहर से धूप से लौटने पर छाया में थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर पानी घूंट घूंट करके आराम आराम से पीना है, और अगर घड़े का पानी हो तो वाह क्या बात है। देर तक शीतल रहता है घड़े के पानी से तन और मन, तो सही आदतों के साथ गर्मी को दीजिए मात। बीट द हीट कानपुर।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
0: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
0: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट के साथ कनेक्ट हैं आप 102.2 एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग कानपुर, शिप्रा चंद्रा है आपके साथ। रात दिन जागते कानपुर की है तेज रफ्तार, जिंदगी चलने का नाम है। और अब यूपी ट्रैफिक पुलिस का एक बेहतरीन मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं हम। हेलमेट नहीं है कोई बोझ, ये बचाएगा आपकी जान, तो बस जब भी बाइक की चाबी उठाए हेलमेट लगाना ना भूलें। रिमेम्बर हेलमेट, प्रोटेक्ट योर राइट, प्रोटेक्ट योर लाइफ। सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप कानपुर में हैं जनाब।

क्या पाया नहीं तूने और क्या ढूंढ रहा है तू। डियर रेनबो लिसनर, सुबह से शाम करते हैं हम इंतज़ाम जिंदगी के लिए, फ्यूचर के लिए, लेकिन इन इंतज़ामों में एक अच्छी सोच के साथ दूसरों के लिए कुछ कर सके तो ये एक ऐसी खुशी होती है कि जिसे बस फील किया जा सकता है, खुशनुमा एहसास। खुश होने की बात है कानपुर, क्योंकि एक सराहनीय प्रयास के साथ IIT कानपुर का नाम सुर्खियों में है। ये दिल को छूने वाली पहल है, पंचामृत आशा का भोजन। और इस पहल ने ना जाने कितने जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर सजाई है मुस्कान। कानपुर नगर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के छात्रों ने जरूरतमंद बच्चों को दिया है सहारा, दे रहे हैं वो पौष्टिक मिड डे मील पंचामृत आशा का भोजन, जिसे IIT कानपुर परिसर स्थित अपॉर्चुनिटी स्कूल के बच्चों के लिए साल 2024 से चलाया जा रहा है। मकसद है जरूरतमंद बच्चों को बाल श्रम से बचाना और उन्हें अच्छी एजुकेशन के साथ बेहतर भविष्य से जोड़ना। तो IIT कानपुर के छात्रों और सहयोगियों के सौजन्य से चल रहा है ये पहल जो है, ये सफलतापूर्वक चल रही है। सच है, थोड़ी सी संवेदनशीलता, सामूहिक प्रयास और सीमित संसाधनों के सही उपयोग से गरीबी और भूख जैसी समस्याओं से स्थानीय स्तर पर निपटा जा सकता है।

मैंने हारना नहीं है चाहे कुछ भी करे ये दुनिया, जज्बा है ये एक नंबर। और अब जॉब फेयर की अपडेट है दिव्यांग जनों के लिए। 9 जून से सुबह 10 बजे से निशुल्क रोजगार मेला लगाया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और इसमें भाग ले सकेंगे इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीटेक और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के दिव्यांग। मेले का मकसद है टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन पूरी कर चुके दिव्यांग युवाओं को नौकरी के अवसर देना।

है आपके लिए भविष्य के सपने सच करने के लिए चाहिए अटूट विश्वास, कड़ी मेहनत की जरूरत और सही दिशा में प्रयास। बहुत ही खूबसूरत सा गाना पहुंच रहा है आप तक, एंजॉय कीजिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के संग।

0: तो दोस्तों इसी प्यारे से गाने के साथ वक्त हो चला है आज के इस सफर को यहीं रोकने का। दिन की शुरुआत चाहे जैसे भी हुई हो, याद रखिएगा आज का ये पूरा दिन आपका है। हर नया घंटा, हर नया पल एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, तो छोटी छोटी बातों पर स्माइल कीजिए और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।
1: जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में।
0: और अब गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से डीजे शिप्रा चंद्रा को अनुमति। नमस्कार।

0: हीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
4: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को

0: यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन

0: क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनिषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

You are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur. सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ये वक्त है सुरों की पुरानी महफिल का। स्वागत है आपका सुरों की पुरानी महफिल इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम की कर रहे हैं शुरुआत शान फिल्म के गीत के साथ। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले की मिली जुली आवाज़ों में ये नगमा आप तक पहुंच रहा है। उषा मंगेशकर का लिखा हुआ और आर डी बर्मन के संगीत के साथ बोल हैं आनंद बख्शी के।

सुरों की पुरानी महफिल सुन रहे हैं आप ये प्रोग्राम 102.2 FM रेनबो कानपुर के संग। और अब नेक्स्ट ट्रैक जो आप तक पहुंचने को है तैयार, वो है यलकार फिल्म से। चन्नी सिंह ने संगीतबद्ध किया है इस गीत को और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा है और उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाजें हैं। फिल्म का नाम यलकार।

और अब लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा बेहद खूबसूरत गीत पहुंचने को है तैयार। आप तक लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, फिल्म का नाम है शागिर्द।

और अब वक्त हो चला है कि सुरों की पुरानी महफिल का आखिरी गीत आप तक पहुंचाया जाए। राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स और मोबाइल सेट्स पर पहुंचने को है तैयार। लता मंगेशकर की आवाज, संगीतकार रविंद्र जैन, और इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने।

और अब हो चुका है इशारा कि प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। सुरों की पुरानी महफिल ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

ऑनियर ऑलवेज इन हार्ट, ये है 102.2 एफएम रेनबो कानपुर की आवाज। सुबह के बज रहे हैं 9, टाइम है प्रोग्राम रस बहार का, और आज के रस बहार की कर रहे हैं शुरुआत बिहारी जी के दोहे के साथ। बिहारी सतसई का प्रसिद्ध दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी रही अति सघन बन, बैठ सदन

तन माह देख दोपहरी जेठ की छाह चाहत छा। तो दोस्तों छाया भी खुद छाया ढूंढती फिरे तो जेठ के महीने में गर्मी का क्या आलम है ये तो आप समझ ही रहे हैं। इन दिनों गर्मी के प्रकोप, डेली लाइफ, मानसून का इंतजार, कुछ ऐसा ही सीन है इन दिनों। तो कुछ ऐसी ही बातों के साथ और इस भीषण गर्मी में आपको कूल कूल फीलिंग का होगा एहसास रसवार शो में। मैं हूँ, मेरा नाम है शिप्रा चंद्रा, आपके साथ।

बातों की बदली छटनी थी छट गई। कल रात आए थे वो बादल जो गरज चमक के साथ, याद है ना। बेसब्र तेज हवा ने बोला, भाई अभी आपकी ड्यूटी नहीं लगी है, आप यहाँ से चले जाइए। तो जरा ही देर में वो उड़ गए। बेसब्र तेज हवा उन्हें उड़ा ले गई। ओ नीले आसमां जरा तो रहम फरमाओ कठिन झेट के अभिमानी सूरज को, ए बादलों ए हवाओं बादलों की चादर उड़ाओ। तो थोड़ी देर की

है सही, जरा तो लेकर आओ। मेट्रो सिटी कानपुर में कुछ ऐसे ही हाल है। तपिश और भीषण गर्मी में मन ही मन में कितने ही कवियों की लेखनी मचल मचल कर ऐसी ही रचनाएं रच रही हैं। 28 मई तक ऑरेंज अलर्ट है, हालांकि एटमॉस्फेयर में नमी भी होगी जिससे बादलों की आवाजाही भी बनी रह सकती है। 12 महीनों में जेठ के महीने को यूं ही तो बड़ा नहीं माना गया, आदर और सम्मान बदस्तूर जारी रहता है इन दिनों। चाहे महिला हो या पुरुष, अच्छे अच्छों का सिर ढका दिखाई देता है इस महीने में। वेल, जेठ के महीने में दिन बड़ा होता है और इसका कारण है सूर्य से नजदीकी। तो भीषण गर्मी से तो राबता होना ही है, लेकिन इस महीने के अपने लुत्फ भी हैं। क्या है वो लुत्फ? जेठ की ताप में पके तरबूज और खरबूज, बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते हैं कि जितनी लू चलेगी उतने ही ये फल मीठे होंगे। और फलों के राजा आम भी इन्हीं दिनों तो जलवा अफरोज होते हैं। तो इस मौसम के अपने लुत्फ है, अपने चैलेंजेस भी हैं, और इसमें से एक चैलेंज है कुछ तपिश भरे दिन जिनकी ड्यूरेशन है 9 दिन, समझ गए होंगे आप में से कुछ लोग, और जो नहीं समझे उनके साथ शेयर करेंगे इस ट्रैक के बाद।

पानी और दिन है सनी, पता है भाई। एक गिलास पानी ठंडा शीतल पे पीते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में घूंट घूंट करके प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है आपको। और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, ग्लूकोज, आमपना, बहुत सारे ऑप्शन है। केवल सादा पानी पर्याप्त नहीं है इन दिनों। नौतपा स्टार्ट हो गए वो 9 दिन जब सुबह 9 बजे के बाद से ही सूरज 12 बजे वाले टाइम का लुक देने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे सूरज बाबा कह रहे हैं कि बेटा आज तुम्हें घर से बाहर निकलने की मिलेगी सजा। लेकिन हम कनपुरिया हैं, हम कहते हैं कि भैया फैशन से ज़्यादा प्रोटेक्शन जरूरी है। सिर पर बांधिए गमछा, रखिए एक पानी की बॉटल, एक प्याज जेब में और चल चलिए काम पे राइट टाइम। बस दोपहरिया में जहाँ हो भैया वहीं रुके रहना तो अच्छा रहेगा, समझे ना।

प्यार करने वालों को जलाएंगे और प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। यहाँ भी जलन की बात। वेल ऑलरेडी सूरज जल रहा है, सूरज रे जलते रहना जरूरी है। नौ तबा की तीखी गर्मी और हम और आप, क्या बात क्या बात क्या बात। कानपुर नौतपा के नाम से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि गर्म हवाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जलवायु प्रक्रिया है और मौसम विज्ञान के नजरिए से भी देखते हैं इसे।

मानसून और नौतपा का कनेक्शन है गहरा। कहा जाता है कि नौतपा जितना तपेगा उतनी अच्छी बारिश होगी, उतना अच्छा मानसून आएगा। तो खेती के लिए, किसानी के लिए ये है लाभकारी। बेसिकली इजी वे में कहें तो नौतपा मानसून के कीट फफूंद को कम करता है जो हानिकारक होते हैं और जिससे फसलों में कीटों और बीमारियों का खतरा हो जाता है कम। भैया एक बहुत पुरानी कहावत है कि नौतपा तपे तो बरखा छप्पर फाड़ के बरसे। और फिलहाल इस टाइम पानी बरसे ना बरसे हमारी प्लेलिस्ट में क्यों है एक बड़ा ही प्यारा सा कूल कूल ट्रैक है मस्कारा फॉर यू ऑल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी

0: समृद्ध नारी।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: Hi, this is Udit Narain. You are listening 102.2 FM Rainbow, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
4: 9:23 by the studio clock. कठिन जेट का सूरज दिखा रहा है एटीट्यूड पर 102.2 एफएम रेनबोस कानपुर के साथ। बदल रहा है आपका मूड, आहिस्ता आहिस्ता कूल कूल ट्रैक्स पहुंच रहे हैं आप तक, जो गर्मी के टॉर्चर को कह रहे हैं टाटा ओके बाय, नो चांस, यहाँ है सिर्फ एंटरटेनमेंट का फुल ऑन रोमांस। डियर कानपुर, मॉनसून का इंतजार है सभी को, अब आएगा कब आएगा, जब आएगा तो कैसा आएगा, तो इसका आंसर देता है एक बहुत ही रहस्यमयी प्लेस, मंदिर है जिसकी छत से टपकती बूंदें बताती हैं कि इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है, करती है भविष्यवाणी। क्या जानते हैं आप उस प्लेस का, उस मंदिर का नाम, तो बताइए हमें, ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: ऑन ईयर ऑलवेज इन हार्ट, ये है 102.2 एफएम रेनबो कानपुर की आवाज। रस बहार शो में शिप्रा चंद्रा है आपके साथ। डियर रेनबो लिसनर्स, कानपुर सेंट्रल से बेहटा बुजुर्ग गांव की दूरी है लगभग 38 किलोमीटर। तो घाटमपुर के रास्ते से भीतर गांव होते हुए चल चलिए एक ऐसे प्लेस पे जिसके जगन्नाथ टेंपल ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसे हम मॉनसून टेंपल के नाम से भी जानते हैं। हमारी प्राचीन भारत का बेजोड़ आर्किटेक्चर है यहाँ एक रहस्यमयी मंदिर जिसकी छत में लगा हुआ है स्क्वायर में पत्थर है, वो जैसे ही मॉनसून बनेगा टपकना स्टार्ट हो जाता है और ये तब तक टपकता है जब तक कि मॉनसून हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आ जाता है। तो इसके साथ इसे टपकने वाली छोटी बड़ी बूंदें जो होती हैं कम या ज़्यादा होती हैं या नॉर्मल मानसून की भविष्यवाणी करती हैं कि मानसून कैसा रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा या कि नॉर्मल रहने वाला है। तो कैसा रहने वाला है इस बार मानसून, क्या मानसून टेंपल दे रहा है राहत का सिग्नल और क्या अभी इस मंदिर की छत से पत्थर से बूंदे टपकनी शुरू कर हो गई हैं, शेयर कर रहे हैं आपसे। फोन लाइन पर सीधे कनेक्ट है हमसे बेहटा बुजुर्ग गांव के मॉनसून टेंपल से पंडित केपी शुक्ला बता रहे हैं अपनी बात।
1: हमारा नाम केपी शुक्ला है, हम ये मॉनसून मंदिर बेहटा बुजुर्ग कानपुर नगर से बोल रहे हैं। मंदिर में जो है बूंदे आ चुकी हैं और इसका सिद्धांत यही होता है कि जैसे मानसून बनता है वैसे ही पसीज के टपकने लगता है और ये संकेत दे देता है कि नहीं यहाँ मानसून बन गया बरसात हो, इसमें बूंदे टपकना शुरू हो गया है और जैसे जैसे मानसून हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता जाएगा इसमें बूंदे और बढ़ती चले जी। ये इतना प्राचीनतम मंदिर है जैसे यहाँ की सिंधु घाटी हड़प्पा के जो चिन्ह पाए जाते हैं वैसे इतिहासकार भी ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो उन चीजों से भी ये प्रमाणित होता है चिन्हों से कि नहीं स्थान बहुत ही प्राचीनतम है। तो है कि जैसे मानसून अभी जो इसमें संकेत

0: बनना शुरू हो गया। अभी इसमें किनारे बॉर्डर पे बूंदे हैं, तो अभी ये संकेत पत्थर देता है कि बादल आएंगे, बूंदाबांदी होगी, लेकिन इतनी भारी बरसात नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मतलब खेतों में काफी पानी भर जाए, तो ये संकेत देता है। अभी इसमें जैसे जैसे हमारे तरफ मानसून बढ़ेगा, ये वैसे वैसे इसमें बूंदे बढ़ती जाएंगी, और 15-20 बूंद के लमसम जब आएंगे तो इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इन साल कैसी बरसात होगी, ज्यादा बरसात होगी, कम बरसात होगी।
1: लिसनर्स, सुनने से ज्यादा खुद जा करके उस प्लेस पे महसूस करना एक अच्छा सा फीलिंग, अच्छी सी फीलिंग होती है। तो कानपुर सेंट्रल से बेहटा बुजुर्ग घाटमपुर के रास्ते से भीतर गांव होते हुए चल चलिए मॉनसून टेंपल की ओर। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, मौका भी है दस्तूर भी बच्चों को बताने का, अपना इतिहास, कानपुर की संस्कृति शेयर करने का, जाने वो अपने संस्कार और परंपराएं।

न्यूज ऑन एआईआर ऐप के साथ कनेक्ट हैं देश और दुनिया के लिसनर्स, हमसे 102.2 एफएम रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। डियर रेनबो लिसनर्स, देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी और लू से बेहाल हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस और खबरें

होती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। सुर्खियों में है कुछ ऐसी बातें कि खुद को कैसे कूल रखें, देसी जुगाड़, देसी कूलर, रूफटॉप गार्डन और मिनी पंखे जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं में से कुछ अजब गजब सी परंपराएं भी हैं जो अच्छे मॉनसून के आने के लिए निभाई जाती हैं और जिन्हें सुनकर हम हो जाते हैं चकित और हैरान। क्या आपने कभी किसी ऐसी शादी में ढोल और नगाड़े बजाए हैं जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों मेंढक हों? जी हाँ, सही सुना, मेंढक और मेंढकी।

बज रहे हैं आप और थिरक रहे हैं हम 102.2 FM रेनबो कानपुर के संग। जब कड़ी धूप से धरती सूखने लगती है और हम सब वेट करते हैं बरखा बहार का, तो यूपी एमपी और देश के कई हिस्सों में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, मेंढक और मेंढकी की शादी। इसके लिए वर मेंढक और वधु मेंढक को हल्दी लगाई जाती है, होता है साज श्रृंगार और फिर विधि विधान से होते हैं फेरे सार। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ अनोखी परंपराओं में से ये एक है। तो इस तरह के आयोजन से गर्म लंबी दोपहरी भी हंसते खेलते कट जाती है और हंसी मजाक के साथ होता है मिलना मिलाना, खाना खिलाना, सांझ में डांस म्यूजिक मस्ती। इसके बिना तो विवाह का आयोजन जो होता है उसमें मजा ही नहीं आता है। वैसे ऐसे में एक सवाल जरूर जहन में आता है कि अगर बारिश उम्मीद से जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे आप? मेंढकी को मायके भेज देंगे और उसे लाने रिझाने मनाने के लिए मेंढक को भेजेंगे ससुराल? बारिश रोकनी जो है। वेल, नेचर और इंसान के इस अनोखे रिश्ते के बारे में क्या कहना है आपका, सोचिए और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

प्रेस बार शो को वाइंड अप करने का हो गया है टाइम, और टाइम टू से टाटा ओके बाय। और 11 बजे हमनवा में शिप्रा चंद्रा मिलेगी आपसे ऋतु निगम के साथ। रसवाहार शो से शिप्रा चंद्रा को दीजिए अनुमति, नमस्कार। चलते चलते प्ले कर रही हूँ, एक बड़ा ही प्यारा सा थिरकता हुआ ट्रैक है, आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर पहुँच रहा है ये रहा।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम राग रंग। इकबाल बानो की आवाज में ये प्रस्तुति पहुंच रही है आप तक, लीजिए सुनिए ये दादरा।

इसी के साथ अब आज का राग रंग यहीं पर समाप्त होता है। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निर्वर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य के ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निर्वर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निर्वर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी। उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। वाराणसी में आस्था और भक्ति का पर्व गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश और प्रदेश से आए भक्त गंगा स्नान कर विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दशा द्वेषभेद 80 राजेंद्र प्रसाद समेत विभिन्न घाटों पर भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा दशहरा को लेकर काशी के घाटों को फूल मालाओं से सजाया गया है। इस पावन पर्व पर आज पूरे दिन धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। हमीरपुर में मौधा थाना क्षेत्र के खरे गांव में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। मौधा थाना प्रभारी ने बताया कि गांव के बाहर कलार तालाब में बच्चे नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में जाने से उनका संतुलन

बिगड़ गया। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में भी भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लोगों से तेज धूप में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। उन्होंने लोगों से घर की छतों और खुले स्थानों पर पानी रखने को भी कहा है, जिससे पशु पक्षियों को भी राहत मिल सके। जौनपुर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक व डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए। आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, कूलर, आइस पैक आदि की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:04 का समय, प्रोग्राम सुपरहिट सॉन्ग, और आज आपके साथ इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे 90s के वो प्यारे से ट्रैक्स जो कभी आपकी पसंद हुआ करते थे और आज भी वो आपकी पसंद बने हुए हैं। तो एंजॉय कीजिए अगले घंटे सुपरहिट सॉन्ग्स अपने दोस्त।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ दोस्तों, 10:32 का समय, प्रोग्राम चल रहा है सुपरहिट सॉन्ग। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए मेरे साथ।

जी हाँ दोस्तों, 10:54 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग्स को हम यहीं पर वाइंड अप करें और ठीक 11 बजे आप तक पहुंचेंगे न्यूज ब्रेक, यानी कि न्यूज पहुंचेगी और उसके बाद ठीक 11:02 से हम आपसे जुड़ेंगे अगले प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे। और इस प्रोग्राम में दोस्तों आप अपनी मेल्स के माध्यम से और फोन कॉल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर मैं आपको थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: हेलो डियर रेनबो लिसनर्स, वेलकम, नमस्कार। आज हम नवा में मैं हूँ शिप्रा चंद्रा आपके साथ, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट कम दोस्त ऋतु निगम।
1: रेनबो लिसनर्स, आपको मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
0: तो ऋतु, बाहर धूप के क्या जलवे में बहुत देर से वेट कर रही थी आपका कि आप जल्दी से स्टूडियो में आए और मुझे बताएं कि बाहर धूप के क्या जलवे हैं, क्योंकि आप तो रहेंगी शाम 5 बजे तक, लेकिन मैं हम नवा के बाद घर चली जाऊंगी।
1: हाँ, तो शिप्रा धूप के तो जलवे ही जलवे हैं, बाहर धूप ही धूप है मतलब। और जैसा कि तुमने कहा कि तुम 12 बजे चली जाओगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि 12 बजे क्या धूप चली जाएगी?
0: भाई 12 बजे तो जो धूप होती है वो अपने सबसे ओजस्वी रूप में होती है, बिल्कुल कड़क होती है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल रैप करके, मुंह कवर करके अपने आप को जाते हैं।
1: तो बस शिप्रा वो तरीके अपनाई।
0: हाँ बिल्कुल, और क्योंकि भाई कैसी भी सिचुएशन हो, जिंदगी तो चलती ही रहती है,
1: बिल्कुल।
0: और धूप तेज है, गर्मी है, लेकिन इसके अपने भी कुछ आनंद हैं। ये भी बता देते हैं कि सबसे ज्यादा आनंदित करने वाली बात जो है वो है हमारे जो बच्चे हैं उनकी क्या हो गई है, समर वेकेशन हो गई है।
1: सच है शिप्रा, समर वेकेशन के लिए बच्चे पूरे साल इंतजार करते हैं और उनकी मम्मियां भी। शिप्रा वैसे भी मैं बताऊं कि मैं भी करती थी।
0: क्या बात है, सभी को रहता है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, हमारे समय में तो भाई समर वेकेशन इतनी लंबी हुआ करती थी कि हम लोग ऊब जाते थे कि ये छुट्टियां कब खत्म होंगी, और एक ऐसा था कि बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं था, पूरा जून, मई और जून छुट्टियां मिलती थी। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी सी अलग है, और ये जरूरी भी है कि बच्चों को थोड़ा बहुत होमवर्क भी मिल जाता है, और उसके बाद साथ में खेलना खिलाना, नानी के घर जाना, और बशर्ते हमारी जो मम्मियां हैं, हमारी सखियां सहेलियां हैं, ये आपने देखा होगा ऋतु, आपको भी याद होगा कि मायके जाकर के खुद बच्चा बन जाए, तभी तो समर वेकेशन का आनंद है। मतलब जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर, थोड़ा आराम, थोड़ा सुकून हमें भी तो चाहिए बच्चों के साथ। तो बच्चों को तो जब आप मायके जाएंगे तो नाना नानी, मौसा मौसी, मामा, ये सब देख ही लेंगे,
1: है ना? वरना बच्चों की समर वेकेशन और मम्मियों की टेंशन। अक्सर हमारी सखियां सहेलियां कहती हैं कि उनका साफ सुथरा घर इन दिनों पूल, क्लब या फिर युद्ध का मैदान बना हुआ है, और इससे अच्छा होता कि मतलब बच्चे स्कूल चले जाते थे, है ना? तो अब बच्चे नानी के घर जा रहे हैं आम खाने, आइसक्रीम खाने।
0: बिल्कुल, अब ये तो सीन कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बच्चे घर में है, तो बच्चों के जाने के बाद हमारी सखियां सहेलियां निश्चिंत भाव से हो जाती थी कि थोड़ी देर तो घर में शांति
1: रहेगी।
0: बड़ी लुभावनी बात है, कितनी खूबसूरत रिश्ता है बच्चों का। अगर ये आप बात कर रही थी नाना नानी और दादा दादी के जाने का, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और गर्मी की छुट्टियां हैं तो बच्चों को हमें प्रकृति से जोड़ना भी सिखाना चाहिए, मोबाइल कंप्यूटर की दुनिया से इतर ननिहाल ददिहाल ले जाएं, और तो अच्छा है जिसमें क्या होगा कि अपने नानी दादी के साथ रहेंगे बच्चे, तो अपनी फैमिली के संस्कार परंपराएं भी जान सकेंगे।
1: बिल्कुल, और छोटे छोटे प्रयासों से भविष्य के परिवर्तन के आधार बनते हैं। तो शिप्रा, ये जो समर वेकेशन वाली बात है, इसमें अपने लिसनर्स को भी हम शामिल कर लेते हैं।
0: जी बिल्कुल, शामिल कर लीजिए। तो ऋतु, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, तो बच्चों कैसे बीत रही हैं आपकी गर्मी की छुट्टियां, क्या क्या है प्लान, और डियर रेनबो लिसनर्स शेयर करें आप हमसे कि इस बार समर वेकेशन में कहां जा रहे हैं आप,
1: आपके बचपन की समर वेकेशन की कौन कौन सी प्यारी प्यारी यादें हैं, शेयर कीजिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
0: कर रहे हैं हम आपकी ईमेल्स का इंतजार। और ऋतु, समर वेकेशन खुशियां लाती है, हमने अपनी सखियों सहेलियों की बात कर ली, बच्चों की बात कर ली, और इसके अलावा किसी एक और शख्स होता है जिसको बहुत खुशी होती है, श्रीमती जी के साथ किसी और के लिए भी ये खुशी का सबब बनती है। तो कौन है वो, आप खुद ही सुन लीजिए।
2: Bye.

0: बहाना आया, साथी बहाना आया, आया आया आया मेरी बीवी। मैं के चली गई मेरी बीवी।
1: तो हमारी श्रीमतियों जी के साथ श्रीमान जी भी बहुत खुश हैं समर वेकेशन को लेकर के। ऋतु, तो ऋतु समर वेकेशन के बाद चलिए तो कुछ अपनी भी यादें आप हमसे शेयर कीजिए।
2: भाई शिप्रा, जैसा कि तुमने कहा कि समर वेकेशन जब होता था
1: जी,
2: तो मतलब 5 दिन 10 दिन पहले से ही मैं तैयारियां शुरू कर देती थी कि ये कपड़े लेके जाना है, ये कपड़े लेके जाना है और इतने दिन तक रुकना है, तो हमें वहाँ कहाँ कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सारी तैयारियां मतलब करते थे। और एक मन में बहुत खुशी होती थी कि मम्मी पापा के यहाँ जा रहे हैं हम लोग,
1: बिल्कुल उत्साह होता था।
2: हाँ, उत्साह होता था।
1: नानी के घर जा रहे हैं और देखिए ना, जैसे थोड़ा सा घर में सख्ती का माहौल मम्मी के साथ रहता था, तो कम से कम वहाँ पे नानी बचा लेंगी हमें, ऐसी भी फील आती।
2: मतलब बच्चे भी बहुत खुश होते थे कि हमें नानी के यहाँ जा रहे हैं, दादी के यहाँ जा रहे हैं।
1: और बड़ी सारे गेम्स होते थे, छोटे छोटे गेम्स जिसमें पूरा दिन कट जाता था। क्या दिन थे वो कि जब मोबाइल हाथों में नहीं था, कंप्यूटर।
2: सबसे बड़ी बात शिप्रा यही है कि उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे।
1: हाँ।
2: तो हम सब लोग परिवार के साथ बैठ करके मतलब मजे करते थे,
1: मस्ती करते थे। आम खाना है ना, बहुत सारे आम आ गए घर में, और आम का तो भाई बहुत लुत्फ है। गर्मी की छुट्टियां और आम, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन है इनका आपस में। तो खैर ये बात तो हुई गर्मी की छुट्टियों की, और अब आज के दिन की खास बात भी कर लेते हैं कि आज के दिन हम मना रहे हैं काजी नजरुल इस्लाम की जन्म जयंती, जो बांग्ला साहित्य के महान कवि, गीतकार और संगीतकार हैं। तो जीवन का सार है इनकी कविताओं में, ये हैं प्रेम रस में पगी हुई।
2: काजी नजरुल इस्लाम बांग्ला साहित्य के महान कवियों में से एक थे, और आज 24 मई को हम मना रहे हैं काजी नजरुल इस्लाम की जन्म जयंती। 24 मई 1899 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में आसन सोल के पास चुरुलिया गांव में इनका जन्म हुआ। इन्हें विद्रोही कवि यानी रिबेट पोएट के नाम से भी जाना जाता है।
1: जी बिल्कुल, काजी नजरुल इस्लाम को उनकी बेबाक लेखनी, अन्याय और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष और क्रांतिकारी रचनाओं के कारण विद्रोही कवि के रूप में हम जानते हैं ऋतु। और इसके

0: अलावा हम एक विपुल साहित्यकार के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत वसी हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ये अपने जो ये अभी आपने बताया विद्रोही कवि के तखल्लुस का आपने जिक्र किया है, तो लिसनर से हम ये भी शेयर कर दें कि उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना विद्रोही थी और जो 1922 में प्रकाशित हुई थी।
1: ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का एक ओजस्वी गीत है और इसके अंश हैं कुछ। बोलो वीर बोलो चिर उन्नत मम शिरा, मम ललाट पर निहार, झुका पड़ा है हिमगिरी शिखर, बोलो वीर मैं पृथ्वी का एकमात्र शाश्वत विस्मय हूँ, देखो मेरे नेत्रों में दीप्ति जय का दिव्य तिलक।
0: बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने अंश पढ़े इसके, ऋतु जी दिव्य तिलक के नाम से ही बहुत अच्छा सा फील हो रहा है कि कितनी अच्छी इन्होंने विद्रोही स्वर में भी एक बहुत ही सच्ची और अच्छी बात कही है, दृढ़ निश्चय और साहस से भर देती हैं इस तरह की कविताएं। तो ये एक ऐतिहासिक कविता पहली बार 1922 में साप्ताहिक बिजली पत्रिका में प्रकाशित हुई। बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम का नाम प्रेम से भी जुड़ा है, ऋतु भक्ति रस में डूबा हुआ। उन्होंने बिना किसी धार्मिक भेद के कई प्रसिद्ध कृष्ण भजन बनाए, कृष्ण के प्रति उनका समर्पण अतुलनीय था। और इन्हीं की एक रचना है, थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, मेरी तरह बस साठों पहर तुम रटते श्याम का नाम, और काली के संग प्रीत लगाकर हो जाते बदनाम।
1: क्या बात है।
0: नजरुल के अधिकांश गीतों को इन्होंने अपने ही स्वर में गाया है और अपनी आवाज देने के कारण इन्हें नजरुल संगीत या नजरुल गीत के नाम से भी हम जानते हैं।
1: बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि जिनके नाम पर जीते जी डाक टिकट निकाला गया, इससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिप्रा, 1960 में उन्हें बालकृष्ण शर्मा नवीन और शिव पूजन सहाय के साथ पद्म भूषण से नवाजा गया। वे अविभाजित भारत के राष्ट्रीय नवजागरण के कवि थे टैगोर की तरह, और नजरुल का राष्ट्रवाद जनता के दुखों का निवारण था।
0: और आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो जरूरी है कि उनके आजादी प्रेम समानता और भाईचारे के संदेश को जो उन्होंने दिया हमें याद रखना चाहिए ऋतु। और अब हम नवों में बढ़ते हैं आगे, और एक बड़ा ही प्यारा सा गाना ऋतु ने क्यू कर रखा है अपनी ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर मैं देख पा रही हूँ, पहुंच रहा है आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। ये रहा

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप हमनवा में। मैं हूँ रितु निगम आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी हमनवा शिप्रा चंद्रा। और शिप्रा, अब हमनवा में हम जो बात करने वाले हैं वो है घर की रौनक से, घर की रोशनी से जुड़ी हुई।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी की सुरक्षा और सम्मान, बेटी पढ़ाओ शिक्षा से सामाजिक रोशनी। और ऋतु, कहा भी जाता है ये सच भी बात है कि एक बेटी को पढ़ाने का मतलब होता है दो घरों को रोशन करना।
0: बिल्कुल शिप्रा, जब घर की बेटी पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने माता पिता के घर को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करती है। बल्कि शिक्षित होने के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ के माहौल और आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित और संस्कारित करती है। तो ऐसे में होता है सशक्त परिवार का निर्माण और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसी सोच को बढ़ावा देती है। ऋतु, हर घर की शान है बेटियां, ये कहते हुए हमें कितने गर्व की फीलिंग होती है।
0: बिल्कुल,
1: माता पिता की पहचान है बेटियां। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई और इसका मुख्य उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के जन्म और उनकी परवरिश के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को बदलना है।
0: बिल्कुल, और शिप्रा, ये अभियान पूरे देश में लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा करने का काम भी कर रहा है और इसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है। आज बेटी अपने जन्म के बाद जिस शान से घर आती है उसका क्या कहना भाई। और बेटियों की स्वागत के वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो देखकर लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोच कितनी तेजी से असर कर रही है। अब बेटी बोझ नहीं अपने घर की ज्योति है, सहारा है।
1: जी बिल्कुल, जो ये आपने बात कही कि सोशल मीडिया पे लोग शेयर करते हैं कि अब बैकग्राउंड में गाना चलता रहता है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, तो बड़ी अच्छी सुकून सी फीलिंग होती है कि देखिए आज हमारे समाज में जहाँ कभी कहीं कभी बेटियों को बोझ समझा जाता था और आज वही बेटियां किस शान के साथ गाजे बाजे के साथ घर में एंट्री ले रही है, तो एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। और इसके लिए समाज प्रयासरत है, निरंतर अपने अपने स्तर पर सभी काम कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के लिए। और यही कारण है ऋतु की जागरूकता बढ़ी है और सोच बदली है।
0: बिल्कुल शिप्रा, सोच बदली है। जैसे कि पहले जब दादी बाबा हुआ करते थे और उन्हें पता चले कि बेटी हुई है तो जरा मुंह बना लेते थे कि अरे बेटी हुई है। और जब बेटा बेटे की खबर आती थी कि बेटा हुआ है तो मतलब हाँ ठीक है, लड्डू लाओ पेड़े लाओ और ये सब है ना, ये सब चीजें होता था।
1: एक सिंपल सा रीजन ये था कि उन्हें ये लगता था कहीं ना कहीं कि बेटी तो ससुराल चली जाएगी और बेटा हमारा घर में रहेगा तो परिवार की वंश वृद्धि होगी। यही सारे कारण थे इसके।
0: लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन ये बात है कि समाज की सोच जो है अब बदली है।
1: बिल्कुल
0: है ना? और बड़ी ही इम्पोर्टेंट इम्प्रेशंस हैं माधवी सेगर की बात करें तो, जिन्होंने आजीवन निसंतान रहने की प्रतिज्ञा के साथ दृढ़ इरादों से कन्या भ्रूण हत्या के लिए बेटियों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
1: बिल्कुल, कुछ लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, इसकी मिसाल दी जाती है। और ऐसी हस्ती जिसका जिक्र कर रहे हैं करा अभी आपने, जेके कॉलोनी जाजमऊ कानपुर निवासी माधवी सेंगर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध समर्पित किया है।
0: और शिप्रा, जहां दंपति गठबंधन के साथ साथ वचन निभाने का संकल्प लेते हैं, वहीं ये एक आठवां वचन भी दिलवाती हैं वर वधू को, कन्या भ्रूण हत्या ना करने का वचन।
1: वाकई सराहनीय है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाती चली आ रही हैं माधवी सेंगर जी। और आज हमनवा में हमसे जुड़ रही हैं समाज सेविका माधवी सेंगर, बता रही हैं अपनी बात, बता रही हैं बेटी बचाने को लेकर अपने लक्ष्य के बारे में।
2: मैं माधवी सेंगर 2008 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी हूँ और हमने 10 में आठवां वचन शुरू किया था जो शादी के समय वर वधु समाज को देते हैं कि हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। शादी में हमेशा 7 वचन होते हैं जो वर वधु एक दूसरे को देते हैं कि हम आपका ध्यान रखेंगे, आपके माता पिता का ध्यान रखेंगे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। लेकिन आठवां वचन ऐसा है वो समाज को दिया जाता है कि हम अपना घर में पल रहे बच्चे जो बेटी है उसे नहीं मारेंगे। ये वचन दोनों जन वर और वधु दोनों समाज को देते हैं कि हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। कि आप घर में पल रहे बच्चे को नहीं खत्म करेंगे। और हमने सरसैया घाट पे बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत कन्या भ्रूण जो बेटियां घर में मार दी गई हैं उनका तर्पण और पिंडदान भी करते हैं कि कम से कम समाज को एहसास तो हो जिन्होंने अपने पेट में पल रही बच्ची को मार दिया, कि हम किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं कि हमने पेट में बच्ची थी और हमने उसे मार दिया। उसका प्रायश्चित हम समाज की उन महिलाओं से करा रहे हैं कि जो बता सके लोगों को कि घर में मारी हुई बच्ची का अंतिम संस्कार भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है, और महिलाएं उनके लिए फिर पिंडदान और तर्पण करती हैं। इसके लिए हमने कई बार ये रैलियां निकाली हैं, कैंडल मार्च निकाले हैं, जगह जगह पे कर्नाटक नुक्कड़ नाटक कराए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए संदेश है कि जब बेटे को पढ़ाते हैं तो बेटा पढ़ करके सर्विस के लिए ट्राई करता है कि अच्छे पोस्ट पे आ जाएगा, लेकिन जब बेटी पढ़ती है तो वो एक समाज को एक अच्छा परिवार देती है, एक अच्छा नागरिक बनाती है अपने बच्चों को। इसलिए बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, बेटियों को पढ़ाएं जरूर। और मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: माधवी सिंगर जी ने बहुत ही अच्छा सा संदेश दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर के, और जागरूकता बढ़ी है और बड़ी ही हृदय स्पर्श बातें इन्होंने बताई और मार्मिक बातें भी थी कि जो कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है उसके लिए कैसे तर्पण भी करवाती हैं ये, और साथ में ये जो आठवें वचन की बात है। अच्छा ऋतु, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि जब गठबंधन होता है तो

0: हम सात वचन निभाते हैं, तो उसमें अगर हम ये आठवां वचन ले रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, तो वहीं से नींव पड़ जाती है कि आप जो है बेटियों के लिए समर्पित हैं, आपका जीवन समर्पित है, आपकी सोच अच्छी है बेटियों के लिए।
1: बिल्कुल, और वैसे भी शिप्रा देखा जाए तो आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, कहीं से भी वो पीछे नहीं है किसी से भी।
0: देखिए रितु, कल शाम को द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में ये पद्म पुरस्कार जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसमें अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण सुश्री एन राजम को कला के क्षेत्र में मिला, और पद्म भूषण हमारी जिनके गाने हम बहुत बजाते हैं सुश्री अलका याग्निक को मिला कला के क्षेत्र में।
1: हाँ, और पद्मश्री मिला सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर को खेल के क्षेत्र में मिला है इन्हें। सुश्री सविता पुनिया, इन्हें भी खेल के क्षेत्र में ही मिला है, हॉकी में मिला है इन्हें।
0: और इसके अलावा गायत्री बाल सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में, रंजनी बाल सुब्रमण्यम और देवी की अम्मा जी सामाजिक कार्य में, और सुनीता गोडबेले ये चिकित्सा के रूप में संयुक्त इन्हें मिला है। तो अगर देखिए तो बेटियां आज कहां नहीं है,
1: कहां नहीं है, बिल्कुल
0: हर क्षेत्र में है बेटियां। तो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बेटी पैदा होती है तो घर में बड़े गाजे बाजे के साथ आती है, तो भाई आना भी चाहिए, क्योंकि बेटियां हमारी जो है वो देश की भविष्य की कर्णधार है।
1: बिल्कुल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है हम नवा और हम नवा में मैं हूँ शिप्रा चंद्रा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी को होस्ट कम दोस्त ऋतु निगम।
5: बिल्कुल। और शिप्रा, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं।
4: बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। और बेटियों की बात चली है तो हमारी सखियों सहेलियों की भी बात
5: बिल्कुल होनी चाहिए। कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज की नींव होती है। महिलाएं घर की धुरी होती हैं, वे माँ, बहन, पत्नी, बेटी और कर्म योगिनी के रूप में हर जिम्मेदारी निभाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरों का ध्यान रखते रखते वे अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देती हैं, है ना शिप्रा?
4: बिल्कुल कर देती हैं कि भाई पहले सबको खिला दें पिला दें उसके बाद हम खाएंगे। छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं तो अक्सर महिलाएं क्या होती है, सबसे पहले परिवार की जरूरतों को पूरा करती हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और साथ में ऋतु जॉब भी करती हैं।
5: बिल्कुल।
4: और रिश्तों की जिम्मेदारियों के बीच में जिम्मेदारियां भी निभाती हैं कि आज बर्थडे है इनके घर में तो आज उनके घर में ये है, तो ये सारी चीजें भी उन्हीं को देखनी रहती हैं। और बेसिकली कहीं ना कहीं देखा जाए ऋतु, तो यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि उनका एक ये भी होता है कि वो सब चीजों का लेखा जोखा रखती हैं कि अगर कोई आया है तो इसे क्या देना है।
5: बिल्कुल,
4: और
5: जाते
4: समय अगर मान लीजिए सपोज हम सखियों सहेलियों की बात कर रहे हैं कि अभी गर्मी की छुट्टियों में आपकी नंद आई है तो आप सोचेंगे कि नहीं जाते समय हम इन्हें कुछ गिफ्ट
5: कुछ गिफ्ट दें।
4: लेकिन मुझे लगता है जेंट्स का ये माइंडसेट नहीं होता, उन्हें बताना पड़ता है कि आप जो है ऐसा करिए। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं जो प्रेम और स्नेह और अपनत्व को बढ़ाती हैं। बात गिफ्ट की नहीं होती है, बात ये है कि हम आपका कितना ध्यान रख रहे हैं और आपके आने से हमें कितनी खुशी हुई है। तो ये सारी चीजें होती हैं और इन सबके बीच में कहीं अपने आप को भूल जाती हैं, कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। थकान होती है, कमजोरी होती है, दर्द भी होता है, लेकिन वो साथ में परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती हैं और कई बार ये सोच के डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं कि अभी तो काम बहुत है बाद में देख लेंगे। और क्या होता है कि ये छोटी छोटी दिक्कतें बॉडी आपको बताती है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यही छोटी छोटी समस्याएं आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती हैं, तो इसके लिए जागरूकता बेहद
5: जरूरी है। और हमारे समाज में आज भी कई महिलाएं खुलकर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात नहीं कर पाती हैं, विशेषकर मानसिक तनाव, हार्मोनल बदलाव या स्त्री रोग संबंधी परेशानियों को भी छुपाकर सहती रहती हैं। और इसके अलावा समय की कमी तो है और आर्थिक निर्भरता और सामाजिक संकोच भी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य से दूर कर देता है।
4: यही कारण है कि भारत देश में हमारे जो ये बीपी का प्रॉब्लम है, एनीमिया का, थायराइड, कैल्शियम महिलाओं में बहुत ज्यादा देखा जाता है।
5: बिल्कुल,
4: है ना। और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसीलिए अब समय आ गया है, समय है कि हम अपने बारे में भी कुछ सोचें, महिलाएं अपने बारे में भी कुछ सोचें। तो ये आपको अपना माइंडसेट खुद ही चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है
5: कि हमें पहले खुद ही करना होगा।
4: हाँ, पहले हम खुद को देखें क्योंकि हम कहीं ना कहीं परिवार की नींव है, परिवार की धुरी हम कहे जाते हैं, तो हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा और ये जागरूक हमें खुद को होनी चाहिए।
5: और इसके लिए बिल्कुल होना चाहिए शिप्रा, और इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं जो हैं वो संतुलित आहार लें, टाइम से खाना खाएं, नाश्ता करें और पर्याप्त पानी भी पिए, नियमित रूप से व्यायाम करें और पूरी नींद लें। डेली कम से कम आधा घंटा योग, प्राणायाम या तेज चाल से चलना शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। कहने का मतलब ये है कि अपने लिए टाइम निकालें।
4: अच्छा, टाइम निकालने की बात है तो मुझे लगता है कि टाइम निकाल भी नहीं पाते हैं और इसके लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट।
5: बिल्कुल,
4: है ना। अगर आप राइट टाइम सारे काम कर रहे हैं तो आपको इतना, आपने आधा घंटा इस काम को दे दिया, 15 मिनट इस काम को दे दिया, 15 मिनट, तो आपका कोई ये बट नहीं होगा इसमें। आप जो है इन टाइम सारे काम भी करेंगी और साथ में ब्रेकफास्ट भी लेंगी, कुछ चीज स्किप नहीं होगी, लंच स्किप नहीं होगा, शाम की चाय

0: स्किप नहीं होगी, जो शाम की चाय तो जरूरी होती है वो तो ले ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये सारी चीजें हैं टाइम मैनेजमेंट।
1: टाइम बिल्कुल, अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो निश्चित बात है कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे।
0: अच्छा, ये बात तो सभी पे लागू होती है, टाइम मैनेजमेंट की बात तो सभी पे लागू होती है। तो इसके साथ साथ क्या है कि नियमित अपनी हेल्थ की जो जांचें हैं वो कराना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को इग्नोर ना करें कि कमर दर्द हो रहा है, कि सर दर्द हो रहा है,
1: और काम करते जा रहे हैं लेकिन
0: चले जा रहे हैं, है ना। तो ये, और साथ में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, है ना। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके हॉबीज हैं, टहलना घूमना, वो भी आप रखिए, और संगीत, पुस्तकें, ध्यान, सकारात्मक गतिविधियों का सहारा लेना चाहिए।
1: बिल्कुल शिवरा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि महिलाओं को ये समझना होगा कि खुद का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है, आवश्यकता है। ये जब महिला स्वस्थ होगी तभी परिवार खुशहाल होगा। समाज और परिवार की भी जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं को सम्मान, सहयोग और आराम दें। घर के काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होने चाहिए। जब परिवार साथ देता है तब महिला शारीरिक और मानसिक रूप अधिक मजबूत बनती है, और ये

0: ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है, आवश्यकता है। ये जब महिला स्वस्थ होगी तभी परिवार खुशहाल होगा। समाज और परिवार की भी जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं को सम्मान, सहयोग और आराम दें। घर के काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होने चाहिए। जब परिवार साथ देता है तब महिला शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि घर में जितने सारे मेंबर्स हैं अगर तो वो सब अपना अपना काम बांट लें, सारा काम महिला के ऊपर ही ना पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि अच्छे से काम हो सकता है।
1: अच्छा, फैमिली में क्या होता है ऋतु, मैं एक चीज और नोटिस करती हूँ कि अगर बहू है तो वो सजी सवरी भी रहे और मुस्कुराती भी रहे, तो और उसके साथ उसके ऊपर
0: काम भी करती रहे,
1: जिम्मेदारियां प्यार भी बांटे। तो भाई ये तो आपकी बहू सजी सवरी रहे और मुस्कुराती रहे, उसके लिए ये भी जरूरी है कि आप भी थोड़ी सी उसकी मुस्कान में इजाफा करें, सारे काम सब में बांटे। ये बेटा काम नहीं करेगा कि साथ में और फैमिली के घर, तो ये माइंडसेट से आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार आपका हेल्दी फिट एंड फाइन रहेगा, ये तय बात है।
0: बिल्कुल, तो जो हर घर को रोशन करती है उसे भी अपने जीवन में उजाला चाहिए, जो सबका ख्याल रखती है उसे भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत सा गाना प्ले कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है थिरकता हुआ

0: ये दीवानी शाम और ये मतवाली शाम और इससे ऋतु कुछ याद आ रहा है आपको? कल के
1: मुझे
0: नजारे
1: तो, हाँ बिल्कुल शिप्रा, मुझे तो ये गरजने वाली बात से याद आ रहा है कि कल कुछ ऐसा ही शाम के टाइम मौसम था, मतलब ये बादल गरजने वाली जो बात है,
0: हाँ, है ना, बिजली चमकी थी,
1: बिजली भी चमकी थी, हाँ बिजली भी चमकी थी क्योंकि उस टाइम मैं कुछ लेने के लिए बाहर निकली थी और एकदम से मतलब बिजली चमकी और आंधी आने के भी आसार नजर आ रहे थे, थोड़ी बहुत आई लेकिन उसके बाद
0: बादल जो है उड़ा ले गए। देखिए ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है, भैया मोनु सेठ का मैसेज है जो लिख रहे हैं, आरजे जी आपको नमस्ते, कैसन है आप
1: भाई? बिल्कुल बढ़िया है हम लोग तो।
0: इन्होंने लिखा है, बैठ रही अति सघन बन पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी झेट की छाहो चाहत छाह, प्यारी ससई का प्रसिद्ध दोहा है भैया मोनू सेठ जी, जो ये आपने लिख करके भेजा है कि छाया भी छाया ढूंढती है जेठ के महीने में, गर्मी का ये आलम है। और क्या आलम है ये तो हम सभी को इस समय पता चल रहा है। और अच्छा ऋतु ये बताइए कि भीषण गर्मी के इन दिनों में आपका मन क्या करता है?
1: क्या मन करता है? मेरा तो बाहर जाने का बहुत मन करता है लेकिन धूप देखकर चुपचाप अपने मन को समझा लेते हैं कि बाहर ना निकलने में ही भलाई है। और सच पूछो तो ये मन तो चंचल है, शाम को तो बाहर जा सकते हैं बल्कि बिल्कुल ढलती शाम में जब सूरज चाचा दिन भर आग बरसाने के बाद थके हारे पश्चिम की गोद में समाने को बेताब होते हैं, ऐसे में अपना कानपुर और गंगा तट जो है वो डूबते सूरज को निहारिए और शीतल हवाएँ कहीं से बादलों की फौज आकर डाले आसमान में डेरा और आयुध की तरह कड़कती बिजली बार बार चमके तेज आवाज के साथ साथ में पड़े रिमझिम फुहार।
0: अरे बस करिए ऋतु जी, आपने तो इतना अच्छा सीन क्रिएट कर दिया कि मुझे लग रहा है मैं आज ही शाम को गंगा तट पे चली जाऊं और फिर ये सारा अगर ये इंसिडेंट हो गया है जैसा कि अभी आपने अपने ख्वाबों ख्यालों की बात बताई है क्या क्या मन करता है, वो भाई मैं आपको सैल्यूट करने जरूर आऊंगी कि आपने जैसा कहा था वैसा, लेकिन अब तबाह चल रहा है तो अभी ऐसी उम्मीद
1: बिल्कुल उम्मीद नहीं है।
0: हालांकि थोड़ी सी नमी और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं तो ये बीच बीच में आंधी और पानी आता रहता है और बिजली चमकती रहेगी और आपका मन बहुत कुछ चाहता है ये मैं समझ गई ऋतु जी
1: सच में। और शिप्रा अच्छा बताओ एक सवाल, आसमान में बिजली क्यों चमकती है, ये सवाल है तुमसे?
0: अच्छा सवाल है आपका, तो क्या ख्याल है आपका क्यों चमकती है?
1: ये तो मैंने तुमसे पूछा है।
0: हाँ, हमने बचपन में सुना था कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है, तो ये प्रकृति का एक अद्भुत खेल है। आसान भाषा में इसे बताएं ऋतु, तो जब आसमान में बादल बनते हैं तो उनके अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदे बर्फ के रूप में जमा पानी होता है, तो कणों को और ये टुकड़ों के रूप में ये पानी होता है और ये बूंदे और ये कण जब आपस में टकराते हैं तो एक स्पेशल पावर जो होती है वो प्रोड्यूस होती है जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो बादल में ऊपर का हिस्सा हल्का होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण और नीचे का हैवी नेगेटिव चार्ज वाला, तो जब बादल पावरफुल होता है और ये एनर्जी या तो दूसरे बादलों की ओर जाती है या फिर जमीन के ओर आती है, तेज रोशनी के रूप में चमकती बिजली होती है और ये हमें आसमान में बिजली के रूप में दिखती है जो आपने कल देखी थी, आपने बताया मुझे।
1: जी सही जवाब है बिल्कुल, और आसमान में बिजली चमकने का मुख्य कारण बादलों में मौजूद पानी की बूंदों और बर्फ के कणों का आपस में टकराना है। इस घर्षण से भारी मात्रा में विपरीत विद्युत आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा होता है और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है घर्षण के कारण।
0: अच्छा घर्षण की आपने बात करी ऋतु, तो मुझे फ्रिक्शन की बात करी तो मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया, बताऊं आपको?
1: बिल्कुल।
0: मैजिक करते थे हम अपने स्कूल डेज में, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ये करते थे और बालों को स्केल पर खूब तेजी से रगड़ते थे और फिर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो टुकड़े क्या होता था स्केल से चिपक जाते थे और बहुत ही फेवरेट खेल था मेरा, मतलब मुझे दिन में एक बार तो ये करना ही करना था स्कूल में।
1: मेरा भी शिप्रा, होता क्या है इसमें जो साइंस है वो ये है कि स्केल रगड़ने के दौरान स्केल से जो है वो स्थैलिक विद्युत उत्पन्न हो जाती है, घर्षण से बालों के कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर स्केल पर आ जाते हैं और स्केल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जब इसे कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज का पॉजिटिव चार्ज स्केल की तरफ आकर्षित होता है और वो टुकड़े स्केल से चिपक जाते हैं।
0: बिल्कुल ये तो साइंस की बात हुई लेकिन उस समय तो मुझे ये जादू ही लगता था।

0: साइंस में जाते हुए मैजिक ऑफ साइंस। अब जल्दी से बताइए रितु, उस मछली का नाम जो पानी के अंदर तैरते तैरते देती है तेज झटका, बहुत सवाल पूछ चुकी हैं आप, इसलिए मैं भी पूछ रही हूँ।
1: भाई सबसे फेमस जो है बिजली का झटका देने वाली जो मछली है वो है ईल मछली, देती है 800 वोल्ट तक का बिजली का झटका।
0: लग गया क्या 440 वोल्ट छूने से तेरे, बिल्कुल दूर रहिएगा जहाँ ईल मछली दिखाई दे आपको।
1: देखो
0: सही जवाब, आज बहुत सारी बातें की हमने ऋतु, बिजली के बारे में, कड़कती चमकती बिजली आसमान में देखने तो नजारा शानदार रहता है, और यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है,
1: बिल्कुल पढ़िए।
0: इधर फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, इधर फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, उधर हमें भी धुन है आशियां बनाने की, उधर हमें भी धुन है आशियां बनाने की।

0: तो शिप्रा अपना वह प्रोग्राम में बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं अकेलेपन से जूझते वृद्ध जन, इनकी समस्या और समाधान के विषय में।
1: जी बिल्कुल।
0: तो शिप्रा, किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। हमारे वृद्ध जन वो नींव हैं जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण परिवार और समाज के निर्माण में लगाया। उन्होंने अपने सपनों का त्याग करके अगली पीढ़ी का भविष्य संवारा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वही बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। पहले क्या होता था, संयुक्त परिवारों की परंपराएं थी और घर में दादा दादी की उपस्थिति से परिवार में अपनापन, संस्कार और अनुभवों की समृद्धि रहती थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बदलते समय, आधुनिक जीवन शैली और एकल परिवार जो है उसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने बुजुर्गों को परिवार से दूर कर दिया है। बच्चे नौकरी या शिक्षा के लिए दूसरे शहरों और देशों में चले जाते हैं और क्या होता है, माता पिता अकेले रह जाते हैं।
0: अकेलापन केवल एक भावना नहीं है शिप्रा, बल्कि एक गंभीर समस्या है। ये वृद्धजनों को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। वे अवसाद, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी समस्याओं से घिर जाते हैं। कई बार उन्हें ये महसूस होने लगता है कि अब उनकी किसी को आवश्यकता नहीं रही और ये स्थिति जो है वो बहुत ही दुखद होती है।
1: बिल्कुल। तकनीक ने जहां इस दुनिया को करीब लाया है, वहां कई बुजुर्ग इससे दूर हो गए हैं। जैसे कि मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया को ले लीजिए, इससे सहज नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि घर में बाकी लोग तो मोबाइल और इंटरनेट लिए हुए हैं और वो तो चला नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि आप तो बिजी हैं उसके साथ, तो वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं और फिर वो आपको कुछ कहते हैं तो आपको लगता है कि भाई हमें तो हमेशा टोकाटाकी होती रहती है। सबसे मेन काम यही होता है। तो एक एज फैक्टर होता है, उसके बाद क्या होता है, बुजुर्ग भी बच्चा बन जाता है कहीं ना कहीं। तो जैसे आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसे ही बुजुर्गों का भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चे की सारी शरारतें है ना और सारी चीजें हम देखी करते हैं कि नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल। और तो ऐसे ही हमें बुजुर्गों की भी करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और ऐसा सभी के साथ होगा, हमारे आपके साथ भी होगा। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि शरीर अक्षम होने लग जाता है, तो मित्रों और परिचितों की संख्या भी कम होने लग जाती है। तो कई साथी या तो दूर चले जाते हैं या बहुत से ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में उनका साथ नहीं निभा पाए, दुनिया छोड़ के आगे बढ़ लिए, अभी वो पीछे हैं। तो परिवारों में बुजुर्गों को बोझ समझा जाने लगता है, उनकी बातों और अनुभवों को महत्व नहीं दिया जाता, जिससे वो मानसिक रूप से टूटने लगे।
0: बिल्कुल शिप्रा। और अब प्रश्न ये है कि समस्या का समाधान क्या है। तो सबसे पहला समाधान ये है कि परिवार का प्यार और सम्मान, यदि परिवार के सदस्य प्रतिदिन कुछ समय बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी बातें सुने और उन्हें महत्व दें, तो उनका अकेलेपन जो है काफी हद तक कम हो सकता है।
1: बिल्कुल। आप उनके साथ बैठिए तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, पुरानी बातें करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे आपको लाइफ में। देखिए, जो एक्सपीरियंस से इंसान बताता है, डिसीजन लेता है, और उसमें जो हम लोग सडन तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। वो दूरदर्शी सोच के साथ लेता है डिसीजन। तो इस कारण भाई बुजुर्गों का सम्मान भी करिए और उनसे बातचीत भी करिए और हर डिसीजन में उनको साथ भी लीजिए।
0: बिल्कुल। जैसे तुमने कहा बातचीत, तो जो ये छोटी सी बातचीत भी जो है ना बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और तो बातचीत करना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें लगे कि हाँ, हमारा जो परिवार है वो हमसे जुड़ा हुआ है। और जो बच्चे हैं हमारे घर पर, उन बच्चों को भी उनके पास बैठने के लिए बोलना चाहिए, उनसे बातें करने के लिए बोलना चाहिए, ताकि बच्चे भी उनसे कनेक्ट हो जाएं। और क्योंकि देखो, बच्चे जब हंसते खेलते हैं ना तो दादी बाबा को बहुत अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है,
0: अपनापन लगता है उन्हें और इन्हें लगता है कि हाँ, घर में चहल पहल है।
1: वो कहावत भी है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं मूल से ज्यादा सूत प्यारा होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल शिप्रा। लेकिन आज के समय में ना बच्चे मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं और बातचीत नहीं करते हैं।
1: चीजों की जड़ यहीं पे आके खत्म होती है, मोबाइल सोशल मीडिया।
0: बिल्कुल
1: है ना। तो भाई इससे फास्ट लेना चाहिए, मुझे तो लगता है वीकली आप 2 दिन तो लीजिए और मोबाइल स्विच ऑफ जरूर करिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मशीन है वो भी, उसको भी आराम चाहिए। और आप बातें करते करते जरा ऋतु जरा घड़ी पे भी निगाह कर लीजिए,
0: टाइम
1: बीता जा रहा है। तो जो आप बड़ी बड़ी अच्छी सी रेसिपी लेकर के आई है और उस रेसिपी का नाम सुनते ही मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो ऋतु लेकर के आई है आज आपके लिए डियर रेनबो लिसनर्स जल कांजी की रेसिपी। कैसे बनाते हैं इसे शेयर करेंगी आपसे, और मैं आपको बता दूं कि तपती गर्मी में पेट को ठंडा रखती है और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी अचूक आयुर्वेदिक उपाय है जल कांजी। तो कैसे बनाते हैं ऋतु, शेयर कर रही है।
0: बिल्कुल। और इसके लिए सबसे पहले पानी लेना है 2 लीटर उबला और ठंडा, दरदरी पीसी राई 3 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, हींग आधा छोटा चम्मच, चम्मच सेंधा नमक, एक बड़ा चम्मच काला नमक, एक छोटा चम्मच। और इसे बनाना कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है। कांच के मर्तबान में पानी भरकर सभी सामग्री डालें, लकड़ी के चम्मच से मसालों को पानी में मिलाएं, स्टील का चम्मच यूज ना करें, और जार के मुंह पर सूती कपड़ा बांधें और उसे 2-3 दिन के लिए आप सूरज की रोशनी में, मतलब आप कमरे में भी रख सकते हैं, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी है कि कमरे में भी अगर आप रखेंगे तो वो जो है वो फर्मेंट हो जाएगा, है ना। और ये जो है हमने बताया, अभी तुमने भी बताया कि आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, अपच दूर करता है, साथ ही गर्मी में खनिजों की पूर्ति भी करता है।
1: और अब हम एक गाना ट्रैक आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ा ही प्यारा सा, ये रहा थिरकता हुआ।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 413 करोड़ रूपये की लागत वाली इन परियोजनाओं में शुरूआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा, हमारा लक्ष्य लखनऊ को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाना है। मुख्यमंत्री आज शाम प्रयागराज में नवनिर्मित सदन हॉल और विभिन्न जन उपयोगी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं हमारे नगरों को अधिक आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के साथ नागरिक जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। केंद्र सरकार ने कल एलपीजी आपूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन आदेश 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं जिनके पास पीएनजी कनेक्शन भी है, वे पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन हटाने के लिए आवेदन करते हैं या गैर पीएनजी क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन की भविष्य में बहाली के लिए ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रावधान विशेष रूप से तबादलों वाले कर्मचारियों, प्रवासी परिवारों, किरायेदारों, छात्रों या गैर पीएनजी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने वाले परिवारों के लिए लाभदायक है। सऊदी अरब में आज से हज की शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय हज के पहले दिन भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग कल मीना के टेंट सिटी में इकट्ठा हुए। हज यात्री आज पूरा दिन अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे और कल सुबह मीना लौटकर हज के जरूरी अरकान पूरे करेंगे। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा और बड़े मंगल पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सरयू तट के विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंत्रोच्चार, गंगा पूजन और दान पुण्य कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों की निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिरों और घाटों को विशेष रूप से सजाया गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई BNB ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई BNB ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

12:04 हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। गर्मी का भी खास ख्याल है, बड़ा मंगल भी है आज, और बहुत सारी चीजें हैं जो शहर में हो रही हैं। सारी चीजें शेयर करने वाले हैं हम आज के दिन, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक आप तक।

जी हाँ बिल्कुल, सेल्फी ली जाती है जब जब हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं और कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो एक बार सेल्फी, दो बार सेल्फी और लगातार सेल्फी सेल्फी चलती रहती है। फिलहाल ये जो प्रोग्राम है आज का, और आज ट्यूजडे है और हमेशा हम अलग अलग दिन के अलग अलग सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आते हैं इस प्रोग्राम में, और आज का जो सेगमेंट है वो भी है बहुत ही फायदेमंद जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारी फीमेल लिसनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आज का जो सेगमेंट है वो है फैशन डिजाइनिंग। और फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक ही लिमिटेड नहीं है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक बहुत ही शानदार सा तरीका है। फैशन डिजाइनिंग आज के वक्त में एक ऐसा करियर भी बन चुका है, एक ऐसा करियर ऑप्शन बन चुका है जिसमें ग्लैमर भी है, क्रिएटिविटी भी है और बहुत सारे अवसर भी हैं, मौके भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो आज के फैशन की इस रंगीन दुनिया को थोड़ा सा और करीब जाएंगे, थोड़ा सा और जानेंगे और क्या क्या फैशन है आजकल के मौसम में, आजकल के हिसाब से आप कौन कौन से कपड़े हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, कलर्स हैं जिनको आप पहन सकते हैं और गुड लुक आप लोगों को दे सकते हैं। फिलहाल एक ट्रैक और है जो आ रहा है आप तक, उसके बाद और बातें आपसे।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, FM रेनबो।
6: आई एम संध्या त्रिगुनी, बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
7: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताज़ा जानकारियाँ भी देता है, दैट्स व्हाई आई लव FM रेनबो।
8: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
9: बारह बजकर 17 मिनट हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और आज हम बात कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग की। और फैशन डिजाइनिंग में सबसे पहले जो ध्यान जाता है, जो हमारी और आपकी सोच जाती है, वो सिर्फ कपड़ों पर ही जाती है। और हमेशा लोग ये सोचते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टाइल हैं, कौन कौन से ऐसे कलर हैं जिनको हम मिक्स एंड मैच करके अपनी अच्छी सी एक ड्रेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहने हुए, और ऐसा लगता है कि किसी शादी में जब हम जाते हैं तो कोई ऐसा डिजाइनर लहंगा हम देखते हैं, और उसके बाद हम जब हम ये सोचते हैं कि भाई किसने डिजाइन किया होगा, ये कितना कैची लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, तब फिर हमें समझ में आता है कि जो इसके पीछे की मेहनत है वो किसी फैशन डिजाइनर की मेहनत है। और वो फैशन डिजाइनर की जो मेहनत है और जो इमेजिनेशन उसने किया है इस आउटफिट को तैयार करने के लिए, वो भाई कमाल की होती है। अब फैशन डिजाइनर कौन? फैशन डिजाइनर वही इंसान होता है जो नए स्टाइल्स क्रिएट करता है, कपड़ों के डिजाइन तैयार करता है और एक नए ट्रेंड्स को कह सकते हैं कि पैदा करता है, जन्म देता है। और एक बात ये भी सही है कि फैशन डिजाइनिंग केवल सिर्फ ये नहीं है कि आपने कपड़े बनाने का काम सीख लिया, कलर्स हैं, फैब्रिक्स हैं, पैटर्न्स हैं, क्रिएटिविटी है, ये सारा कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है और आप एक अच्छी ड्रेस तैयार कर सकते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे धीरे धीरे आगे और आगे जाके कामयाब फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। और हमेशा जब फैशन डिजाइनर होते हैं उनके अंदर एक नई कल्पना जन्म लेती है, एक अलग अलग तरह के कलर्स के साथ वो लोग खेलते हैं, कौन कौन से जो कपड़े हैं, फैब्रिक्स हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होना है, कहाँ पर स्लीव्स कैसी बननी है, कैसे नीचे फ्लेयर्स आने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल होती हैं। फिलहाल लहंगे से याद आया कि एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है लहंगा, और वो जो गाना है उसको जब भी किसी शादी में आजकल आप जाते हैं या कहीं पर मेहंदी का फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन है, तो वो जो गाना है वो जरूर प्ले होता है।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

बारह बजकर 23 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, तरन्नुम है आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं कि फैशन डिजाइनिंग में आप कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। फिलहाल आजकल देखिए आप, फैशन इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब सिर्फ इसमें कपड़े ही नहीं है, मतलब लिमिट सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, बल्कि ज्वेलरी है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, फुटवेयर डिजाइनिंग है, मेकअप स्टाइलिश है, और जो मेकअप स्टाइलिंग है उसके अलावा फैशन फोटोग्राफी जैसे कई जो नई फील्ड है वो भी इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। और अगर हम अपने देश की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, और खासकर अगर अपने लखनऊ की बात करें, तो फैशन का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और काफ़ी रिच भी रहा है। अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी है, लखनऊ की चिकनकारी है, गुजरात की बांधनी है, पंजाब की फुलकारी सूट्स हैं, और दुनिया भर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेमस हैं। और हमारे जो इंडियन डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन को मिलाकर एक नया ट्रेंड बना दिया है। और बहुत सारे कपड़े हैं, आप देखिए कि अगर चिकन के कुर्ते देखते हैं आप, चिकन की साड़ी देखते हैं, उसमें एक अलग अलग पोत वर्क भी आपको नजर आएगा, जरी वर्क भी नजर आएगा, कामदानी भी नजर आएगी, बहुत सारी चीजें हैं जो एक अलग तरह का फ्यूजन बना के एक नई ड्रेस स्टाइल की गई है, और उसको जब हम और आप कैरी करते हैं तो फिर वो अलग ही लुक देती है। और लोग जरूर पास आके पूछते हैं, भाई ये हैंडमेड है, तो आप बहुत ही स्टाइल में बताते हैं कि यस ये हैंडमेड है। और इसी तरह अलग अलग कलर्स जो हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं कैसे, सतरंगी चैनल को आप इंजॉय करते रहते हैं। और सतरंगी से याद आया कि एक और ट्रैक है जो काफी हिट हुआ था और काफी फेमस भी हुआ था, और उसका नाम ही कुछ ऐसा है कि हम और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो करें

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और 12:35 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम में आपके साथ। और मेरे साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसको अपना सकते हैं और एज अ फैशन डिजाइनर अपना करियर बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है, उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, वो फैशन डिजाइनर बन गई, आप भी बन जाएंगे, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर आपके अंदर कोई शौक है, सचमुच आपको कलर से खेलने का शौक है, सचमुच आपको ऐसा लगता है कि कपड़ों में आपकी दिलचस्पी है और सचमुच आपको ऐसा लगता है कि कपड़ों को लेकर नए नए जो आइडियाज हैं वो आपके अंदर आते हैं, नई नई जो क्रिएटिविटी है वो आपके अंदर जन्म लेती है, आप रात में भी सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं कि कैसे एक सिंपल से कुर्ते को अच्छा सा बनाया जाए, कैसे एक अच्छी सी दुपट्टे को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए, तो आप इस फील्ड में जाने के लायक हैं, जा सकते हैं आप। और फैशन डिजाइनिंग के लिए एक शानदार फील्ड भी है जो आपका इंतजार कर रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्सेज भी कराते हैं जहां स्टिचिंग है, स्केचिंग है, टेक्सटाइल नॉलेज है और फैशन मार्केटिंग जैसी चीजें सिखाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपकी बहन ने कोर्स कर लिया तो आप भी कर लीजिए, आपकी बहन है या आपकी दोस्त है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो एक उनका सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें एक ही तरह के लोग होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, सामने वाले की सोच और दिमाग नहीं है। आपको नहीं पता सामने वाला का जो दिमाग है, जो सोच है, वो क्या सोच रही है, उसके अंदर कौन सा हुनर छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी इंसान इस धरती पर, इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, और उस टैलेंट को, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको आपको उजागर करना है, समझना है आपको कि किस फील्ड में आपकी दिलचस्पी है। अगर आप वाकई फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये फील्ड है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई, हमें ये सब करना नहीं, हमें सिर्फ अपने कपड़ों को ही डिजाइन करना है, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप अपने कपड़ों को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पुराने कपड़े होते हैं, जो पुराने कुर्ते होते हैं, जो आउट ऑफ फैशन कहलाते हैं, या बहुत सारी ऐसी हेवी ड्रेसेस हमारे पास होती हैं जिनको हमें लगता है कि बताओ इतना महंगा ले लिया लेकिन फालतू पड़ा हुआ है, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको आप तरह तरह की डिजाइन दे सकते हैं और आप कैरी करके फिर से एक बार एकदम न्यू लुक हासिल कर सकते हैं। फिलहाल एक फिल्म आई थी जो बनी थी पुरानी स्टोरी पे, लेकिन कमाल के उसके गाने, कमाल के उसके डांस नंबर, तो भाई ये जो ट्रैक है ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वक्त आपको बता दें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: ब्लॉक करता हूँ,
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई बीएनबी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई बीएनबी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

आप घाघरा बनाते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपने चुपके से ये घाघरा बना के तैयार कर लिया है, आप कहाँ लेकर जाएं, मार्केटिंग कौन करेगा, इतना पैसा भी नहीं है, कैसे क्या करें, ये सारी जो चीजें हैं ना वो अब बहुत दूर की बात हो गई है। मतलब ऐसा होता था कि पहले कोई आपकी कोई क्रिएटिविटी होती थी, आपकी कोई आर्ट होती थी, तो फिर आप जाते थे, आप उसकी फोटो जो है उसे खींचते थे, फिर अपलोड करवाते थे, फिर विज्ञापन देते थे। लेकिन अब यूट्यूब का जमाना है और लोग बहुत तेजी से वायरल हो जाते हैं, जो भी उनकी रील होती है, जो भी उनमें टैलेंट होता है वो उसको उस पर डाल देते हैं। और जहां तक कहा जा सकता है कि आज के वक्त में सोशल मीडिया ने फैशन इंडस्ट्री को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और फैशन ब्लॉग्स जो हैं, उसकी वजह से जो नए नए डिजाइनर्स हैं उनको अपने टैलेंट को दिखाने का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल गया है। कई यंग डिजाइनर्स हैं जो घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अपने यूनिक डिजाइन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है दोस्तों कि फैशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन लीजिए। असली फैशन वही है जिसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हों, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हों। कई बार सिंपल ड्रेसिंग भी बहुत क्लासी लगती है। फैशन हमें ये सिखाता है कि खुद को कैसे अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर दुनिया में फैशन ना होता तो हर इंसान एक जैसे कपड़ों में दिखाई देता। फैशन ही हमारी जो पर्सनालिटी है उसको अलग पहचान देता है। कोई ट्रेडिशनल पहनना पसंद करता है, कोई वेस्टर्न, कोई फ्यूजन स्टाइल, और हर स्टाइल जो है वो अपने आप में एक कहानी कहता है। और आज के दौर में जो सस्टेनेबल फैशन का ट्रेंड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे कपड़े और डिजाइन जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। कई डिजाइनर्स तो इको फ्रेंडली फैब्रिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फैशन के साथ वो नेचर का भी ध्यान रख

सके। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम नेचर का ध्यान रखेंगे तभी हम आगे सर्वाइव भी कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप जो गर्मी है वो शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि शायद हम लोग कहते हैं कि बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन जरा नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए, जो भी बड़ी ही नहीं हुई है, उसके बारे में, उसके लिए हम क्या देके जाएंगे, हम क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गहरा विषय है, इस पर सोचना है। लेकिन अभी फिलहाल हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं, फैशन की बात कर रहे हैं। और फैशन में जब आप एक अच्छा सा ड्रेस तैयार करते हैं, एक अच्छी सी कोई भी स्टाइलिश चीज आप तैयार करते हैं, तो लोग कहते हैं आफरीन आफरीन, यानी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। फिलहाल आफरीन ट्रैक याद आया और प्ले कर दिया, पहुंचा दिया आप तक।

जी हाँ, अफरीन अफरीन, आपको लगातार कहते रहना है रेनबो को लेकर। और 12:54 हो गए हैं, प्रोग्राम शत्रुपा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत तरन्नुम को। और ये जो जाल है ना रेनबो का, प्रेम जाल, इसमें आप ऐसे ही फंसे रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 413 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं में शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग में देश में तीसरा स्थान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को पहले नंबर पर लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम के साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। प्रदेश में 31 मई को बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी क्रम में आज मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा। बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा देर रात हुआ जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले गाजीपुर और चंदौली के रहने वाले थे, कैंचीधाम दर्शन के लिए जा रहे थे। 28 मई को होने वाले ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मेरठ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के धर्मगुरुओं, गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की कि पर्व को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, साथ ही शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसी भी नई परंपरा को शुरू न करने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, इस घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: और 1:03 हो चुके हैं, प्रोग्राम होटो पे तेरी बात लेकर हाजिर है तरन्नुम। और आज का सवाल ये है, आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं, सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन की सबसे ज़्यादा याद दिला सकती है, वो कौन सी चीज़ है जो बचपन में सबसे ज़्यादा आपको याद दिलाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। आपको बताने कुछ देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, सुनते रहिए।

जी हाँ, रेनबो पर जो सॉन्ग की पार्टी लगातार चल रही है वो तो ऐसे ही जारी और सारी रहने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि हमने आपसे सवाल किया है कि वो कौन सी चीज है जो आपको बचपन की सबसे ज्यादा याद दिलाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। फिलहाल स्वीटी जी का मेल आ गया, बजाजा लखनऊ से लिख रही है कि बचपन की जो हमें सबसे ज्यादा याद दिलाती है वो जो छोटे छोटे बच्चे जब साइकिलिंग करते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि काश मेरी भी वही कलरफुल साइकिल जो थी अभी भी मेरे पास रखी हुई है, काश मैं फिर से छोटी बन जाती और ऐसे ही सड़क पर साइकिल चलाती हुई फिरती। फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बचपन की याद दिलाती हैं, लेकिन आपको एक चीज हम और याद दिला दें, और याद ये दिलाना है कि इलाकाई खबरें कुछ देर में आप तक पहुंचने वाली हैं। सुनते रहिए होठों पे तेरी बात तरन्नुम के साथ।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रेसिडेंट हाउस में मुनक़िद नागरिक अलंकरण जलसे में साल 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सरफराज किया गया। जाने माने फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनके तआवुन के लिए बाद अज़मत पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। फिल्म अदाकार की अहिल्या और लोकसभा रुक्न हेमा मालिनी ने यह अवार्ड हासिल किया। बचाने वाले डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। पद्म विभूषण गैर मामूली और खुसूसी खिदमत के लिए, पद्म भूषण खुसूसी खिदमत के लिए और पद्मश्री किसी भी शोबे में खुसूसी खिदमत के लिए दिया जाता है। साल 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्डों को मंजूरी दी है। बकिया पद्म अवार्ड फातेहीन को बाद में मुनक़िद होने वाले जलसे के दूसरे मरहले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 अवामी बहबूदी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 413 करोड़ रुपए के लागत वाले इन प्रोजेक्टों की शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से मुतालिक पुस्तिमक्का का इजरा भी किया। प्रोग्राम में वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि लखनऊ नगर निगम को सफाई रैंकिंग में मुल्क में तीसरा मकाम मिलना एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को अव्वल नंबर पर लाना है। वजीर आला ने कहा नगर निगम के साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो लखनऊ को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला ने कहा,
1: मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए।
0: हुकूमत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की हमवार फराहमी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगरबी एशिया तनाजो पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है।

0: It is touching around 50,000 ton per day now. LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है. 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं.
1: वज़ीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों को खत लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के री एग्ज़ाम को महफूज, हमवार और कामयाबी के साथ मुनक़िद करने की अपील की है. जनाब प्रधान ने पूरे मुल्क के सभी वज़राए आला, नायब गवर्नरों और हुकूमतों से इस मुतालिक़ तआवुन तलब किया है. उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गांव पंचायतों की नई बॉडी तश्कील होने तक या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मुद्दत के लिए आउटगोइंग गांव प्रधानों को गांव पंचायतों का इंतजामिया मुकर्रर किया है. रियासत के गांव पंचायतों के प्रधानों की मुद्दतकार आज खत्म हो रही है. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गांव पंचायतों में आउटगोइंग प्रधानों को इंतजामिया के तौर पर नामजद करने का हक दिया गया है. ये सभी कल से इंतजामिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे. इन सभी को सिर्फ मामूल के मुताबिक और रोजाना के कामों को करने की इजाजत होगी और उन्हें कोई भी हिकमत अमली का फैसला करने की इजाजत नहीं होगी. हुकूमत ने यह भी वाजे किया है कि अगर किसी भी हालत में कोई हिकमत अमली का फैसला जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है. हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे. 5 रोजा हज के पहले दिन कल आजमीन हज मिना के टेंट सिटी में जमा हुए. आजमीन हज आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे. लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में औरास थाना हल्के के किलोमीटर 262 पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही मुसाफिरों से भरी एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई. इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जहां बहक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी का काम शुरू कर दिया. दरियासना उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए सड़क हादसे में जानो माल के हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है. साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन के तई सब्र की दुआ की है. दरियासना गुज़िश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जा बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए. यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई. और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया. रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर इजला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी. अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है. इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ. अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा.

और 1:16 हो चुके हैं, एक बार फिर से शुरू हो चुका है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात। तरन्नुम आपके साथ, और आज हमने आपसे सवाल किया है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बचपन की याद दिलाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@lucknow.gmail.com।

कुछ गाने ऐसे होते हैं कि इनको आप जब भी सुनते हैं तो आपके होठ अपने आप हिलना शुरू हो जाते हैं, पैर जो हैं अपने आप वो ताता थैया करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको आप जब आपको लगता है कि भाई मूड ऑफ है, आपको लगता है कि भाई अब बहुत बोर हो रहे हैं, तो आप उन फिल्मों को देखना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जब हम लोग को लगता है कि भाई अब बोर होने का मौका आ गया है, लेकिन भाई बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, और वो जो लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारे जो लिसनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आपने हमारा मेल शामिल नहीं किया, आज से मैसेज करना बंद, आज से मेल बंद, कान भी बंद कर लेंगे और होठ भी बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं लोग। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको हम शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो आप बताइए भला हम कैसे उसको शामिल कर लें। जैसे कि अभी एक सज्जन हैं, उन्होंने हमें मेल किया है और नाराज़ हो रहे हैं कि भाई मैंने आपको इतनी बार मेल किया लेकिन आपने हमारे मेल का जवाब नहीं दिया। तो भाई जिन्होंने भी हमें मेल किया, आपको बता दें कि जो प्रोग्राम चल रहा है होठों पर तेरी बात चल रहा है, आपने हॉटमेल के लिए हमें मेल किया है, तो उसमें जब टाइम आएगा तो हम आपका मेल ज़रूर शामिल करेंगे, इसलिए नाराज़गी की कोई बात नहीं है। महेंद्र दीपन जी हैं और हमेशा देखिए ये नाराज़ नहीं रहते, हमेशा खुश रहते हैं और लिखते हैं कि आदरणीय आरजे तरन्नुम मैम सादर प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार आपको भी महेंद्र जी, कैसे हैं आप? और जाहिर सी बात है कि आज बड़ा मंगल है तो बूंदी और पूड़ी और सब्जी और शरबत ये सारी चीज़ें चल रही होंगी राजस्थान में भी। नागौर रूण राजस्थान से इन्होंने हमें मेल किया है, बहुत ही खूबसूरत सा मेल हमेशा भेजते हैं, पोस्टर करके भेजते हैं, बहुत अच्छा सा पोस्टर बनाते हैं और लिख रहे हैं होठों पे तेरी बात बहुत चाव से सुन रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा बचपन की याद दिलाती है, इसने तो सीधे मेरे दिल के तारों को छू लिया और मुझे मेरे बचपन के उन हसीन दिनों में वापस भेज दिया। और मैम मुझे अपने बचपन का क्रिकेट सबसे ज़्यादा याद आता है, क्या दिन थे वो भी, सुबह की पहली किरण, आँख खुलते ही बिना किसी चिंता के सबसे पहले हाथ में बल्ला थाम कर मैदान की तरफ दौड़ लगा देना, स्कूल की भाग दौड़, फिर भागते भागते स्कूल जाना, लेकिन दिमाग में बस यही चलना कि भाई छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब होगी, और शाम का अनथक खेल, स्कूल से लौटते ही बस्ता पलट कर दोबारा खेलते ही भाग जाना, ना धूप की परवाह ना थकने का नाम। सच में ऐसे ही होता है जो बचपन होता है हमारा और आपका, और अपनों की डांट का जो प्यार होता है ना, देर शाम जब घर से लौटने पर घर वालों की वो प्यार भरी डांट सुनना जिसमें डांट से ज़्यादा फिक्र छुपी होती थी, और आज की इस भाग

0: मेरी जिंदगी में वो बचपन का क्रिकेट, वो बेफिक्री, वो गलियां बहुत याद आती हैं। और बहुत खूबसूरत सा आपने हमें मेल किया। सच में बचपन जब एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। लोग अक्सर बच्चों को देखते हैं तो यही सोचते हैं कितने बेपरवाह हैं, कितने कुछ फिक्र नहीं है आगे क्या करना है, कैसे करना है, बस बच्चे हैं। और बच्चों के ऊपर अगर हम और आप चलते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाती है। आप बच्चों को देखिए, बच्चे हमेशा मिट्टी में खेलते हैं। अब गौर कीजिए कि जब मिट्टी होती है तो बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, फिर उन्हें तोड़ देते हैं। उसी तरह हमें और आपको भी सोचना चाहिए कि जिस तरह बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, घर बनाते हैं, तोड़ देते हैं, उसी तरह अगर हमारे दिल में किसी के लिए अहंकार का घर बन गया है, किसी के लिए कुछ ऐसा ईगो आ गया है, तो उसी तरह बच्चों की तरह अभी अगर आपने घर बना ली है किसी की बात को या दिल में आपके लग गई है, तो उसको भी तोड़ दीजिए उन बच्चों की तरह जो रेत का घर बनाते हैं और तोड़ देते हैं। लेकिन आप देखिए बच्चों से बहुत सारी सीख हमें मिलती है। बच्चे आप देखिए कि फौरन लड़ाई करते हैं लेकिन फौरन मेल भी कर लेते हैं। इसमें क्या मकसद है? इसमें मकसद ये है कि वो दिल पे बात रखते नहीं है, इसलिए तो बच्चे कहलाते हैं, इसलिए तो मासूम कहलाते हैं, इसलिए तो इतने प्यारे लगते हैं बच्चे। और बच्चे अक्सर ऐसे ऐसे सवाल कर जाते हैं जो हमारे और आपके दिल को छू जाते हैं। फिलहाल सुल्तान रजा साहब का भी मेल आ गया, लिख रहे हैं तरन्नुम अप्पी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान साहब, और कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हैं। और रजा, जीशान रजा, मोनिस रजा, सादिक, आज का ये सारे लोग सुन रहे हैं, आज का सवाल लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप लिख रहे हैं कि क्या खाती हैं तो इतना मीठा कैसे बोल लेती हैं। देखिए खाने की जहाँ तक बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको पी जाना पड़ता है। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कभी किसी की कोई बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जब इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो अपने आप जो दिल की कहते हैं ना भड़ास है, जो एक खलिश है, वो अपने आप बाहर निकल जाती है। तो अपने आप आपका दिल साफ़ हो जाता है, और जब दिल साफ़ होता है तो फिर आपके जो अल्फाज होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। तो शायद इसलिए है मेरे साथ। फिलहाल लिख रहे हैं कि बचपन की मेरी बॉस साइकिल जो भी मुझे बहुत याद आती है, वो मम्मी ने मचाने के ऊपर उठा कर रख दी है। और बचपन में जब ईद का मौका था तो हमारे भाई हमारे लिए खेलों में लिखते थे, वो भी हमें बहुत याद आते हैं। खेलों में लिखते थे, वो भी बहुत याद आते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमें मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि ईद आने वाली है इसलिए ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। जी बिल्कुल, ईद आने वाली है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जिस दिन आप कोई गुनाह नहीं करते, जिस दिन आप कोई किसी का दिल नहीं दुखाते, जिस दिन आप किसी से अमानत में खयानत नहीं करते, यानी चोरी नहीं करते, या किसी की कोई भी बात इधर से उधर नहीं करते, वो दिन आपका हमेशा ईद का दिन होता है। तो हमेशा हर दिन को क्यों ना ईद का दिन बना दिया जाए, किसी का कोई सपोर्ट कर दिया जाए, किसी की कोई जो रो रहा है उसके आंसू पोंछ दिए जाएं, किसी का कोई छोटी सी एक हेल्प सही कर दी जाए, कोई अगर क्रॉस कर रहा है सड़क तो उसको आप क्रॉस करवा दीजिए, कोई भूखा है तो उसे अगर थोड़ा सा भी खाना आप अपनी दो रोटी में से एक रोटी दे देते हैं, तो वो सारा दिन ईद के दिन ही में शुमार होता है। फिलहाल रामेश्वर जी का मेल आया, लिख रहे हैं होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन तरंगम जी को सुप्रीम नमस्कार। रामेश्वर जी, आप हमेशा में तरंगम कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। लिख रहे हैं कि बराबर सुन रहे हैं और हमें आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति होती है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी। आप लोग हम लोग की इज्जत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लिख रहे हैं कि बचपन में मेरे पिताजी एक रेडियो लाए थे और उसी से सारे प्रोग्राम सुना करते थे, और बस वही रेडियो जो है वो इनको बचपन की याद दिलाता। और सच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत सहेज कर, संवार कर, बहुत ही छुपा कर हम लोग रखते हैं, क्योंकि उससे बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी। ग्राम पोस्ट मंगीसापुर कानपुर देहात से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको मेल करने के लिए। आप भी धन्यवाद लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। गुलफशा सिद्दीकी जी हैं, दिन भर रेडियो सुना करती हैं और मेल के जवाब देती हैं, कॉल करती हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा मोहब्बत देते हैं रेडियो को, रेनबो को। लिख रही हैं कि तरन्नुम अपी, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से हूँ। आज सुबह की बात है, मेरा छोटा वाला बेटा ज़मीन पर गिरा तो रोने लगा, मैंने कहा उठो और चीटी मर गई, उठो, लेकिन अपी क्या बताऊँ वो नहीं उठा। फिर मैं गई और थोड़ा सा हाथ लगाया तो वो तुरंत उठ गया। और एक हम जब गिरते हैं तो छोटे थे, मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी अम्मी भी बेटी थी, उनको चींटी मर गई तो हम चींटी देखते थे कितनी मरी है और तुरंत उठ जाते थे। लेकिन अब भी मुझे अपने बच्चों के साथ यही सब याद आता है। सच में बच्चे कितने हम लोग सीधे हुआ करते थे, कहा चींटी है तो देख लिया, कोई कहता था तो चुप हो जाओ, रात में सो जाओ, भूत आ जाएगा, हम लोग सो जाते थे कि भूत सच में आ जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे खुद ही समझ लिए कि क्या बन गए हैं, तो क्या कहा जाए कि वो डरते डरते हैं नहीं किसी चीज़ से। लेकिन एक चीज़ और है जो यहाँ पर कहना चाहेंगे हम, कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में सर्व कर रहे हैं, स्क्रीन टाइमिंग उनकी बहुत है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को आप मोबाइल से दूरी बना कर रखिए, हो सके तो टेलीविजन दिखाइए, रेडियो है बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी राइम्स हैं, बहुत सारी ऐसी पोम हैं जिनको बच्चे सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो जहाँ तक हो सके बहुत दूरी बना कर रख रही हैं। फिलहाल अभी आपसे मेरी थोड़ी सी एक दूरी होगी क्योंकि लेंगे कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर आपके जो मेल है उनको पढ़ने का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको बता दें कि आज हमने सवाल किया है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन की सबसे ज्यादा याद दिलाती है। मेल कीजिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अच्छा एक चीज है, दुआओं में बड़ा असर होता है। मतलब दुआएं जो होती हैं वो आपको ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचा देती हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिला देती हैं जिनको हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। और शायद इसीलिए दुआएं जो हैं वो बहुत दिल से मांगना चाहिए। लेकिन दिल कब दुआ के लिए दुआ गो होता है? जब हमारा और आपका दिल एकदम साफ होता है, दूसरों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छे कर्म करने की सोचते हैं, तभी हम और आप दुआ करते हैं और वो दुआ अर्श तक जाती है। और कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो इसलिए हमेशा कोशिश ये कीजिए कि बहुत अच्छे ना सही तो कुछ अच्छे बन जाइए। कभी कभी लोग कहते हैं वो दिखाने के लिए बड़े अच्छे बनते हैं, तो कम से कम दिखाने के लिए अच्छे बन जाइए। लेकिन अच्छे जब आप बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि हम अच्छे बनते चले जाते हैं। अब अच्छे अच्छे जो हमारे लिसनर्स हैं उनके अच्छे अच्छे मेल आ रहे हैं, और उन अच्छों अच्छों में एक अच्छी सी लड़की है जो शामिल है इस प्रोग्राम में। रोशनी रावत जी हैं, लिख रही हैं, नमस्ते तरन्नुम दीदी जी, आप कैसी हो? नमस्ते रोशनी, उम्मीद है कि आप भी अच्छी होंगी। प्रोग्राम इनको बहुत बिंदास लग रहा है, लगातार 12 बजे से सुन रही हैं। रोशनी रावत ग्राम पोस्ट बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हैं, अभी चंडीगढ़ में हैं, काफ़ी दिनों से चंडीगढ़ में रह रही हैं, वहाँ से सुन रही हैं। और लिख रही हैं कि आज का जो टॉपिक है जो हमने पूछा है लोगों से कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन की बहुत ज़्यादा याद दिलाती है, तो लिख रही हैं कि बचपन के दिन सुनहरे थे, ना समझ बेपरवाह अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उन दिनों की बात है, शाम होते ही लुका छुपी खेलना बहुत पसंद करते थे, और आज अपने बचपन के दिनों की याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी मेल करने के लिए। और सच में बचपन ऐसा ही होता है। अमन नवाब हैं, लगातार सुन रही हैं, मेल कर रही हैं, हेलो गुड आफ्टरनून अप्पी, गुड आफ्टरनून टू यू टू। अमन लिख रहे हैं कि बचपन की जो बात सबसे ज़्यादा याद आती है वो है बेवजह ज़िद्द करना। अच्छा, मतलब ज़िद्दी हैं आप, ज़िद्दी बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब रो रो के अपनी सारी चीज़ें बनवा लेते हैं। लिख रहे हैं कि बचपन में कोई ज़िद्द करते थे तो तुरंत पूरी हो जाती थी, अब ज़िद्द करो तो पूरी नहीं होती। बचपन में कोई चीज़ गुस्से में तोड़ देते थे तो कोई कुछ नहीं कहता था, अब ऐसा नहीं कर सकते। बचपन में मैंने अपने दादाजी का चश्मा तोड़ा था, आज भी याद है, और मुझे अपनी बुआ दादाजी से चाचुओं से बहुत प्यार मिला है, बहुत नखरे उठाए हैं सब ने। और लिख रही हैं, आवर चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस ऑफ आर लाइफ। बिल्कुल सही बात है कि जो एक बचपन का फेज होता है वो शायद दोबारा पैसे भी अगर खर्च कर दिए जाएं तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। रामराज जी हैं, लिख रहे हैं, होटो पर तेरी बात, जिला राय बरेली गांव पहाड़ीपुर से हैं ये रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु बजरंगी, और प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के ऊपर कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न सुन नहीं पाए थे तो चलिए अब आपने सुन लिया रामराज जी। आज का सवाल हमने ये किया है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन की सबसे ज़्यादा याद दिलाती है। अभी भी बहुत वक्त है हमारे पास, आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। फिलहाल एक और ट्रैक है और ये गाना बड़ा अच्छा लगता है, इस गाने में कह सकते हैं

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक बजकर 42 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, तरन्नुम है आपके साथ। और आज हमने आपसे सवाल किया है कि वो कौन सी चीज है जो आपको बचपन की सबसे ज्यादा याद दिलाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

और ये देखिए रेमो ने ये जो ट्रैक गाया है नो डाउट इतना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर था ये उस टाइम का कि भाई क्या कहने हैं इसके। लेकिन हम्मा हम्मा कोई कौन सी लैंग्वेज में हम्मा हम्मा होता है पता नहीं हमें, लेकिन हम बात करें। 1:52 हो चुके हैं। चंद्रमोहन मिश्रा जी का मेल आ गया लखीमपुर से, लिख रहे हैं प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। लिख रहे हैं कि आपने जो सवाल पूछा है तो हम आपको बताएं कि 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, सर का ऑपरेशन हुआ, चोट लगी थी और मेरा माइंड जिसकी सोच फिर से बचपन से ही शुरू हो गई। और मेरा माइंड चेकअप लगातार बहुत अच्छा होता रहा है क्योंकि हम लगातार FM सुनते रहे और मेल भी करते हैं, बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे के प्रोग्राम में सिर्फ एक मेल पढ़ी जानी थी, उस दिन मेरी ही पढ़ी गई। तो मैं आपको बताऊं कि बचपन की बात पूछी जाए तो मैं बचपन से मैं FM सुनता था और ऑपरेशन के बाद फिर से वही हुआ और मैंने FM लगातार सुना और अब मैं काफ़ी सही हो चुका हूं। क्या बात है चंद्रमोहन मिश्रा जी, बड़े अफसोस की बात है कि भाई आपके सर में चोट लगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपकी चोट जो है वो ठीक हो गई। वकील अहमद साहब हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी तारीफ की है थोड़ी सी इन्होंने, लिख रहे हैं कि चाचा मेरे 2 मंजिल पर रेडियो का एंटीना बनते थे और हमारे बचपन में वकील अहमद मंसूरी कटका हतोरी जिला सीतापुर। एक तो ये लोग पॉजेस और पंचेस नहीं लगाते हैं तो लगातार हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारे मेल इन्होंने नाम लिए हैं, बड़े मंगल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपको भी शुभकामनाएं। जावेद अख्तर साहब का मेल आ गया, लिख रहे हैं तरन्नुम बाजी बचपन की वो याद है, हाँ क्या रिश्ते बन जाते हैं यहाँ पे बताइए, मेरे दिमाग में तरोताजा

है कि जब मैं रेडियो पर बिना का गीत माला कार्यक्रम आता था जिसे सुनने के लिए मैं अपने दोस्त के यहाँ जाकर रेडियो पर सुनता था, उस टाइम मेरे पास रेडियो नहीं था। मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं शमसुल खमर राही बेगम रुखसार। अच्छा, अब रेडियो आ गया है तो अब आप सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। रामराज जी का मेल आ गया है और लिख रहे हैं कि तरन्नुम बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी प्यार भरा नमस्कार रामराज जी। और आगे लिख रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो एक कटोरे में दूध पीते थे, उसी कटोरे में खाना खाते थे और अगर दूसरे दिन दूध नहीं मिला तो कटोरा फेंक देते थे। है तो दूध पी पी के आप बड़े हुए हैं, वो भी कटोरा भर भर के, तो कैल्शियम तो बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा होंगे आप। और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और बचपन में, अभी जो लोग बचपन में हैं उनको चाहिए कि भाई वो कटोरे भर भर के दूध पिए, तभी वो हेल्दी और स्ट्रांग होंगे, जैसे कि रामराज जी हैं। फिलहाल 1:54 हो गए हैं तो इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए, यानी होटो पे तेरी बात को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हॉट मेल। सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो FM रेनबो।

0: On defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL Qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की. भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए. गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया. राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया. सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं. और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई. ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया. क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की. सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की. क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा. फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा. उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था. क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए. हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई. बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा.
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई. ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई. हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है. हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं.
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है.
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और

0: भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: विल बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
2: Action. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया

0: @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया

0: है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
3: सपने बड़े हैं,
4: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
4: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
4: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

साथ बहुत सारे मेल आ गए हैं, इससे पहले कि वक्त बहुत आगे निकल जाए, लेकिन सारी चीज़ों का देखिए ध्यान रखना ज़रूरी है। आप लोग गानों की फरमाइश करते हैं वो भी प्ले करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग के मेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कमर्शियल ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और अब जो मेल है मेरे पास वो है राजकुमार डूडी जी का, गांव फ्रांस से, हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। इतने अच्छे हैं ये कि कह रहे हैं कोई भी गाना चलेगा। देखिए बताइए कितने अच्छे इंसान हैं। यहाँ दिलीप प्रामिकर जी हैं, लिख रहे हैं नमस्कार प्रसारक जी, आपको भी नमस्कार दिलीप, कैसे हैं आप। आकाशवाणी लखनऊ हॉटमेल में ये लिख रहे हैं गाने की फरमाइश, राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हैं, हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रुचिका रामेकर परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमें महाराष्ट्र में सुन रहे हैं। शाहरु नूर अंसारी जी का मेल है, कोई भी गाना सुनवा दीजिए, हर हरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरु नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया। रामेश्वर जी हैं, प्रस्तुतकर्ता बहन तरंगम जी को प्यार भरा नमस्कार, लगातार सुन रहे हैं। और

बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमें महाराष्ट्र में सुन रहे हैं। शाहरु नूर अंसारी जी का मेल है, कोई भी गाना सुनवा दीजिए। हर हरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरु नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया। रामेश्वर जी हैं, प्रस्तुतकर्ता बहन तरंगम जी को प्यार भरा नमस्कार, लगातार सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि क्या आप मुझसे नाराज हो। अरे नहीं रामेश्वर जी, कैसी बातें करते हैं आप लोगों से, हम लोग क्यों नाराज होने लगे बताइए। लिख रहे हैं कि ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हैं, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश पुत्र वधुनिशा, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रकाश बुरगांवकर जी का मेल आ गया है, गाने की फरमाइश, छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बुरगांवकर, सुषमा बुरगांवकर, प्रांजलि सोहम बुरगांवकर, सदानंद विराज स्वीट, अंशुमन बेबी ओवी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे हार्ट्स आपने भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने प्यार से हमें मेल किया है। भूषण खेरा जी का मेल आ गया है और फजलिका पंजाब, भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, लाडी खेरा, शालिनी खेरा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा इन्होंने, कोई गाने की फरमाइश नहीं है, लेकिन चलिए आपकी पसंद हमारी पसंद, हमारी पसंद आपकी पसंद, ओके। मोहम्मद सादिक खत्री जी हैं, मोहम्मद सादिक खत्री जी जो हैं वो फॉरवर्डेड मेल कर रहे हैं हमें, कोई भी इन्होंने शिकायत फरमाइश कुछ भी नहीं लिखा है। संजय ढिंगिया जी का मेल बागपत उत्तर प्रदेश से है, संजय ढिंगिया, नमन निगिया पार ढिंगिया, नमस्कार जी लिख रहे हैं, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, गाने की फरमाइश की है। और सुनील पाठक जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक लिख रहे हैं, 2 बजे मैसेज किया था, नहीं लगा जी, अब दोबारा कर रहा हूँ, नज़रअंदाज ना करना जी, ऐसा कैसे हो सकता है जी, आपका मेल हमने देखिए शामिल कर लिया जी, अब तो खुश हैं जी। आगे लिख रहे हैं सुधाकर जाधव जी और प्रेम पूर्वक नमस्कार, ग्राम पंचायत कालीगांव से जाफराबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख, गाने की फरमाइश की है। और अब्बासी जी का है और लिख रहे हैं कि आपको मेरा मेल नज़र नहीं आता तो मजबूर हो जाते हैं, क्या करें हमारी नज़र ही ऐसी है कि सबको नज़र में रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आप लोग इतने नाराज़ हो जाते हैं। भाई देखिए नाराज़गी अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, और वैसे इतनी गर्मी ऊपर से इतना गुस्सा आप करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शनाज सरफराज, फरदीन अब्बासी फैमिली ने मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और हितेंद्र दास जी हैं, हेलो आरजे जी, हेवी रेन एंड रेन इन असम, क्या बात है हितेंद्र दास जी, आपने तो मतलब एकदम ठंडा कर दिया माहौल को ये मेल करके कि वहाँ पर बारिश हो रही है। हितेंद्र दास जी हैं असम से हैं, सोनबिल कुडलाई असम से मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी हितेंद्र जी, आपने हमें मेल किया, बताया कि वहाँ पर बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा लगा। मोहसिन रजा साहब हैं, प्यार भरे आदाब, खैरियत से हैं, दुआ में याद रखिएगा। और सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब वक्त हो गया है कि हम एक और जो गाना है उसको हम शामिल करें अपने इस प्रोग्राम में, आइए इंजॉय दिस लवली ट्रैक फ्रॉम द मूवी फिर हेरा फेरी।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: और जल्दी से आप लोगों के मेल पढ़ लेते हैं। अनून काले जी का मेल आ गया, प्यार भरा नमस्कार, और गाने की फरमाइश इन्होंने की है शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से। संतोष काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले, गंजन सोलाकार, राजू माथे, और बहुत सारे मेल हैं। जय जवान जय किसान लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया। डीके जी का मेल आ गया है, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, गाने की फरमाइश। और डीके साहब हैं न्यू दिल्ली से हैं। अच्छा, सतीश नेजा जी हैं, लिख रहे हैं नमस्कार जी, और मनाली से हैं, हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत एंड रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला एंड सतीश अनेजा। किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए, मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं कि आप लोग फरमाइश करें और आपकी पसंद के ट्रैक हम आप तक पहुँचाएं। दिग्दर्शन गौर जी का मेल आ गया है। तरन्नुम जी, क्या हमें भी एक साथ 10 ईमेल भेजने पड़ेंगे? देखिए गुस्सा कर रहे हैं ये भी और नाराज हो रहे हैं। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, गाने की फरमाइश की है। और दिग्दर्शन साहब, थोड़ा सा तरबूज खाया करिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहा करिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के मेल हम शामिल ना करें। दारा सिंह जी का मेल आ गया है चौटाला से, हरियाणा से दारा, पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गाने के बोल, आवाज और सब कुछ लिख के भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी दारा सिंह जी, आपने हमें मेल किया। रोजी डिकैस्ट्रो, रिस्पेक्टेड होस्ट दी, हम भी जुड़े हुए हैं, हमें पता है आप हमेशा जुड़ी रहती हैं, जनकपुरी सहारनपुर से हैं। जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पाल वेलेस डिकैस्ट्रो, किसी भी गाने में हमें शामिल कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेल करने के लिए दीपेश वर्मा जी का मेल आ गया है, जय जोहार करते हैं हमेशा, आपको भी जय जोहार। और ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गाने की फरमाइश की है। वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ता है इस प्रोग्राम में कि हम लोग खुद ही सोचते रह जाते हैं, आपस में बात करते हैं, बताओ इनका गाना नहीं प्ले कर पाया, बताओ कितने नाराज हो गए, लेकिन एनीवेज वक्त है तो आगे तो बढ़ेगा ही। और जब वक्त निकल जाता है तब समझ में आता है कि वक्त कितना कीमती है। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं, हिंदुस्तान रेडियो मित्र ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, हॉटमेल आदरणीय प्रसारक जी।

प्रेम नमस्कार किसी भी गाने में शामिल करिए। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया। आफ्ताब अंसारी साहब का मेल आ गया है। अर्जय तरन्नुम सिस्टर जी, प्यार भरा नमस्कार, आदाब, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। शेरवानी स्कूल गंज डुनवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। राजेंद्र नारंग जी का भी मेल आ गया है, सुरेश नारंग जी का भी मेल आ गया, दोनों भाई भाई हैं या पिताजी हैं, बेटे जी हैं ये तो पता नहीं है। रिस्पेक्टेड आरजे, यू सो स्वीट वॉइस जी, थैंक यू सो मच। गाने की फरमाइश सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, हार्ड भी भेजे हैं, बूंदे भी भेजी हैं, छाता भी भेजा है, छाता तो है मेरे पास लेकिन बूंदे तो बरसे ऊपर से, पानी की जो पसीने की बूंदे हैं वो तो लगातार निकल रही हैं, लेकिन देखिए भाई आपने ये जो भेजा है विश के ऐसा हो जाए। अवधेश कुमार जी का भी मेल आ गया है, किसी भी गाने में इतनी जल्दी में मेल किया, बताइए अवधेश जी आपने किसी भी गाने में, आगे कुछ लिखा ही नहीं है। रविंद्र मोहनदास जी हैं, कोई भी गाना सुनवा दीजिए, किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी जी। और नेक्स्ट जो मेल आया है मेरे पास उषा मोहन जी का है, पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बिना देर किए जल्दी से प्ले कर देते हैं एक आप लोगों की पसंद के बीच से ट्रैक।

भाई देखिए, झुमका टीका खाना पीना जर जेवर जमीन और रहना और ये सारी जिंदगी जो है बस यही है लाइफ। और लाइफ में लोग अक्सर कुछ और अलग कर जाते हैं और वही लोग अलग भी कहलाते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग ये सोचते हैं ना, टीके पहन लिया, झुमका पहन लिया, लहंगा पहन लिया, खा लिया, पी लिया, सो गए और बस लाइफ यही है। लेकिन लाइफ दोस्तों एक बार मिलती है जिंदगी में, एक बार बचपन आता है, एक बार जवानी आती है और फिर बुढ़ापे की तरफ इंसान बढ़ जाता है और फिर सोचता है कि भाई अब तो मोक्ष की प्राप्ति करना बाकी है। तो ये सारी चीजें, अब आप कहेंगे तरन्नुम तो डरा रही हैं, डराने की बात नहीं है, लेकिन जिंदगी का सच यही है, एग्जैक्ट लाइफ की जो डेफिनेशन है वो बस यही है कि जिंदगी बस ऐसे ही है। और कब निकल जाती है जिंदगी, खुशी और ऐश के जो जमाने होते हैं वो इतनी जल्दी बीत जाते हैं कि हम और आप सोचते रह जाते हैं, बताओ अभी आए थे, अभी ऐसा हो गया, अभी तो ये ऐसा हुआ था और अभी ऐसा हो गया। तो फिलहाल 2:54 हो गए हैं, देखिए अभी लग रहा था कि प्रोग्राम शुरू किया था और अभी हमें ये कहना पड़ेगा कि हमें वाइंड अप करना है। लेकिन फागुराम यादव जी का जो मेल है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये हम जरूर पढ़ेंगे। अनिल मोहन जी का मेल आ गया है, अनिल मोहन जी का मेल हम पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किए हैं। हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रहलाद कुमार कुशवाहा जी हैं, शुभ दोपहर कर रहे हैं, आपको भी शुभ दोपहर। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और तपन बहुत हो रही है, ऐसे में सभी लोग ध्यान रखें। गाने की फरमाइश की है प्रहलाद कुमार कुशवाहा, श्रीमती सोनम कुशवाहा, गनीपुर बेहटा बांगरमऊ उन्नाव से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप कुशवाहा साहब, आपने हमें मेल किया। शाहरुन नूर अंसारी का भी मेल आ गया है, शाहरुन हम आपका मेल शामिल कर चुके हैं। मुकेश कश्यप जी का मेल आ गया है जिला मुरादाबाद से और मेरे ख्याल से ये मेल भी हम शामिल कर चुके हैं। बहरहाल आप लोगों ने जो हमें मेल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब वाइंड अप करने के लिए इंतजार हमें बिल्कुल नहीं करना है, 2:55 नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। हॉटमेल से वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत तरन्नुम को।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, म्यूजिक आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ऋतु निगम है आज आपके साथ। तो अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो खून का नहीं होता लेकिन दिल से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। तो आपको बताना है उस रिश्ते का नाम इस ईमेल आईडी पर airkansomedia@gmail.com।

हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही बताया है, उस रिश्ते का नाम है दोस्ती। जी हाँ, दोस्ती कभी स्कूल की शरारतों में मिलती है, कभी कॉलेज की कैंटीन में, कभी ऑफिस की भागदौड़ में, तो कभी जिंदगी के मुश्किल मोड़ों पर एक सहारे की तरह। कहते हैं सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी खामोशी भी समझ जाए। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम सुनेंगे दोस्ती और खुशियों से जुड़े शानदार बॉलीवुड गीत और बात करेंगे उन रंगों की जो दोस्ती हमारी जिंदगी में भरती है।

शेयर करना, एक दूसरे की अटेंडेंस लगाना और छोटी छोटी बातों पर घंटों हंसना, यही तो दोस्ती की असली मिठास है। दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती, स्टेटस नहीं देखा जाता, बस दिल देखा जाता है। और जब दोस्त साथ हों तो हर परेशानी छोटी लगने लगती है। अगर आपकी भी स्कूल और कॉलेज की कुछ खट्टी मीठी यादें हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। और दोस्तों एक मेल हमारे पास आ चुकी है प्रहलाद कुमार कुशवाहा, श्रीमती सोनम कुशवाहा, गनीपुर बेहटा, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से इन्होंने ये मेल भेजी है। और ये लिखते हैं कि ईश्वर जिन रिश्तों को खून के रिश्ते से नहीं जोड़ पाता उन रिश्तों को दिल के रिश्ते से जोड़ देता है और वो रिश्ता कहलाता है दोस्ती। बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने, शुक्रिया बहुत बहुत आपको। और इन्होंने एक फरमाइश भी की है कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा ये गीत इन्हें सुना दिया जाए। तो भाई ठीक है, आपकी जो फरमाइश है वो हम पूरी कर देते हैं। लीजिए सुनिए दोस्ताना फिल्म का ये ट्रैक।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में अक्सर दोस्तों का साथ शामिल होता है। कभी रोड ट्रिप, कभी देर रात की बातें, कभी बिना वजह की हंसी, और यही यादें जिंदगी भर चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। कई बार दोस्त वो बातें समझ जाते हैं जो हम अपने परिवार से भी नहीं कर पाते। दोस्ती का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका होता है। फिलहाल ऐसा ही एक और ट्रैक पहुंच रहा है आप तक।

दोस्तों कितना प्यारा एहसास है ना जब कोई कहे मैं हूं ना। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भले ही मुलाकातें कम हो जाएं, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी कम नहीं होती। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन दिल से जुड़ा दोस्त हमेशा खास रहता है। पहुंच रहा है एक और ट्रैक दोस्ती के रंग में सराबोर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
6: जी हाँ, एफएम रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
5: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
6: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
5: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

म्यूजिक आर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर अपनी दोस्त ऋतु के साथ। प्रोग्राम का आज का थीम है खुशियों के रंग दोस्ती के संग। अगर आप भी अपने किसी दोस्त के बारे में बताना चाहते हैं कि उसने आपकी कब और कैसे मदद की, शेयर कीजिए। हमसे ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।

गिरकर संभलना और जिंदगी को खुलकर जीना। कभी कभी दोस्त हमारी जिंदगी के सबसे बड़े मोटिवेटर बन जाते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब दोस्त का एक शब्द भी हिम्मत दे जाता है। तो चलिए सुनते हैं दोस्ती को समर्पित एक और सदाबहार गीत, बताइए फिल्म का नाम।

शोले फिल्म का गाना था दोस्तों। और दोस्तों ये गीत सुनते ही जय और वीरू की दोस्ती याद आ जाती है। बॉलीवुड में दोस्ती पर बहुत फिल्में बनी लेकिन शोले की दोस्ती आज भी मिसाल मानी जाती है। दोस्तों हर दोस्ती की अपनी एक कहानी होती है। किसी दोस्त से डेली बात होती है तो कोई सालों बाद मिले फिर भी वही अपनापन महसूस होता है। सच्ची दोस्ती में औपचारिकता नहीं होती, बस दिलों का जुड़ाव होता है।

0: से सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

इस समय आप सुन रहे हैं म्यूजिक आर प्रोग्राम एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर अपनी रेडियो दोस्त ऋतु के साथ। आज का प्रोग्राम बेस्ड है खुशियों के रंग दोस्ती के संग थीम पर। अगर प्रोग्राम में आप अपने दोस्तों के नाम सुनना चाहते हैं तो लिख भीजिए उनके नाम, हम जरूर पढ़ेंगे। ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।

वेल गाइज, कभी सोचा है अगर जिंदगी में दोस्त ना हो तो जिंदगी कितनी बेरंग लगे। दोस्त हमारी जिंदगी के वो रंग हैं जो उदासी को भी मुस्कान में बदल देते हैं। दोस्ती का रिश्ता हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। दोस्त वही जो तनाव में भी मुस्कान दे जाए, जो कहे टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, वक्त बदलता रहता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त दिल में हमेशा बस जाते हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी हंसी जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, आज के म्यूजिकर प्रोग्राम के इस खूबसूरत सफर में हमने महसूस किया कि दोस्ती जिंदगी की सबसे अनमोल दौलत है। दोस्त हमारे सुख दुख में के साथी होते हैं, हमारी खुशियों के रंग होते हैं। अगर आपके पास सच्चे दोस्त हैं तो यकीन मानिए जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इसी प्यारे से संदेश के साथ प्रोग्राम का अंतिम ट्रैक पहुंच रहा है आप तक। एंजॉय कीजिए और मुझे यानी ऋतु को म्यूजिक आवर प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM रेनबो कानपुर को आपकी पसंद प्रोग्राम में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आपकी ढेर सारी फरमाइशों के साथ मैं हूँ ऋतु निगम। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार।

धर्मवीर फिल्म का गाना अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हमारे पास फरमाइश आई जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु की। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू, राजेंद्र सिंह। पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता और कीर्ति और भूमिका अरोड़ा की फरमाइश आई। परभणी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और परिवार के सभी लोग। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला और विशाल। आपके पसंद प्रोग्राम में लीजिए सुनिए राज फिल्म का गाना, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक ने, समीर का लिखा गीत है और संगीत नदीम श्रवण का। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी। दादरी गेट भिवानी से हमारे पास फरमाइश आई है कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा की। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु। जनकपुरी सहारनपुर से अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो।

आपकी पसंद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। प्रोग्राम में अब आ रहा है गिरफ्तार फिल्म का गाना, जिसे गाया है कुमार सानू, धीरा घोष ने, इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगदाप, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्णा घोटके, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख। तो चलिए, आपकी पसंद पर आप तक पहुंच रहा है गिरफ्तार फिल्म का ये ट्रैक।

भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे पास फरमाइश आ चुकी है धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। उत्तम नगर दिल्ली से सुनना चाहा है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश और सोनाली नारंग। खंडवा रोड सनावत से शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, मोइन शेख, योगेश गुजराती, आनंद जोशी, दुर्गा प्रसाद सैनी। राहट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका रामेकर और परिवार के सभी लोग। आप सभी ने सुना चाहा है कभी खुशी कभी गम फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ें

हैं सोनू निगम, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सुब्रमण्यम और अमित की मिली जुली आवाजें हैं इस गीत में, और समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

फरमाइश आ चुकी है मोर टक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए दिलवाले फिल्म का ये ट्रैक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

आपके पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर अपनी रेडियो दोस्त रितु के साथ। और प्रोग्राम में आ रहा है नगीना फिल्म का गाना, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं, लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के और म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। बीर शहर महाराष्ट्र से हमारे पास फरमाइश आई है विकास बंसोडे, रेखा, अदिति, वैभव, आकाश और प्रिया की। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत, रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम, दानिश अंसारी और श्रद्धा नंद आर्य, अभियानंद परमानंद, राज, एस डी अंसारी और आसमा खातून। मालियान सरधना मेरठ से सुनना चाह है अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जीवीएम, आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन ने। सीतामढ़ी बिहार से फरमाइश आई है मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। तो चलिए आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म का ये ट्रैक।

0: से भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

तवायफ फिल्म का गीत लीजिए सुनिए। आशा भोसले की आवाज़ में कमल हसन ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है रवि ने। राहुल नगर अमरावती से फरमाइशाई सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा की। टोरवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेध कुमार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपके पसंद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। प्रेम बंधन फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता विशाल, विवेक, सोनू मोनू, रानू सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू की फरमाइश आई है। वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपके पसंद प्रोग्राम के अंत में लीजिए सुनिए बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना। अदनान सामी की आवाज में कौसर मुनीर का लिखा गीत है और संगीत प्रीतम का। ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से अनिल कटियार, डिम्पी, गौरव, सौरव, खुशी कटियार की फरमाइश आई। गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और कुमार हिरा सहारनपुर से सुनना चाहा है सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए प्रोग्राम के अंत में बजरंगी भाईजान फिल्म का ये ट्रैक।

तो दोस्तों समय हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो आपकी पसंद प्रोग्राम से अपनी रेडियो दोस्त रितु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वन जीरो टू पॉइंट टू की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है FM रेनबो कानपुर को। थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की उन पहलों

0: का जिक्र किया है जिनसे देशभर के लोगों को विशेष रूप से नारी शक्ति युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने सभी से स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे नगर ईज ऑफ लिविंग दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित शहरों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम लखनऊ की 413 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में 17 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में 65 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। श्री प्रसाद ने बताया कि पीलीभीत के निवासियों द्वारा लगातार रेल सेवाओं के विस्तार एवं नई ट्रेनों के संचालन की मांग को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का मार्ग विस्तार शाहजहांपुर तक करा दिया गया है। इसका लाभ पीलीभीत व शाहजहांपुर के अलावा आस पड़ोस के जिलों के लोगों को भी मिलेगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी ने आज उन्नाव की पुरवा तहसील में जनचौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। जनचौपाल में लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इटावा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जिला जज रजत सिंह जैन ने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहे 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है,
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: वही धड़कन लखनऊ भी सुन रहे हैं आप। 5:03 का वक्त हो चुका है। मैं आ चुका हूँ FM Top 10 के साथ, सर्वेश आज आपके साथ, और रहूंगा रात 8 बजे तक आप ही के पास। और 6 बजे प्रोग्राम शामे अवध, 7 बजे हेलो FM सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको खूबसूरत और बढ़िया से गाने सुनाता रहूंगा। और मंगलवार का दिन है तो सब मंगल मंगल ही होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि FM टॉप 10 में आज क्या खास है। बिल्कुल खास ये है कि बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर्स को आप सुनते रहते हैं और बहुत सारे गाने भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ सिंगर्स ऐसे हैं ना जिनका नाम भी शायद आप नहीं जानते। हो सकता है आपने उस गाने को कई बार सुना हो, है ना, लेकिन आप सोचते होंगे, अमूमन ये होता है कि हमारे दिमाग में कुछ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिंगर्स हैं उन्हीं के नाम याद आते हैं। सोनू निगम जी हो गए, कुमार सानू जी हो गए, और आज के डेट में अरिजीत सिंह को कैसे भूल सकते हैं आप। बहुत सारे और भी नाम हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम बॉलीवुड की म्यूज़िक इंडस्ट्री में किया है।

0: लखनऊ की।
1: जी हाँ, मोहम्मद इरफान साहब का गाया हुआ गाना दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, याद आया ना आपको? सुनिए खूबसूरत सा गाना।

जी कुणाल गंजावला, याद आया आपको मर्डर फिल्म का ये गाना भीगे होठ तेरे गाकर फैंस के दिलों में हलचल मचा दी थी। 2005 से लेकर 2010 तक करियर इनका पीक पर था। आखिरी गाना 2024 में आई फिल्म नाम में इन्होंने गाया था। फिलहाल वे अपने बिजनेस में बहुत खुश हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, गाना याद है आपको, गुरु फिल्म से, और इस गाने को गाया था चिन्मयी श्रीपर्दा ने। बहुत सारे गाने उन्होंने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में गाए हैं और बहुत सारी भाषाओं में गाना गाती हैं, और जो भी गाना गाती हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है चिन्मयी श्रीपर्दा की, और इसमें आवाज़ आपको ए आर रहमान साहब की भी सुनाई दे रही है ना अभी सुनाई देंगी चिन्मयी।

जी गाना आपने सुनना शुरू किया ना, आपकी कशिश, इसमें हिमेश अशमिया साहब दो ही हैं लेकिन एक और सिंगर हैं कृष्णा बेवरा, बेसिकली उड़ीसा से आते हैं और इन्होंने बहुत सारे गाने हिंदी फिल्म म्यूज़िक और मूवीज़ में गाए हैं, जिसमें चक दे इंडिया के मौला मेरे और नमस्ते लंदन का वो मैं जहाँ रहूँ, अपनी मातृभाषा उड़िया में भी बहुत सारे गाने गाए हैं और बीच बीच में इनके गाने आते रहते हैं। FM Top 10 सुन रहे हैं आप सर्वेश के साथ, 5:21 का वक्त, धड़कन लखनऊ की।

एफएम टॉप टेन सुन रहे हैं आप। और आज उन सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में बात कम होती है लेकिन काम वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये गाना जो है शाहिद माल्या का है। बॉलीवुड के ऐसे फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं जो बनना तो प्रोफेसर चाहते थे भाई, एक्सीडेंटली ये सिंगर बन गए, लेकिन टाइम टू टाइम इनके गाने आते रहते हैं और बहुत ही मस्त गाते हैं।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: हेलो एफएम, जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
3: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।

जी हाँ, शाम भी धीरे धीरे ढल रही है और हम आ चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10 और उसके बाद शाम के बाद प्रोग्राम लेकर आएंगे। और अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं महालक्ष्मी अय्यर, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ बॉलीवुड से लेकर दक्षिण भारतीय फिल्मों तक फैली हुई है। और 97 से इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। 10 फिल्म जो आई थी उससे अपना शुरू किया था इन्होंने करियर। और 1998 में आई फिल्म दिल से में ए अजनबी गाना याद है ना, लेकिन अभी के लिए सुर फिल्म का गाना सुन रहे हैं आप, कभी शाम ढले मेरे घर में आ जाना।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास,

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास
2: के

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, ये आवाज़ तो आपने पहचान ली होगी, उदित नारायण साहब। लेकिन इसके बाद जो आवाज़ आएगी ना, इसमें फीमेल वॉइस, वो है मधुश्री। बहुत ही खूबसूरत से गाने गाए इन्होंने। अभी के लिए गाना सुनिए, उसके बाद इनके बारे में बात करूँगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
4: पुरानी जींस और गिटार,
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: है, रते आश के जगा,
3: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
6: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
3: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: पाँच बजकर 53 मिनट का वक्त हुआ है और आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 सर्वेश के साथ, और खूबसूरत सा गाना उन्हें लगा दिया है कविता सेठ जी की आवाज में, रंग सारी।

नौशाद सेठ बरेली, अपने बरेली से बिलोंग करते हैं और पार्श्व गायिका के रूप में गज़लों और सूफी गायकी के लिए भी इनको जाना जाता है। और इनको कहते हैं ना, फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है 2010 में फिल्म वेकअप सेठ के लिए, और कहते हैं ना एक तरह के शास्त्रीय सूफी गायन के लिए भी। और आज के टॉप 10 में उन्हीं सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी चर्चा कम होती है, उनके काम की चर्चा कम होती है, इसलिए उन पर बात करना ज़रूरी है।

और एफएम टॉप 10 में ये जो 10वां गाना है ना, ये सुन रहे हैं आप वास्ते, है ना। और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं निखिल डिसूजा की है। ये गाने बहुत इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाए हैं। वही बात है ना कि आज उन सिंगर्स की चर्चा कर रहा हूँ जिनके काम की और उनकी चर्चा कम होती है। 5:57 का वक्त, समाचारों के उस पर प्रोग्राम शाम होते लेकर आ रहा हूँ। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया। जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में देश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उससे निपटने का प्रभावी मंत्र दिया है, जिसका पालन देश के नागरिक स्वेच्छा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी प्रकार के सरकारी दबाव या अनिवार्य आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि जनता ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सकारात्मक सहभागिता निभाई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की 19वीं बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने निर्देशित किया कि जिन जनपदों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वहां के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और निवेशकों को प्रोत्साहित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे प्रदेश के सभी जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिल सके। प्रदेश में बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन पूजन को पहुंच रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान का श्रृंगार कर उन्हें सिंदूर अर्पित किया गया। लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में भी भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में जगह जगह भंडारों में छोटे बड़े सभी लोग पूरे भक्तिभाव के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर भंडारे में प्रसाद वितरण किया। अलीगंज के पुराना हनुमान मंदिर और नए हनुमान मंदिर क्षेत्र में मेले का भी आयोजन किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: FM.
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
2: What is mobile number? What is your style number? What is your style number? करो क्या dial number?
3: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.
4: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है.
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
6: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
5: ओनली 100.7 FM रेनबो.
7: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
8: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
9: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और

0: डुंडे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: तो वे धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 6:06 हो चुके हैं और अवध की शाम गर्म है ना। हाँ भाई, गर्मी आजकल इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सुबह उठिए तो लगता है कि सुबह है या दोपहर है। सीधे दोपहर हो रहे ना। खैर कोई नहीं, अगले 3 दिनों तक लू चलेगी। अपना पूरा ख्याल रखिए और दिन के साथ रातें भी जो है ना बहुत गर्म रहेंगी। तेज धूप और गर्म हवाओं ने परेशान कर रखा है ना। बिल्कुल मौसम है, क्या कर सकते हैं। और मंगलवार का दिन है, आप सभी को जेठ के बड़े मंगल और चौथे बड़े मंगल की शुभकामनाएं। शहर में बहुत सारे भंडारे भी चल रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ प्रसाद ग्रहण भी किया होगा है ना। बहुत लोगों ने तो बहुत जगह कोशिश की होगी, मिल गया ना, नहीं मिला, अभी भी कोशिश कर सकते हैं आप। सर्वेश आज आपके साथ और रहूंगा आप के साथ रात 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद प्रोग्राम लेकर आऊंगा हेलो FM। अभी के लिए बस इतना ही कहूंगा कि सुनते रहिए। और हाँ, एक अपडेट दे दूं आपको कि अगर आप थिएटर के शौकीन हैं तो वही जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में, क्योंकि वहाँ 7 बजे से थिएटर शुरू होगा। एक नाटक शुरू होगा, टू सिडक्शन का मंचन होगा शाम 7 बजे। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, नहीं जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाकर भी आप FM रेनबो सुन सकते हैं। और अभी तो आप सुन ही रहे हैं, है ना। खूबसूरत सा गाना, जिंदगी दो पल की।

घड़ी में 6 बजकर 13 मिनट हो चुके हैं और ये लिखिए 14 मिनट भी हो गए। और बस इतना कहना चाहूँगा कि सुन रहे हैं आप शाम अवध, और आपको इतना बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU की ओर से UPTECH 2026 के तहत एफिलिएटेड कॉलेजेस में BTECH में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो भाई जाइए, गूगल पे कीजिए और ऑफिशियल साइट पे जाइए और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: FM. जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
1: What is mobile number? What is your style number?
2: What is your style number? करो क्या dial number?
3: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान. चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल. ये लखनऊ है जनाब.
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब.
6: समझे जनाब अली.
5: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो. धड़कन लखनऊ की.
7: यहाँ 6:24 का वक्त हो चुका है. शामी आवाज सुन रहे हैं आप, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे जैसे शाम ढल रही है, वो अलग बात है कि गर्मी कम नहीं हो रही है और रातें भी गर्म हो रही हैं, और लाइट की भी कहीं ना कहीं सुनने में जो आ रहा है दिक्कत हो रही है. तो भाई कोशिश ये करिए, अपना इन्वर्टर चार्ज रखिए और एक ही पंखे के नीचे सो जाइए. लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधर गई हैं और सुधर रही हैं और सुधरनी भी चाहिए. अभी के लिए आपको बता दूँ कि डालीगंज लखनऊ का जो एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से नकाह जंगल जो गोरखपुर का एक स्टेशन है, वहाँ पर उसके बीच एक पैसेंजर ट्रेन आज से चलाई जा रही है. इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा, लेकिन पहले वो पहली बार.

0: तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना।
1: तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी।
2: जी हाँ बिल्कुल, हम आपको छोड़कर कहाँ जाने वाले हैं। 8:28 का वक्त हो चुका है और आप सुन रहे हैं शाम है। बहुत सारी चीज़ें हो रही शहर में और भाई बड़ा मंगल है तो भंडारे भी चल रहे हैं, और जब भंडारे चलते हैं तो आप साइड में अपनी बाइक और मोटरसाइकिल लगा के जब वो जाते हैं ना प्रसाद लेने, तो उससे लगता है जाम। तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। वैसे तो शाम होते होते भंडारों का जो भीड़ भाड़ है ना, और भंडारों में जो प्रसाद वितरण है थोड़ा सा कम हो जाता है और ट्रैफिक की वो उतनी दिक्कत रहती नहीं है, लेकिन लेकिन लेकिन आप पूरा ध्यान रखिए, भंडारा खूब खाइए, बड़ा मंगल है, और प्रभु का नाम लीजिए, लेकिन ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखिए कि आपने कहीं गलत पार्क कर दिया और जो लोग उधर से निकल रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: तो भाई आम खा रहे हैं आप? खा तो रहे होंगे, लेकिन अभी दशहरी आपको नहीं दिख रहा होगा ना। चिंता मत कीजिए, जो अपना वर्ल्ड फेम दशहरी है ना, बहुत जल्दी आप तक तो पहुंचने वाला है। और 1 जून से दशहरी आम की मंडी सजने वाली है ना। तो ठेलों पर आप देखेंगे दशहरी आम, वाह वाह वाह क्या खुशबू आती है। और कितने भी आम खा लूँ मैं, अपनी बात करूँ, लेकिन मन में रहता है दशहरी कब से आएगा। तो भाई दशहरी आने वाला है, 1 जून से दशहरी आम की मंडी सज जाएगी। और देखिए शुरुआत में थोड़ा महंगा रहता है, तो मन को मारिएगा, थोड़ा सा ले लीजिएगा, लेकिन खाइएगा ज़रूर। और जैसे जैसे समय गुजरेगा थोड़ा सा रेट गिरता है, और फिर भरपूर खाइएगा। बस सेहत का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा धड़कन लखनऊ की।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो।

तो भाई शाम में वो सुनते सुनते 6:43 हो चुके हैं और आप तैयार हो रहे होंगे 7 बजे के प्रोग्राम के लिए। फोन मिलाना है कि नहीं? बिल्कुल मिलाना है, 7 बजे प्रोग्राम लेकर आऊंगा। हेलो एफएम सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले एक आपको एजुकेशनल अपडेट दे देता हूँ। कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आप SSC के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी जो एक सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होती है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL, तो ये जो एग्ज़ाम 2026 में होगा ना, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों और न्यायाधिकरण ग्रुपों में, विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 12,256 जो पद हैं, उन पर भर्ती के लिए एक पहली बार एक सेक्सेशनल टाइमिंग लागू की गई है। यानी कि आपको 1 घंटे की परीक्षा में प्रत्येक 15 मिनट में 25 सवालों के जवाब देने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और आप क्वेश्चन पढ़ते ही रह जाएं, है ना। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव अप्रोच, फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। फिलहाल राता लंबिया।

जी हाँ, चले जैसे हवाएं सनन सनन। और आजकल जो गर्मी पड़ रही है ना, बिल्कुल सनन सनन ही हवाएं चलती हैं, इतनी गर्म हवाएं लगती हैं। तो बस इतना ही कहूँगा कि अपना पूरा ख्याल रखिए और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की। शाम आवाज सर्वेश आज आपके साथ।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
6: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
7: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
6: ओनली 100.7 FM रेनबो।

6:55 का वक्त, और जाते जाते एक आपको अपडेट दे देता हूँ। जी हाँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और भाई नौकरी की तलाश में हैं, तो उनके लिए एक अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून को होगा, और वो भी 2 शिफ्टों में होगा। तो भाई लगे रहिए, उम्मीद करता हूँ इस बार रिजल्ट आपके ही पक्ष में आएगा। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, जो बाकी है वो हेलो एफएम में पूरा किया जाएगा ना, फोन मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। जी नहीं, सुनिए मुख्य समाचार यानी कि टॉप 10 न्यूज। शाम के 7 बजे और हम 7 बजे लेकर आते हैं प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे नगर ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित शहरों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम लखनऊ की 413 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में 17 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में 65 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज हुए विशेष अनुष्ठान, इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन पूजन को पहुंच

रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान का श्रृंगार कर उन्हें सिंदूर अर्पित किया गया। बड़े मंगल पर लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में भी भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में जगह जगह भंडारों में छोटे बड़े सभी लोग पूरे भक्तिभाव के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर भंडारे में प्रसाद वितरण किया। अलीगंज के पुराना हनुमान मंदिर और नए हनुमान मंदिर क्षेत्र में मेले का भी आयोजन किया गया है। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सतेंद्र बारी ने आज उन्नाव की पुरवा तहसील में जन चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। जन चौपाल में लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया और इटावा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। जिला जज रजत सिंह जैन ने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है हेलो FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: 0522 2238442 2238852 और एक और नंबर है, जी हाँ, 2982377। ये नंबर आप जल्दी से मिलाएं और सीधे हमसे जुड़ जाएं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हमको बताना चाहते हैं और गाना भी सुनना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। 7 बजे से लेकर हम 8 बजे तक आपके लिए हैं। इस दौरान आपको बराबर फोन ट्राई करना है, ये वादा करिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अभी किसने कोशिश की है देखते हैं। हेलो।
6: हेलो सर, चार भरा नमस्ते, गुड इवनिंग।
5: वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप?
6: सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है, आप कैसे हो?
5: मेरे हाल और मेरी चाल दोनों ही अच्छे हैं।
6: जी, और आप तो सुनते ना, हम लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं।
5: क्या बात है,
6: खुशी होती है आपका कार्यक्रम सुन के, आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा।
5: और जब आप लोग ऐसी तारीफ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है ना, FM रेनबो की जो मेहनत है वो सफल हो रही है।
6: सर तारीफ करना तो सर बनता है, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतनी शिद्दत से कार्यक्रम करते हो, तो सर हम लोगों का मतलब हम लोगों का भी कर्तव्य भी बनता है।
5: क्या बात है,
6: तारीफ करें।
5: वाह, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। आज तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है मुझे।
6: सर हम दुआ करते हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, थक गए होंगे आप बोलते बोलते।
5: तो नहीं, आप लोग खासकर जब हेलो फेम में आप लोगों से बात होती है ना, तो बात करते
6: सर, मतलब सर जब आपकी आवाज रेडियो पे सुनाई देती है सर, सोचिए हम श्रोताओं का दिन कितना स्पेशल हो जाता
5: है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो FM रेनबो है, और आप हैं तभी FM रेनबो धड़क रहा है। फिलहाल आज ये
6: अपना परिचय तो दे दें।
5: हम तो जान गए, रिंकी पिंकी बोल रही हैं, लेकिन आप दीजिए परिचय, क्योंकि कुछ लोग अगर नए सुन रहे हैं, कुछ लोग दीजिए दीजिए परिचय दीजिए आप।
6: जी सर, FM रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
5: क्या बात है, तो आज गाना भी बता दीजिए कौन सा सुनना चाह रही है।
6: जी सर, सॉन्ग के बोलना चाहे लाख तू पाए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना।

0: क्या बात है, आप ही पूरा गा दीजिए ना, हम गाना नहीं बजाते हैं।
1: मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं है।
0: नहीं नहीं, अच्छा गा रही हैं, अच्छा गा रही हैं, अच्छा गा रही
1: हैं। हम गाना
0: बिल्कुल डेडिकेट कीजिए, डेडिकेट कीजिए।
1: जी सर, सबसे पहले आपको और हमारी फेवरेट अनाउंसर हैं दीप्ति जोशी मैम और पूनम शर्मा मैम और मेरी दोस्त हैं पूनम दीदी, गुंजन तिवारी, समा परवीन, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, महक अंसारी, पूनम दीदी, वकील अहमद भाई, मोहम्मद फैज भाई, जावेद अख्तर सर, नीलम वर्मा और शिवम सर, उनके बड़े भाई हैं सत्या भाई और राम भरोसे भाई।
0: बस
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: और भाई देखिए 7:10 का वक्त हो चुका है, जल्दी से कोशिश कीजिए 0522 2338 842 0522 2338 852 और 2982377 ये हमारे नंबर्स हैं, इन पर जल्दी से कॉल कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि ये जल्दी से नहीं जुड़ेंगे तो फिर बाद में कहेंगे कि भाई देखिए फोन ही नहीं लगता है, तो फोन लगता है, कोशिश तो कीजिए, देखते हैं किसने कोशिश की है। हेलो।
1: हेलो सर
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: हम सुमित से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, हम सुमित कौन सा गाँव?
1: ग्राम अलीपुर मिसलौला, थाना औरास।
0: थाना औरास, जिला उन्नाव।
1: हाँ सर।
0: क्या करते हैं सुमित भाई?
1: सर खेती किसानी काम करते हैं।
0: बहुत बढ़िया काम करते हैं, और बताइए, गर्मी बहुत हो रही है ना उधर?
1: गर्मी बहुत हो रही है।
0: अरे यहाँ भी बहुत हो रही है, हर जगह हो रही
1: है। अभी तमाम तैयार हो गया, आम की टूट चालू हो गई है।
0: अच्छा।
1: हाँ, हमारे यहाँ बगल में मंडी, मियांगंज मंडी लगती है ना।
0: जी जी जी जी जी,
1: चालू हो गई है।
0: हाँ बिल्कुल चालू होगी, हमने शामेवद में भी अपडेट दिया था कि 1 जून से दशहरी जो है ना मार्केट में आने लगेगा।
1: हाँ दशहरी टूट चालू हो गई अभी।
0: तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे ये बताएंगे?
1: गाना सर सुना दीजिए, अंदाज लूंगा
0: थोड़ा बहुत। कौन गाने के बोल तो बताइए।
1: आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, बरसात आ जाए ना तो मजा ही आ जाए, बहुत गर्म पड़ रहा है ना।
1: गर्म पड़ रही, बरसात आने वाली है।
0: बरसात आने वाली, क्या बढ़िया बात कही है आपने कि बरसात आने वाली है, तो बरसात

0: आएगी तो नहाएंगे
1: क्या?
0: बरसात में भीगेंगे कि नहीं?
1: हेलो,
0: कह रहे हैं बरसात में भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे?
1: नहीं अभी तो
0: तो चलिए गाना आपका लगा दें जल्दी से।
1: हाँ लगा।
0: किसी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, किसी को सुनवाना तो नहीं चाहेंगे?
1: आपको और सुनने वाले
0: क्या बात है, सभी सुनने वालों के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका।

0: 7:00 पर नबर्ट का वक्त हो चुका है, जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि 7:20 से प्रादेशिक समाचार भी आपको सुनवाने हैं। देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: जी मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
0: अच्छा, और क्या हाल चाल है तालिब जी?
1: जी बढ़िया है, ठीक है सर जी। गर्म हो रही है?
0: हाँ, गर्म तो बहुत पड़ रही है। तो
1: लेकिन उल्टा और ज्यादा।
0: अच्छा, अक्सर कहता है कि जल्दी से नहा धो के तैयार होकर बैठ जाओ, वैसा तो नहीं है?
1: ऐसा है, हम लोग टाइम का इंतजार करते हैं।
0: अरे वाह,
1: रेडी हो जाए तब
0: जी जी जी जी।
1: अच्छा, जब मन से लगाते हैं तभी लग पाती है।
0: बिल्कुल, अगर
1: नहीं लग पाती लेकिन लग जाती है।
0: बिल्कुल, दिल और दिल से और मन से जब कोई काम किया जाता है तो हो जाता है। जल्दी से गाना बता दें क्योंकि समय हो रहा है।
1: जी जी, गुमनाम मूवी का है और
0: जी
1: मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत से तुमसे, ये अलग गीत सुनेंगे सर जी।
0: ओके, और किसी को डेडिकेट करना चाहें तो भी कर दीजिए
1: जी। आसिफ और साबिर हैं और अकबर भाई हैं चौखंडे से जी, बस
0: बस,
1: और सभी सुनने वालों को।
0: हाँ, ये जरूरी है
1: जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सभी लोग सभी सर जी अपना ख्याल रखें गर्मी के मौसम में।
0: बस बस बिल्कुल,
1: और हाइड्रेट रखें अपने शरीर को और सुनते रहें ऐसे ही। और हमारा नाम
0: सुनते रहें धड़कन लखनऊ की, है ना, तालिब के साथ, सर्वेश के साथ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर जी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047

0: इसकी दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
3: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल

0: के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
1: लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरत विद्युत की सप्लाई हो। और
0: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक।

0: ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: जी धड़कन लखनऊ की और प्रोग्राम हेलो एफएम सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और करना सिर्फ आपको इतना है 0522 2338 42 2338 52 और 2928 नहीं अगला नंबर जो है 2982 3770। इन तीनों नंबर्स को आप ट्राई कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। समाचारों के दौरान किसी ने हमें ज्वाइन किया है, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो हेलो। ओहो लग रहा है इनसे इंतज़ार नहीं हो पाया। कोई नहीं, गाना बता दिया था तो गाना हम सुनवा देते हैं। सुनिए आप।

0: 7:36 का वक्त हो चुका है और गानों का सिलसिला, आपके फोन कॉल्स का सिलसिला बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वक्त अभी हुआ है 7:36 और अभी भी आपके पास टाइम है, आप बात कर सकते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताएं।
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं।
0: कैसी हैं शमा आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके हम और अच्छे हो गए। आप बताइए कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ और हेलो एफएम प्रोग्राम में वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता हूँ। आप सभी लिसनर से बात होती है तो वो कहते हैं ना कि तरोताजगी आ जाती है। बिल्कुल

0: प्रोग्राम करते हैं, जल्दी जल्दी आया करो।
1: ओके, जल्दी जल्दी आएंगे इस बार से, हमारे अधिकारी सुन रहे होंगे तो हम जल्दी जल्दी आएंगे। आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
0: सिर्फ तुम मूवी का।
1: सिर्फ तुम यानी कि एफएम रेनबो। और किसको सुनाना चाहेंगे?
0: सबसे पहले आपको।
1: थैंक यू।
0: बाबू अंसारी भाई, अकबर अंसारी भाई, राजद्दीन भाई, मोहम्मद सद्दाम भाई, मोहम्मद फैज भाई, मोहम्मद अमीन भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, जावेद अख्तर भाई, वकील अहमद भाई, सत्यम कुमार भाई, विनीत कुमार भाई, और गुलाब साप्ती, साहब अंसारी, रिंकी पिंकी, साजिया अंसारी, आरजे पूनम, महक अंसारी, जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को।
1: सभी सुनने वालों को सुनवाना चाहती है ना? देखिए गाना आपका आ गया।
0: ओके,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।

0: हैं तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तो जब आप एफएम रेनबो से मिलते हैं ना तो बस आपके अंदर भी यही फीलिंग आती है दिल भर दिल भर। और जल्दी से फ़ोन लगाइए ना फिर, तो 0522-2238-8542 और 29-82-377 ये नंबर से हमारे अभी भी आपके पास वक्त है। 7:42 का वक्त हुआ है, जल्दी से हमें कॉल कीजिए। किसी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम वकील अहमद मंसूरी।
0: वकील
1: जी, जिला सीतापुर,
0: जिला सीतापुर से वकील अहमद मंसूरी साहब ने हमको कॉल किया है।
1: और आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा जी,
1: जा रहे हैं आम के बाग में थे, वही से अब घर जा रहे हैं।
0: तो हमारे लिए आम तोड़े नहीं बाग से आपने?
1: नहीं, आप तो नहीं तोड़े, आए हैं आप।

0: हेलो नमस्कार
1: जी, अपना नाम बताएं।
0: नमस्कार, मेरा नाम वकील अहमद मंसूरी।
1: वकील जी,
0: जिला सीतापुर।
1: जिला सीतापुर से वकील अहमद मंसूरी साहब ने हमको कॉल किया है।
0: और आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा जी,
0: जा रहे हैं आम के बाग में थे, वहीं से अब घर जा रहे हैं।
1: तो हमारे लिए आम तोड़े नहीं बाग से आपने?
0: नहीं, आप तो नहीं तोड़े, आए हैं, आपको जरूर खिलाएंगे।
1: तो तोड़ के रखिए, हम आते हैं सीतापुर। क्या बात है। तो वकील अहमद मंसूर
0: जो है, बड़े सभी मंगल को
1: बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। और गाना आज कौन सा सुनना चाहेंगे वकील साहब?
0: जी, ये माना मेरी जान
1: मोहब्बत सजा है, किसी को सुनवाना चाहेंगे?
0: जी हाँ, सुनाना चाहेंगे।
1: बिल्कुल, नाम लीजिए।
0: नाम लेंगे
1: बिल्कुल।
0: साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी हैं, शमा परमीन हैं, और गुलशन सिद्दीकी और अमन नवाब, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को, और रिंकी पिंकी खास
1: जी,
0: और आपको,
1: हमको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को,
1: सभी को सुनने वालों के लिए जी,
0: की सभी को एडवांस होते हैं।
1: बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, बहुत बहुत मुबारकबाद।
2: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: तो भाई एक बार फिर से हम आ चुके हैं और प्रोग्राम वही चल रहा है आपका हेलो एफएम। आप हमें कॉल कर रहे हैं 0522 2738 842 2738 852 और 2982 377। ये नंबर से हमारे जल्दी से कॉल कीजिए। वक्त बता दूं आपको, 7:48 का वक्त हुआ है और अभी भी आपके पास समय है हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और अपनी ही पसंद का गाना सुनने के लिए। और देखते हैं अभी कौन है लाइन पर। हेलो।
4: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी।
3: वाह।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: ना हो।
1: वाह क्या जी, नाम बताएं अपना। हम तो लग रहा था सोनू निगम, सोनू निगम जी ने कॉल किया है।
0: जी छोटा भाई सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ सर।
1: ओके सत्यम जी, कैसे हैं आप?
0: सर मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी हमारे भी आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है। तो आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे सत्यम जी?
0: सर गाना मैं सुनना चाहूंगा
1: जी,
0: मेरे फेवरेट सिंगर हैं
1: साहब। ओके,
0: उनकी आवाज में गाना मैं सुनना चाहूंगा
1: जी।
0: पहले सर मैं अपने दोस्तों के नाम ले,
1: बिल्कुल नाम ले लीजिए, लेकिन पहले गाना बता दीजिए।
0: मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई।
1: बहुत अच्छे, जल्दी से नाम ले लीजिए।
0: देश में भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में।
1: हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन जल्दी से नाम ले लीजिए तो मजा आ जाएगा।
0: सर
1: जी,
0: पहले तो मेरे लखनऊ से सर्वेश सर हैं, पर आप उनको जानते हैं।
1: ये भी सही था।
0: सर सीतापुर से मेरी बहन है समा परवीन अंसारी
1: जी,
0: लखीमपुर से बहन साहिबा अंसारी, और हमारे बबलू यादव भाई हैं, इनका पता तो मुझे नहीं मालूम है
1: जी,
0: क्योंकि तो नाम लेते रहते हैं
1: जी।
0: बस सर दोस्तों का प्रेम है, नहीं तो मैं तो बुलाऊंगी।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका गाना आप तक पहुँचा।
0: धन्यवाद सर।

0: फिलहाल तो हमारे देश में ऐसी पवन चल रही है कि कहीं निकलने वाला नहीं है। निकलने के लिए शाम का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आप किसी भी चीज का इंतजार मत करिए। 7:55 का वक्त हो चुका है और अनवारुल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूरी कोशिश में है आपको 12:00 तक पूरा मनोरंजन करेंगे। और अभी के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है जो हमसे बात करना चाहते हैं और बढ़िया सा गाना सुनना चाहते हैं, है ना? तो जल्दी से हम देखते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं, जल्दी से बताएं।
1: हम मिंटू तिवारी, ग्राम बगाना, तहसील पारा, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
0: फतेहपुर से बोल रहे हैं। गाना कौन सा सुनना चाहेंगे, जल्दी से बता दें।
1: वो बड़े घर की बेटी का, जिनका घर हो जैसे उनकी होत बड़ा।
0: क्या बात है। और सुनवाना कि जी जी, नाम लीजिए, नाम लीजिए।
1: पहले तो रसूलपुर गुजरात हो गए, प्रभाकर तिवारी की, मुकेश कुमार हो गए, प्रताप गढ़ते हो गए, भगवान सिंह परमार जी हो गए, राम बाबू शर्मा जी हो गए,
0: okay.
1: मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, कितने लोग सुनना है और FM 100.7 न्यूज का भी के लिए गाने के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मिंटू तिवारी जी आपका, और ये गाना आप तक पहुँच रहा है। और ये धार्मिक गाने के साथ ही एक अच्छी भावना के साथ इस गाने में एक मैसेज छिपा हुआ है, और इसी गाने के साथ मुझे अनुमति दीजिए 8:00 से लेकर 12:00 तक अनवारुल भाई आपके साथ रहेंगे, आबशार, रजनीगंधा, और उससे पहले आपको नए नए गाने, पॉपुलर गाने लेकर आएंगे, पॉप सॉन्ग्स जो होते हैं। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात के 8 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों को समय पर लेन देन, भुगतान संबंधी मुद्दों का तत्काल समाधान और अधिक या असफल भुगतान के मामलों में स्वचालित रिफंड सुनिश्चित करने के लिए मजबूत भुगतान प्रोटोकॉल स्थापित करने में CBSE की सहायता करने का निर्देश दिया। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पढ़ने के साथ साथ लेखन गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि इसके लिए सभी विद्यालयों में रीडिंग आवर, समाचार पत्र पठन और DDAR कैंपेन को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। सरकार शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखते हुए विद्यार्थियों के समग्र विकास पर कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि पुस्तिका सामान्य योग अभ्यास क्रम, प्रमुख पहलों और सार्वजनिक भागीदारी के अवसरों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे योग संगम, हरित योग, योग समावेश, योग पार्क और योग अनप्लग्ड के साथ साथ 21 जून तक की निर्धारित गतिविधियों का विवरण शामिल है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म

0: और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
3: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

आपके दिल के दरवाजे पर फिर एक बार दस्तक। दरवाजे नहीं खुले थे तो खिड़कियां तो खुली थी, और अगर वो भी बंद थी तो भी आपके जो मन के दरवाजे हैं वो हमेशा खोल कर रखते हैं आप, तो बस उसी से दाखिल हो जाते हैं चुपके चुपके से हम। बुझा बुझा के वो शम्मे जला रहा होगा, चले भी आओ कोई दिल जला रहा होगा। मोहब्बत के खुमार में धीरे धीरे पिघलती शम्मा से बरसता प्यार आबशार, कभी जिम्मेदारियों की उलझन तो कभी बेफिक्री का खुमार आबशार। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में आज मैं आपका हम सफर अनवारुल हसन, कबूल कीजिए हमारा आदाब।

ख्यालों में जिंदगी गुजार देना कहीं से समझदारी नहीं होता, और इसलिए जो हकीकत की पथरीली जमीन है वहां तो पांव रखने ही होते हैं। आप भी रखिए, चीजों को देखिए आसपास और समझिए, और जो आपको लगता है कि चीजें ठीक हैं बस उसी पर भरोसा कीजिए। बहुत सारी चीजें जो हमारी इर्द गिर्द होती हैं वो भले ही किसी भी तरीके की हमें महसूस हो रही हो, कभी कभी सच्चाई नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे चमकदार पानी होता है और उसमें सूरज का अक्स दिखाई पड़ता है, वो चमक अगर छू कर देखेंगे तो सूरज छू नहीं पाएंगे आप। ऐसे ही बहुत सारी बातें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ हम अपने नजरिए से समझते हैं और कुछ वक्त हमें सिखा देता है, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आसपास के कुछ लोग जानबूझकर पैदा करते हैं, इनसे भी तो बचना है।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: जनाब यारी,
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जिंदगी ने मेरे आओगे ना तौबा कर ली, आके ख्वाबों में मेरे मुझको सताते क्यों हो। यूं तो कहते हो कि चेहरे से मेरे नफरत है, मेरी तस्वीर को सीने से लगाते क्यों हो। हमने आंखों में तेरी सारी कहानी पढ़ ली, बात जाहिर है मगर हमसे छुपाते क्यों हो। भूल जाएंगे उसे तुमने कहा था अनवार, याद कर करके उसे अश्क बहाते क्यों हो। 8:25:14 आप शार सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल हसन के साथ।

0: याद आती रहती है और मन बहुत सारी बातें भी आती रहती हैं और कभी कभी वो बातें जुबान पर आकर ठहर जाती हैं। उन्होंने आंखें दिल की खिड़कियों के उस पार सजते जज्बात तुम तक पहुंचाना तो चाहती हैं, पर होठों पर सजी हल्की सी मुस्कुराहट और चमकती आंखें इस बात की गवाह बन जाती हैं अक्सर कि कुछ ऐसा है जो छुप गया है। और जब उन बातों को मन के अंदर दफन किया जाता है, होठ तो चुप हो जाते हैं, लेकिन कभी आंखें पालने की कोशिश कीजिए और अगर अकेले में देखिए उन आंखों को, तो उनसे कुछ चमकदार सी चीज और अगर चक्कर देखिए तो कुछ नमकीन सी चीज छलक जाती है उन आंखों से।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

वीरानी में तो बाहर आएगी जब लौटेंगे, जब रहेंगे, बहुत दूर तक चलेंगे और बहुत देर तक साथ रहेंगे आपके। फिलहाल 8:40 हो चुके हैं। हर शाम हर रात कुछ कहती है, कहती है कि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, धीरे धीरे खिड़की की चौखट पर उजाला रखती है और हम खाली उठ खड़े होते हैं, बिखरी लटों के साथ, अत खुली पलकों के साथ, मगर एक नई उम्मीद के साथ। तो उम्मीद का दिया जरूर रोशन रखिएगा। आबशार से तो इजाजत लेंगे, लेकिन 9 हम फिर लौटेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे और उसके बाद 9 से रेनबो कैफे आप तक पहुंचेगा और 10 महकेगी रजनीकंधा अनवारुल हसन के साथ। तो बस फिलहाल इजाजत दीजिए, थोड़ी देर का अंतराल और उसके बाद वापसी। शब्बा खैर।

0: को।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश

0: सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

निर्देशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी

0: के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन

0: positioning country's traditional wellness practice as a global sporting discipline. The minister said yogasana reflects country's soft power and has emerged as a medium for promoting physical fitness, mental well-being and healthy living across the world.
1: From June 4th to June 8th, the first World Yog Asana Championship has been organized in Ahmedabad. More than 500 athletes from over 75 countries will participate in it. The event has been launched from India now, and in the future it will be organized in different countries across the world. Whenever the Commonwealth Games will be hosted by India, Yog Asana will also be included as an indigenous sport.
0: Indian wrestlers continued their impressive performance at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today, securing 2 gold, 2 silver and 1 bronze in the men's freestyle category. In the 65 kg category, Mohit Kumar clinched the gold with a dominant 12-4 victory over Kyrgyzstan's Osman Bai A. Abdisamatov. Chandar Mohan also struck gold in the 79 kg final after edging past Kazakhstan's Yerkhan Abil in a thrilling 7-6 contest. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises map of onion stalks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasana for future Olympic Games. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold in men's freestyle event in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
2: और झमझमौवा हुए जा रहे हैं देख देख के. आनंद तिवारी जी आपको भी पल देता हूं, उसके बाद गाना आप तक पहुंचाएंगे. लिखा है कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर लो जो पत्थर को भी तोड़ दे. मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल लो इतना कि हौसला देखकर मुश्किल आना ही छोड़ दे. जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है आज. चलिए उम्मीद हम भी ऐसा रखते हैं. आनंद तिवारी जी ने दारू कुइयां मल्लावा हरदोई यूपी, और इस समय हम भिवानी राजस्थान में. सुना ये बड़ा, ये भी बड़ा अच्छा ट्रेंड है भाई कि आपने ये भी बता दिया, ये अपना पता भी बता दिया, फिर आप कहाँ सुन रहे हैं. अब आपसे मिलने हम पता चला कि जहाँ पते में पहुँच जाएँ. हरदोई जाना था कल हमको, हमने सोचा आनंद जी से मिलेंगे, लेकिन आनंद जी ने लिख दिया कि भिवानी राजस्थान से सुन रहे हैं. अब राजस्थान हम आएंगे अगले हफ्ते, तब आपसे मिलेंगे. चलिए गाना एक और बजा देते हैं और उसके बाद फिर लौटेंगे.
3: यार जदों दी एंगेजमेंट हुई है उन्हें मैसेज दा जवाब ते की देना, वो तो कॉल्स भी नहीं चुक रहा.
2: कुछ बातचीत कर रही है मैडम पहले, है ना, फिर उसके बाद धीमे-धीमे गाएंगी. गाओ भाई गाओ. हाँ हाँ आ गए.

0: ਪੁੱਤ ਆਦਤ ਪਾ ਲੋ।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी, और ऐसे ही लाखों में एक रेनबो भी, और रेनबो में हम लोग भी हैं। रेनबो कैफे इस वक्त सुन रहे हैं, 9:23:51 हो चुके हैं। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूं, और आपके ढेर सारे मेल हम तक और पहुंचते बिल्कुल नीचे तक सरकते चले जा रहे हैं। फिर आप कहेंगे हमारा तो नीचे दब गया, तो फिर से भेज देंगे, तो फिर से मत भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ कि आपका कोई मेल छूटे ना, मैं पढ़ दूं। अरविंद दुबे जी, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, इतने सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, और लिखा है कि वैसे तो मेरा मेल हमेशा शामिल हो जाता है, फिर भी विशेष आग्रह है कि मेल शामिल करें। भोजपुरिया, तड़का, हरियाणवी हिट्स, पंजाबी धमाल, अवधि, अपनापन वाले गीत गजब बवाल मचा रहे हैं। अच्छा, हम सभी पूरे परिवार के साथ रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम सुनते हैं, और अरविंद दुबे जी ने ये मेल हमको किया है, धर्मदेव पोस्ट, छठा जिला, मिर्ज़ापुर से। बहुत बहुत शुक्रिया इस संदेश के लिए, और देखिए आपको मैंने शामिल कर लिया। सोनू भार्गव जी, आपने लिखा है कि गुड इवनिंग डियर सर जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई भी बुंदेली सॉन्ग सुना दीजिए। फरमाइश तो देखिए नहीं है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि सब इधर से उधर से उधर से जितनी भी जगह है ना, चारों दिशाओं में क्या बल्कि दसों दिशाओं से लाला के संगीत यहाँ पर इकट्ठा कर दें। तो ये मेल कहाँ से आया, ग्राम चक उमरी झरेखापुर जिला सीतापुर से आया है। वकील अहमद साहब, आपका भी मेल आ चुका है, और आपने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, जल्दी जल्दी आया कीजिए। रेनबो कैफे में गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, आप भी आकर खा लें। अभी आपने सैटरडे को भी हमसे यही बात कही थी, ऐसा तो नहीं कि वही आपने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया, या हो सकता है अब इसी वक्त खाना खाते हो, बहुत टाइम के पक्के होंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पढ़ दिया है और शुक्रिया इसके लिए। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथौरी जिला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलाब शाह सिद्दीकी और अहमद नवाब, सबके नाम आपने लिख दिए हैं, लिखा तो आप ही ने। और अगला मेल वारिस अली खान साहब का मेल है। अनवारुल भाई आदाब अर्ज़ है, मैं दिया हूँ, मेरी फितरत है उजाला करना, वो समझते हैं कि मजबूर है जलने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर आपने लिख के भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते हैं कि प्रचंड गर्मी ऐसे में मूवी यारियां का ट्रैक पानी पानी बजना चाहिए। सही बात है, पानी वाले गाने बजाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, बल्कि कहीं तो बारिश वाले बजा दें। चलिए ये फरमाइश ही नहीं है, लेकिन गाना अच्छा है जो आपने लिखा है, आज आप 12 बजे तक जगाएंगे। हाँ भैया, आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा। एडवोकेट वारिस अली खान साहब ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमें ये मेल किया है, शुक्रिया हमारे हमें इस मेल के लिए। और अगला मेल अमित यादव जी आपका है। सर जी, मुझे आज के गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, और सलाल अनवारुल जी गुड इवनिंग, आई एम शिया यदुवंशी, गंगागंज रोड, भानमऊ विलेज, नकटवा, 12 बंकी। देखिए हम पूरा पढ़ते हैं, पता आपका। और लिखा है कि अच्छा अच्छा आपको जो प्रोग्राम अच्छे लगे थे आपने वो भी लिख दिए, उनके भी कई लोगों के आपने नाम भी लिखे हैं, शुक्रिया। और मैंने पहले भी कहा था कि प्रोग्राम के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो जल्दी बुधवार को जो हमारे कार्यक्रम होता है उसमें आप कहिएगा। सुल्तान रजा साहब का भी मेल आ चुका है, और आपने लिखा है, अनवारुल जी अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, ज़ीशान रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा और अम्मी पापा, बाकी FM रेनबो 100.7 भाई वास्तव के लिए लिख दिया है। और टू अटैचमेंट, भाई वाह, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है अटैचमेंट के लिए। परिवार घड़ी के सुइयों जैसा होना चाहिए, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हों तो सब साथ हों। चलिए मजाक के लिए अच्छा है, सबसे क्यों किसी के 12 बजाइए। पढ़ना लिखना समझदार बनना, मगर इतना भी समझदार मत बन जाना कि चाय के नुकसान बताने लगो। अच्छा, ये चाय के शौकीन है और इसलिए इन्होंने लिखा है कि जितने भी समझदार बन जाओ, चाय के बारे में कुछ ना कहना, चाय को कुछ ना कहना भाई। और ये बहुत अच्छी बात कही है, हम भी यही कहते हैं।

नहीं तो चलिए गाना बजा देते हैं। 9:28 हुए, मेल आपके बहुत सारे आ रहे हैं। और अच्छा, मुझे पता है कि आज जब मैं यहाँ पर होता हूँ ना, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं, उनको मेरा नंबर पता है, तो कुछ लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे संदेश भेजने लगते हैं या मैसेज करने लगते हैं, या कभी कभी फ़ोन भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे जो ऑफिशियल ID है FM@lucknow.com, यहाँ पर आप मेल करेंगे तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। और वैसे भी आज मेरा फ़ोन जो है वो लॉक हो चुका है, तो फ़ोन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मुझे पता नहीं है। मुझे बड़ा दिक्कत भी हो रही है, बिल्कुल क्या बताएं। ये मोबाइल देखिए उठाया मैंने, ये मेरे पास रखा हुआ, ये रख दिया, कुछ नहीं आ रहा, ये बोल बोल नहीं रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप फ़ोन कर रहे हैं हम उठा नहीं रहे। हाँ, तो बस अभी हमको भी फ़ोन करना है, मुझे भी फ़ोन की बड़ी ज़रूरत है। तो हमारे ब्रॉडकास्टिंग असिस्टेंट यहाँ पर उबैद भाई बैठे हुए हैं, अभी हम इनसे फ़ोन मांगेंगे और इनके फ़ोन लेके एक फ़ोन करेंगे बड़ा व्यक्तिगत, आपको बताएंगे नहीं किसको कर रहे हैं। चलिए गाना हम बजा दे रहे हैं आपके लिए, और उसके बाद जब लौटेंगे तो बहुत सारी मेल और भी हैं, वो भी पढ़ेंगे।

0: करो।
1: बस करो भैया, राजा जी का दिल विल ना टूटे, और राजा जी जहाँ रहना चाहे घर में वहाँ रहे, चाहे पलंग के ऊपर रहे या पलंग के नीचे छुप के रहे, उन्हीं का घर है ना। तो डरते वरते किसी से नहीं है। 9:32 हो चुके हैं और रेनबो कैफे आज अनवारुल हसन के साथ आप सुन रहे हैं। सावित्री देवी जी, आपका मेल आ चुका है। गुड इवनिंग डियर अनवारुल सर जी, कैसे हो आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जी, हंस हंस कर बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा हंस हंस कर, हम फंस गए थे हंसने में यहाँ पर, यानी पढ़ने में इसको। हम विलेज भारतपुर बरगदही से लिख रहे हैं, अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे साथ अनंत, ईशान, गुड़िया, ज्योति भाई और ज्योति भी आपका प्रोग्राम सुन रही हैं। थैंक यू। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। विराज जी, आपको भी पढ़ देते हैं जल्दी से। विराज मौर्य जी ने हमें लिखा है, लखीमपुर खीरी पलिया कला से मेल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम रोज़ सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर कृपया एक बार ये मेल मेरा पूरा पढ़ लीजिएगा। अरे पढ़ दिया हमने पहले, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम शामिल करने के लिए, और मेरे मामा ध्रुव कुमार मौर्य जी का भी। अच्छा ये तो हम पढ़ चुके थे पहले ही आपको।

हाँ ये वही है जो अपना बैठे मार्केट में वहां से मेल कर रहे हैं बैठे बैठे. आयुषी मौर्या जी, आपका भी मेल आ चुका है. पॉप पॉप टाइम प्रोग्राम नहीं है ये इस वक्त, रेनबो कैफे. चलिए कोई बात नहीं, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है बस इतना बहुत है हमारे लिए. ठीक है सर जी, आप आते हैं प्रोग्राम में तो चार चांद लग जाते हैं. चांद वैसे है बाहर आज, देखिएगा. विलेज मैनी पोस्ट औरास डिस्ट्रिक्ट उन्नाओस, इस टाइम न्यू अशोक नगर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ और वहाँ पे सुन रही हूँ. चलिए आप वहाँ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी कि आप रेनबो के साथ आपका जो रिश्ता है, जो नाता है, वो आपने यूँ ही बना कर रखा हुआ है. हाँ मैंने कहा कि ये जो पीछे नहीं बजाते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है, इससे टेम्पो बना रहता है ना. देवेश जी आपका भी आ चुका है मेल हमारे पास. देवेश भास्कर जी चिन्हट लखनऊ से आपने लिखा है. लिखा है अनवारू सर, आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते. आपको भी नमस्ते. आज काफ़ी समय के बाद आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. इसका मतलब आप लगातार सुनते नहीं. देखिए अभी मैं शनिवार को भी था, है ना, तो कोई बात नहीं. आपको अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छाई और ये मोहब्बत ऐसी बना के रखिएगा. और ये एक मेल है जो दोबारा आ चुका है, चलिए मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि इसको भी पढ़ चुके हैं. एक और मेल है, ये भी दोबारा आया है. और तीन मेल एक के बाद एक हमारे पास आए हुए हैं. इनमें से एक मेल हम पढ़ देते हैं क्योंकि सब में वही लिखा होगा. मेरा नाम शिवराज है और मैं बबीरहा जैनाबाद जिला बाराबंकी से हूँ. सर जी कोई भी गाना सुना दीजिए, भोजपुरी. देखिए इससे पहले ही भोजपुरी गाना बज रहा था, यानी आपने जब 9 मिनट पहले मेल किया तो उसके बाद ये गाना बज गया. तो यानी आप मान लीजिए कि आपकी फरमाइश पूरी हो गई, जबकि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है. तालिब अंसारी साहब का मेल ग्राम राजा कटरा बाराबंकी से हमारे पास आया है. अस्सलाम वालेकुम सर जी, और पिछले प्रोग्राम आबशार बहुत उम्दा लगा और जो गज़ल नुमा गीत, वो गज़ल ही थी सब. हाँ एक गज़ल ऐसी थी जो थोड़ा सी फास्ट थी, तो आपको मैं समझ रहा हूँ कि किसकी बात आप कर रहे हैं. वो उसमें आपने बहुत फुली जो है आपने कहा है कि मैंने एंजॉय किया है. अब धमाल वाला शो जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, हंस रहे हैं सुन रहे हैं. हाँ थोड़ा सा मिस किया ये प्रोग्राम, बट कभी मैं अच्छा थोड़ा सा आप नहीं सुन पाए थे. कोई बात नहीं, अब आप जुड़े हैं लगातार तो ऐसे जुड़े रहिए. अजय सिंह आपका मेल भी पढ़ देते हैं क्योंकि मेल बहुत आ चुके हैं हमारे पास. गुड इवनिंग प्रिय आरजे अनवारुल सर जी, कैसे हैं आप सर? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे बज रहे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है. गाने कम बजाइए सर, गाने कम बजाइए आप. गाने तो हम लोग हर टाइम सुनते हैं सर, आप तो बस बोलिए. मैं भी कहने जा रहा था कि अभी कोई ये ना कह दे कि आप बोलते चले जा रहे हैं तो आप ही की मेल पढ़ रहा हूँ मैं, है ना सर. आपकी इतनी अच्छी बातें सुनने को जी तरसता है, हमारा भी तरसता है, हम खुद तरस जाते हैं. प्लीज़ सर आप इतना अच्छा बोलते हैं तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, आपने खा लिया? आप देखिए दुखते रख पे हाथ रख दिया इन्होंने, यहाँ कहाँ खाना मिलेगा बताइए आप. वो खाना मुँह में रखेंगे ऐसे चप चप करेंगे तो बोलें कैसे. सर 12 बजे तक सुनूंगा मैं. अजय कुमार सिंह सीतापुर, मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद. देखिए मैं तो रात में घर जाकर खाता हूँ, 1:15 पे मेरा खाना होगा आज. ऐसा ही होता है रात वाले प्रोग्राम में क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम खाना खा पाएँ. और स्टूडियो में वैसे भी हम लोग कुछ भी कह लें, लेकिन स्टूडियो में कुछ भी चीज़ खाना पीना कुछ भी अलाव नहीं होता है. हाँ पानी की बॉटल ज़रूर मेरे पास रखी, इतनी छूट है हमारे लिए, हम सबके लिए, और उसको भी संभाल के रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मशीनरी होती है तो उसमें नुकसान हो सकता है अगर कोई चीज़ गिर जाए तो, या कोई खाने की चीज़ गिर जाए तो चूहे आ सकते हैं या कॉकरोच हो सकते हैं या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. हालांकि सबका बहुत ध्यान रखा जाता है साफ़ सफाई का, तो बस इसलिए मैंने क्या बता दूं आपको. गुड इवनिंग सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ रहा है जब आप हम लोगों का नाम लेते हैं, नाम लेने में गरम कतार से. इसका क्या मतलब हुआ? फिर से पढ़ रहे हैं हम, है ना, लोगों का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं में गरम कतार से इस समय प्रोग्राम. अच्छा कोई जगह का नाम है मुझे लगता है जहाँ से आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं. शिवम शुक्ला जी सुन रहे हैं, बस शिवम शुक्ला जी का नाम मैंने ले लिया क्योंकि उनको तभी अच्छा लगता है जब उनका नाम लिया जाता है. तो अब हम जल्दी से गाना आप तक पहुँचाएंगे और लीजिए, अब आप कहेंगे लीजिए एक फरमाइश पूरी हो गई आपकी.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
1: जी। और 9:40 हो चुके हैं और यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम रेनबो कैफे अनवारुल हसन के साथ। और एक मेल जिसमें एक कढ़ाई है और कढ़ाई में मिठाई है जी। और ये सावित्री देवी जी ने भेजी है, लिखा है कि सर जी मिठाई बना रहे हैं, यानी ये हमको ललचवा रही हैं। ये कुछ रबड़ी अबड़ी कुछ बन रही है, बड़ी दूध में और सब में और बड़ा कसा जा रहा है इसको चला चला के। चलिए, आपने सबूत दे दिया है और अच्छा लगा देख के। खाना दिखाया मत करिए, खाना दिखाया नहीं आता, चोरी से खाया जाता है। राजेश कुमार जी का मेल आ चुका है, गुड इवनिंग अनवारू सर जी, प्रोग्राम सुनकर मस्त लग रहा है सर, अब खाना खा रहे हैं, आप गाने बहुत प्यारे चुनकर बजा रहे हैं, आपको ईमेल बुद्धेश्वर लखनऊ से भेज रहे हैं। भाई वाह, वाकई लखनऊ अंदाज ही है ये आपका, जिस तरह से आपने लिखा है, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए उससे पता चल जाता है कि आप लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। नाजिम उस्मानी साहब का मेल हमारे पास महमूदाबाद सीतापुर से अभी भी आया है। सलाम अलैकुम अनवारुल हसन जी, वालेकुम सलाम, मज़ा आ रहा है सुनने में, आपकी आवाज़ अच्छी चली, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया, अच्छा, सोशल मीडिया से भी आप कह रहे हैं कि हमारी जान पहचान है। हाँ, हम भी झांक लेते हैं कभी कभी वहाँ पर आपको, और कुछ लोग तो झांक के चले जाते हैं, देखते सब रहते हैं, है ना। एक ये भी बड़ा ट्रेंड है सोशल मीडिया में कि लोग जो है नज़र बहुत रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, और अगर बहुत अच्छी बात पसंद आ जाती है ना, तो जो बहुत जानने वाले होते हैं वो लाइक वाइक नहीं करते हैं, वो चोरी से झांक के चले जाते हैं, थोड़ा सा जल के थोड़ा सा कुड़ के। ऐसा ना किया करिए, लाइक कर दिया करिए, हम भी कर देंगे आपको। राशि का मेल आ चुका है, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर जी, उम्मीदें बहुत अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर जी, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, ईमेल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तसल्ली से, सबने अपनी अपनी हाजिरी लगवा दी है तो मैं पीछे क्यों रहूँ, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कभी पीछे मत रहिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, लखनऊ से ही आपने हमें मेल किया है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से झूम रहे हैं। अरे वाह, मुझे लग रहा है कि आज पूरे घर में तहलका मचा दूंगी मैं, नाच नाच कर तोड़ फोड़ कर डालूंगी। भैया ऐसा मत करिए, कोई मुझे पकड़ लो, नहीं तो गिर जाएंगे। चलिए, गिरिए नहीं, और अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा करना भी अच्छा लगता है। बहुत सारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी समस्याओं में हम लोग जूझते रहते हैं, तो जब थोड़ी देर हंसी मजाक हो जाता है ना, और आप थोड़ा सा खुल के हंस लेते हैं, ये भी एक थेरेपी है, और बहुत से लोगों को इस थेरेपी को लेने के लिए आर्टिफिशियल

हंसी हंसनी पड़ती है। मैं कई सारे ऐसी जगह लखनऊ में जानता हूँ जहाँ सुबह आप जाइए तो वहाँ पर जो है वो ठहाके लगवाए जाते हैं और लोग ठहाके लगा लगा के हंसते हैं, बेवजह में भी लगाते हैं, क्योंकि इससे हमारे फेफड़ों में अच्छी ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन अच्छे जाने से ऐसे बहुत आराम मिल जाता है। तो ऐसे तो बिना वजह हंसने से अच्छा है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ ख़ास तौर से उनको भी वक्त दीजिए। सिर्फ मोबाइल में ही चिपके रहना और उसी में वक्त गुजार देना नहीं ठीक है, थोड़ा सा अपने परिवार के साथ भी हंसीए मुस्कुराइए, ठाके लगवाइए उनको, तो सबको अच्छा लगेगा और उनको ये भी अच्छा लगेगा कि आप उन्हें समय दे पा रहे हैं। निर्मल गुप्ता जी, आपने मेल हमको किया है भेटिया लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश में ही हम लोग हैं। मैं निर्मल गुप्ता जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम भेटिया से आपके कार्यक्रमों का नियमित श्रोता हूँ। आपकी मधुर आवाज, बेहतरीन प्रस्तुति और श्रोताओं से आत्मीय जुड़ाव कार्यक्रम को विशेष बना देते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत हर कार्यक्रम, अब तो बहुत तारीफ आपने बहुत ज्यादा कर दी भाई हमारी, अब हम अकेले बैठे हैं, हम बार

को किया है भेटिया लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश में ही हम लोग हैं। मैं निर्मल गुप्ता जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम भेटिया से आपके कार्यक्रमों का नियमित श्रोता हूं। आपकी मधुर आवाज, बेहतरीन प्रस्तुति और श्रोताओं से आत्मीय जुड़ाव कार्यक्रम को विशेष बना देते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत हर कार्यक्रम, अब तो बहुत तारीफ आपने बहुत ज्यादा कर दी भाई हमारी। अब हम अकेले बैठे हैं, हम बार बार कहते हैं कि दो लोग हों इसमें तो हमें आराम हो जाए, आप हमारी तारीफ करें और हम अपना जो भी हमारे साथी हो हम उनसे कहते हैं धीमे से कि हमारी तारीफ आई पढ़ दो इसको। चलिए पढ़ देते हैं हम। मनोरंजन और सकारात्मक ऊर्जा से कार्यक्रम भरपूर होता है। कृपया मेरी ओर से आपको और एफएम रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हूं। यदि संभव हो तो मेरे नाम और मेरे गांव का उल्लेख अपने कार्यक्रम अवश्य करें। कर दिया है हमने और दो बार हो गया, क्योंकि मैंने पहले नीचे पढ़ा फिर आपने जो ऊपर जहां से मेल लिखा है ना उसमें भी लिख दिया है। तो चलिए बहुत खुश रहिए निर्मल गुप्ता जी, और ऐसे ही शुभकामनाएं संदेश, क्या आप खुद भी, आपको भी शुभकामनाएं कि आप रेनबो के साथ जुड़े हैं। अतुल कुमार यादव जी ने ग्राम खुरेहटा खैराबाद सीतापुर से मेल किया है और हेलो सर जी, कैसे हैं? सभी भाइयों को राम राम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक शिकायत है, कई बार हमारे मेल शामिल नहीं किए गए हैं। अब देखिए हम तो आता है तो सब पढ़ देते हैं और सभी लोग कोशिश करते हैं, कभी कभी मेल देर में पहुंचते हैं हम तक जब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मेल बिल्कुल खत्म होने को होता है तो इसलिए ऐसा हो जाता है। वैसा हम लोग कोशिश करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे मेल शामिल जब हम बाकी का कर रहे हैं। तो आपसे कोई दुश्मनी थोड़े, आप तो वैसे भी खैराबाद में रहते हैं, इतना पुराना आँख का मशहूर अस्पताल है वहाँ पे, है ना। प्लीज सारे मेल शामिल कर लिया करिए, अच्छा लगता है जब किसी का नाम बोला जाता है। और आप लिख रहे हैं कि आपका साथ ही रहूँगा 12 बजे तक। चलिए जहर नसीब, हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे साथ रहेंगे। राजेश कुमार ने लिखा है कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके रेडियो की माइक में पक्का चींटी आ जाती होंगी। अब देखिए हम कह दें आ जाती तो आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब गंदा रहता, हमने झांक के देखा चींटी तो नहीं है, तो नहीं वैसे अभी ही। अवधेश कुमार जी आपका मेल भी आ चुका है। नमस्ते, एफएम रेडियो हमारे जीवन का एक अनूठा और सुलभ हिस्सा है। यह न केवल बेहतरीन मनोरंजन संगीत प्रदान करता है बल्कि हमें ताज़ा जानकारी से भी जोड़े रखता है। अवधेश कुमार माधवपुर बाराबंकी से आपने मेल किया है और हम आपको एक बढ़िया सा गाना सुना रहे हैं।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

जी गाना वाना गा के निकल लिया वो लोग। 9:53 हो चुके हैं और आपके, मुझे लगा था कि मेल कम है लेकिन अचानक से एकदम से ढेर सारी मेल आ, उफो। अब पढ़ने तो पढ़ेंगे, देखिए जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। मुनीश कुमार राज जी ने हमें गांव भानपुर हरोबा जिला लखीमपुर खीरी से भेजा है और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। आरजे जी राम राम, आपको भी राम राम, पूरी टीम को नमस्कार। कल आ रहे हैं लखनऊ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा पर, अच्छा अच्छा राष्ट्रीय सुरक्षा

परिषद रजिस्टर का स्थापना दिवस है, तो आप वहां पर आने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, लखनऊ आइए और लखनऊ का भी आनंद लीजिए। बड़ी लंबी आपने भाई थोड़ा सा मेल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, आपको अच्छा लग रहा है, बस बढ़िया है। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम में चल रहा है मस्त मस्त, पर ये गर्मी डाल रही है रंग में भंग, और कार्यक्रम की प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है, आपको अच्छा लगता है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेद जी वैसे नहीं है इस वक्त, आप निशाद अभी रेडियो ट्यून किया है, मैं दूसरा व्यक्ति हूँ, जमशेद जी तक आपकी तारीफ पहुँचा दूंगा। और एक संदेश हमारे पास अयोध्या प्रसाद जी का लालपुर सीतापुर से, और वो लगातार हमें सुनते हैं, और जब रास्ते में जाते हैं ना तो बताते हैं कि हम हेलमेट के अंदर अपना मोबाइल घुसेड़ लेते हैं, यानी फंसा देते हैं वहाँ पे, और रास्ते में सुनते चले जाते हैं। बस आवाज़ थोड़ी सी कम रखा करिए कि बाहर की आवाज़ें भी आपको सुनाई पड़ती रहें तो कोई दिक्कत ना आए। डियर आरजी अनवारुल हसन जी नमस्कार, रेनबो कैफे कार्यक्रम जैसे शुरू होता है वैसे ही अच्छा लगता है, सिंदूरी शाम के समय किसी म्यूजिकल कैफे में बैठे हो ऐसा लगता है, और आप जब अपने शेर व शायरी से इस प्रोग्राम में और ज्यादा रोचकता लाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णकांत सिंह जी कैसरगंज बहराइच से आपने हमें ये मेल किया इसके लिए, और एवन नवाब जी आपका भी मेल आज आ गया। हेलो नवाब सर, आप कैसे हैं? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप मूड ऑफ को मूड ऑन कर देते हैं बिल्कुल पंखे की तरह। सॉरी आज लेट हो गई, कूलर का पंप नहीं चल रहा था, मैंने ही ठीक किया। अरे वाह क्या बात है, आपके घर का कूलर ना चले तो मुझे बुला लिया, अरे हम खुद कर लेते हैं, आज हमने फोल्डिंग पलंग सही करी है घर में। ये फोटो आपको भेज रही हूँ, बताइएगा कैसी है। अरे वाह हमारी फोटो बनाई है इन्होंने AI से, और हमारी, अरे वाह क्या बात है, ये लीजिए, हम फॉरवर्ड में गए और ये हमने फॉरवर्ड कर दिए, वाह वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी से और भी मेल पढ़ देते हैं क्या, ताकि सब लोगों के मेल शामिल हो जाए। कुलदीप मौर्य धनीपुर मितौली लखीमपुर खीरी से लिख रहे हैं, राधे राधे। इन सभी लोगों के नाम ले लीजिए, कुलदीप मौर्य, पूनम मौर्य, मनोज मौर्य, प्रतीक मौर्य, कुणाल मौर्य और पूर्वी मौर्य, आपको आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, यानी आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी ने लिखा कि सर आपसे मिलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, कैसे मिले आपसे, आप रात में आ रहे हैं बहुत दिनों से, तो रात में मिल लीजिए, कौन मना कर रहा है? प्रोग्राम आप रेडियो से में मुलाकात कर ही रहे हमसे, है ना। चलिए आप कभी आएंगे यहाँ तो मुलाकात भी आपसे होगी, ऐसा नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। सीनू हसन जी ने मेल किया है कि हेलो अनवारुल सर, आज मैं आपके ही शहर में सुन रहा हूँ बालागंज, और आप की आपकी क्लिप लाइक करता हूँ। अच्छा कौन वाली, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सभी श्रोताओं और को और फेवरेट आरजी को प्यार भरा नमस्कार, प्यारी सी याद, आप कैसे हैं? और भैया लोगों पानी खूब पियो, गर्मी बहुत पड़ रही, धूप में बाहर निकलने से बचे, और सुनते रहें FM रेनबो। और आपने हमें नागपुर महाराष्ट्र से ये मेल किया है, वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया इस ओर ध्यान दिलाने के लिए, और ये सही बात भी है। गुलिफ्शा सिद्दीकी आपका मेल भी आ चुका है, आपने लिखा है कि मैं संडीला में इस प्रोग्राम को सुन रही, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आज थोड़ी बिजी थी तो मैंने अभी अभी रेडियो ऑन किया तो सोचा मेल कर दूँ। चलिए बहुत अच्छा आपने सोचा और उस पर आपने अमल भी किया, इसके लिए आपको और भी शुक्रिया। साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा, आप सभी लोग सुन रहे हैं। एक मेल और बचा है, अब मेल प्लीज मत कीजिए, वक्त बहुत कम बचा है। आदरणीय अनवारुल सर जी, आरजे अनवारुल सर जी नमस्कार, मैं आपका नियमित श्रोता महेंद्र देपन, गांव रूड़, जिला नागौर, राजस्थान में, और एक बार फिर आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ जुड़ा हूं। और आज हमारे सेठ जी की, अच्छा मेरी जनसरी शादी की सालगिरह थी, जिसकी वजह से मैं दिन भर तैयारियों में काफी काम में व्यस्त था, भागदौड़ के कारण मुझे हमेशा की तरह आपके लिए शानदार और धमाकेदार पोस्टर बनाने का समय नहीं मिल पाया। अरे कोई बात नहीं, अरे आपने मेल किया, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दिल से याद करने वालों जो है उनकी दूरी कभी कम नहीं होती है, और काम से फ्री होते ही हमने फौरन लखनऊ की मुझे याद आई, रेनबो की याद आई, और बस तुरंत हम आपके साथ शामिल हो गए। और आपको मुझे बोलने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि गानों का चयन हमेशा की तरह आज भी समा बांध रहा है, काम की थकान आपकी शो को सुनते ही पल भर में दूर हो गई। चलिए महन जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम बचा है इसलिए जल्दी से ये दीवानी सी लड़की जो है इसको हम इसके साथ आपको छोड़ जा रहे हैं इस गाने के साथ, और आपसे इजाज़त लेते हैं, बस थोड़ी देर में लौटेंगे और हम तो चलिए बस इजाज़त दीजिए, रजनीगंधा की खुशबू आप तक पहुंचेगी अनवारुल हसन के साथ, लौटते हैं थोड़ी देर में।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रात के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों और अभिभावकों के नाम पाती लिखी है। इसमें उन्होंने बच्चों को न सिर्फ छुट्टियों का सदुपयोग करने की राह दिखाई है, बल्कि इको फ्रेंडली पर्यटन और जिम्मेदार जीवन शैली को अपनाने की सीख भी दी है। मुख्यमंत्री योगी ने लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां आप सभी के लिए आनंद, उत्साह और नए शोध का समय लेकर आती हैं। स्कूल की व्यस्त दिनचर्या से थोड़ी राहत मिलते ही मन कुछ नया सीखने, नए स्थान देखने और अपनों के साथ समय बिताने को उत्सुक उठता है। किशोर एवं युवा इन छुट्टियों में नई भाषा या नया कौशल सीख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज नगर निगम कार्यकारिणी के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों पर आधारित 3 साल बेमिसाल पुस्तिका का विमोचन और नगर निगम की लगभग 400 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज आज विकास, सुशासन और सुरक्षा का नया मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने महापौर गणेश केसरवानी और नगर निगम की टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि नगर निगम को सदी के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम विकास विभाग की सभी कार्य योजना पर ठोस व प्रभावी एवं त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने कैंप कार्यालय 7 कालिदास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। जनपद मैनपुरी में आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने केंद्र व्यवस्थापकों, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा हर हाल में नकल विहीन, शांतिपूर्ण और सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराई जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर प्रत्येक परीक्षार्थी की सघन तलाशी ली जाए तथा किसी भी अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति न दी जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

मेरी आंख बंद थी जब तलक वो नजर में नूरे जमाल था, खुली आंख थो न खबर रही कि वो ख्वाब था या ख्याल था। खिड़की से बाहर देखिए तो उस पार चांद आधा सा टंगा हुआ है और कमरे में थकी और खामोशी बसी है। दीवार पर घड़ी की टिक टिक जैसे पुराने दोस्त की धीमी सी सरगोशी। थोड़ा सा दिल भारी है, थोड़ा सा दिमाग उलझा हुआ है। बातें बहुत सी हैं पर लफ्ज कम पड़ जाते हैं अक्सर। यादें भी अजब चीज हैं, चलते चलते अचानक आकर कंधे पर हाथ रख देती हैं और हम चौंक कर मुस्कुरा देते हैं। ऐसा ही एक और वक्त, 10:06:19, रजनीगंधा का ये सफर और आपके दोस्त अनवारुल हसन का साथ। स्वागत है सफर में। नमस्कार।

जी, और कोई जब आ जाता है आपका अपना, तो मन तो खुश हो ही जाता है, मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर भी रहती है, और आपका काम में भी मन लगता है, और आपको भी लगता है कि जो मेहमान है, जो खास है, जो आपका अपना है, उसके लिए क्या कर दिया जाए कि ये पल यादगार बन जाए। तो बस थोड़ी सी कभी कभी मन की खिड़की भी खोल दीजिए, ठंडी हवा भी आने दीजिए, जहां पर कुछ नरमाहट भी है, कुछ खुशबू है, कुछ यादें हैं, थोड़ा सा तन्हा सा सुकून भी है, बल्ब की पीली रोशनी में परछाइयां भी थककर बैठ गई हैं, और तकिए की सिलवटें अधूरे ख्वाबों की तरह है, अधूरे मगर प्यारे से ख्वाब। तो इन प्यारे ख्वाबों को और भी मोहब्बत के साथ जवा होने दीजिए, बढ़ने दीजिए, और अपने दिल के करीब कर लीजिए उनको जो आ गए हैं अभी अभी।

सुर्ख जोड़ा वो पहने महकते हुए, कुछ बहकते हुए कुछ झिझकते हुए। उनकी सूरत कयामत से कुछ कम न थी, उनका पर्दा हटाना सितम हो गया।

यही तो कहना चाहता हूं कि वक्त कैसा भी हो लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं। कभी जिंदगी आसान लगती है, कभी बहुत भारी लगती है, कभी रास्ते सीधे लगते हैं, कभी मोड़ डरा देते हैं, पर एक बात मैं आज फिर कहूंगा कि मैं हर हाल में साथ निभाऊंगा। जब अंधेरा घना होगा और तुम्हें रोशनी ढूंढने में थकान महसूस होगी, तकलीफ होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें याद दिलाऊंगा कि सुबह हमेशा रात के बाद ही तो आती है। जब दुनिया के शोर में तुम्हारी आवाज दब जाए, मैं धीरे से कहूंगा तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि हम साथ हैं। इसलिए सारे नजारे बाकी हैं अभी, और नजारों का लुत्फ उठाना भी बाकी है। 10:26:06 हो चुके हैं, बहुत सारे छुपे हुए नजारे सामने लाने का काम रजनीकंदा में आज मैं कर रहा हूं। मैं आपके साथ आपका दोस्त अनवारुल हसन।

सफर लंबा हो या छोटा, बारिश हो या धूप, हर मोड़ पर, हर कदम पर मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। गिरे तो संभाल दूंगा, रुके तो हौसला दूंगा, और जब तुम उदास हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारी मुस्कुराहट वापस दिला दूंगा। रिश्ता सिर्फ खुशी में नहीं बनता, दर्द में, खामोशी में, गलतियों में, इन सब में, और मैं इन सब के बीच तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और हर वो कल जिसमें तुम अपने सपनों को सजाते हो। इसलिए याद रखना, चाहे वक्त बदले, हालात बदले, लोग बदले, पर मेरा वादा नहीं बदलेगा, हर हाल में ये साथ यूं ही बना रहे। और इसलिए भी, क्योंकि ये रिश्ता कुछ खास है।

0: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जागती रातों को सपनों का खजाना मिल जाए, तुम जो मिल जाओ तो जीने का बहाना मिल जाए, तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो जमाने रुक जाए।

और ये ऐसे ख्वाब हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, हर दिल के अंदर बनते हैं, बसते हैं और मिलकर भी देखे जाते हैं। खूबसूरत ख्वाब मैंने भी देखे हैं तुम्हारे लिए। उम्मीद की रोशनी और दुआओं के सिलसिले, हर पल में एक नया रंग हो, हर राह पर बस खुशियों का संग हो। तुम्हारी मुस्कुराहट से सुबह सकती रहे, तुम्हारी खामोशी में भी एक कहानी बुनती रहे। ये ख्वाब तुम्हारे लिए हैं जिनमें सिर्फ प्यार हो, अमन हो और खुशनुमा ख्याल हो। जहां थकन हो वहां सुकून मिले, जहां अंधेरा हो वहां नूर मिले और हर कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो। बस इसी दुआ के साथ यही कहूंगा कि यही ख्वाब मैंने भी बुने हैं तुम्हारे लिए। लेकिन क्या ये जो लेकिन है ना, ये लेकिन कई सारे सवाल मुश्किल कर देता है, खड़े कर देता है कई सारे सवाल। जो चीजें आसानी से चल रही थी उनमें भी कुछ मुश्किलें पैदा हो जाती है कि क्या हर ख्वाब पूरा हो जाता है। कुछ ख्वाब टूट भी तो जाते हैं, टूटने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं, जिद भी हो सकती है, कुछ ईगो भी हो सकती है, अपने को ना झुकाना, चीजों को एडजस्ट ना करना। हर सवाल का जवाब दे देता जबकि रिश्ते कभी कभी ऐसे भी बचा लिए जाते हैं कि खामोशी के साथ

कि आपको चीजें पता है, लेकिन अगर लगे कि ये बातें कुछ तल्ख हो सकती हैं तो शायद आप उन्हें कहीं पर रोक लें अपने जुबान से बाहर आने से पहले। काफी चीजें ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं ठीक होती तो फिर क्या होता है? समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। 10:55 हो चुके हैं। अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए, हम तो लौटेंगे समाचारों के बाद भी। आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए अपने दर्दमंद दोस्त अनवारुल हसन को। लौटते हैं बहुत जल्दी।